मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि तदनुसार 13 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 43 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने

0: का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले चार दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरा सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मांगते हैं तो कभी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये मांगना और धन्यवाद देना तो एक अति स्थूल प्रक्रिया का हिस्सा है। जो असल सूक्ष्म लक्ष्य है वो है परमात्मा से जुड़ना। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं आज की

अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम से बड़ा राम का नाम, अगर हम कुछ ही क्षण श्रद्धा से अपने आराध्य का नाम लें तो एक अलग ही आत्मीय शांति की अनुभूति होती है।

हैं मेरे राम, मेरे राम ऐसे हैं जैसे बर्तन में पानी, सूर्य में प्रकाश, बर्फ में शीतलता, अग्नि में तपन और मुझ में

वंदन से हमें असीम शांति, उत्साह और उमंग की अनुभूति होती है। यही भाव लिए आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी के स्वरों में ये भक्ति संरचना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सूरज अथाह ऊर्जा का स्रोत है, सभी प्राणियों के लिए आधारभूत आवश्यकता है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का दर्शन करें तो शायद हम सूरज का ही कर सकते हैं।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अनेकता में एकता है भारत की विशेषता।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। गौरव ग्रंथों से लीजिए आज इसमें सुनिए सामवेद से कुछ छंद।
1: भारतीय आर्य यज्ञ में जिन प्रिय वचनों को मधुर स्वर में गा गा कर दैवी शक्ति को संतुष्ट व प्रसन्न करते थे वे सब सामवेद में संग्रहित हैं। इस वेद के मंत्रों के गायन में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसी वेद से गांधर्व वेद का उद्भव हुआ जिससे हमें संगीत शास्त्र की विभिन्न राग रागनियों का परिचय प्राप्त होता है। लीजिए प्रस्तुत है इस वेद के गीतात्मक कुछ मंत्र।
2: अगस्त्यस्ययामिके द्वे द्वयोः अगस्त्यः सृष्टुः सोमः।

गौरव ग्रंथों से इसमें अभी आप सुन रहे थे सामवेद से कुछ छंद। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी देर में किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत। इस कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने डॉक्टर रामचंद्र से घनश्याम सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय है एलोवेरा की वैज्ञानिक खेती।

0: किसान भाई देखा, अगर हम अपन परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ ऐसा खेती करें जैसे कि हमें आर्थिक मजबूती प्राप्त हो, तो हम समझते खेती किसानी का मौज बढ़त है। किसान भाई इसमें हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कि एक औषधि पौधा हो एलोवेरा, एकर खेती करके खूब लाभ ऐसे लेते हैं। जे किसान भाई एकरे बारे में नहीं जानते हैं, उनके बदे एक नई चीज़ है, तो आवा हम एकरे जानकार जे कि एकर पूरी जानकारी रखत बा, वही से हम आपके जानकारी दिलवाई कि अगर आप एलोवेरा का खेती करें चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें, कैसे भूमि का चुनाव करें, कौन कौन प्रजाति लें। अगर एक समुचित जानकारी जानकार से मिलत है तो खेती किसानी का आनंद बढ़ जाता। आज हम यही के बारे में जानकारी देव खातिर अपने स्टूडियो में प्रोफेसर रामचंद्र भैया के आमंत्रित के लिए ही। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जौन हमारे किसान भाइन के सुझाव देते हैं कि अच्छा लाभ ले बदे एलोवेरा का खेती करें, ये एक औषधि पौधा हो, तो पहले तो आप बतावें कि ऐसे कितना लाभ उनके हो सकत है और ये पौध कौने कौने काम में आवत है।
1: देखिए, एलोवेरा एक औषधि पौधा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जलवायु सहन करने की क्षमता होती है
0: जी।
1: इसकी खेती सभी प्रकार की ऋतुओं में की जा सकती है। इसका औषधीय गुण असाध्य रोगों एवं बीमारियों को ठीक कर सकता है। ये विशेष रूप से जैसे सर दर्द है, बदन दर्द, घुटने का दर्द, चोट, मोच, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, बवासीर, चर्म रोग इत्यादि के काम में लिया जाता है।
0: अच्छा, माने कि एक तरह से कि ये बहुत बढ़िया औषधि पौधा हो कि इसे इतनी ज़्यादा जो बीमारी हो दिक्कत है माने कि इसे लाभ होता है। तो प्रोफेसर साहब ये बताऊँ कि का ये कहीं भी अगर खेती कैल जा सकत है या एकर कोनो विशेष जलवायु होता है?
1: देखिए, इसके लिए कोई विशेष प्रकार की जलवायु नहीं है
0: जी।
1: ये हर प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है और कम वर्षा वाले क्षेत्र से लेकर के अधिक वर्षा वाले जहाँ पर 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है
0: जी,
1: वहाँ भी उगाया जा सकता है।
0: अच्छा, मैंने कि जलवायु कौनों भी रहे ये पौधा बढ़िया सुखमय हुई और ऐसे बढ़िया उपज भी हो जाए। अच्छा, ये जमीन यानी भूमि का चुनाव करते कौन बात का ध्यान दें?
1: एलोवेरा के लिए जो बहुत अच्छी भूमियाँ होती हैं वो हैं दोमट मटियार भूमत है, बलुई दोमट है, और इसमें सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो बलुई दोमट और दोमट मिट्टी होती है
0: जी।
1: इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर ऊसर भूमि है तब भी की जा सकती है, लेकिन उस भूमि तक इसकी खेती जाती है जिसमें इसका पीएच मान, भूमि की पीएच मान जो है 8.5 मान तक होता है, तो उसमें भी सफलतापूर्वक ये उगाया जा सकता है।
0: अच्छा, ये जो पीएच मान का आप बात करते हैं
1: जी,
0: तो ये पीएच मान का है कि किसान भाई कैसे समझे?
1: देखिए, पीएच मान का ये मतलब होता है कि जैसे कम अम्लता होती है, अधिक अम्लता होती है, जिस भूमि में ज़्यादा अम्लता होती है उसमें भी ये खेती की जा सकती
0: जी
1: है, और जिसमें पीएच मान मतलब अम्लता की क्षमता है 8.5 तक होती है, जिसको सबसे ज़्यादा कहा जाता है, तो उसमें भी ये खेती की जा सकती है।
0: नहीं तो जैसे किसान कैसे जाने कि ये एकर पीएच हमारे ये जो है कि एलोवेरा की खेती लायक हो कि नहीं?

0: वो अपने से कोनो ऐसा तरीका है जो समझ सकें या ले जाके माटी का जांच कराओ
1: हाँ,
0: पहले।
1: इसके लिए माटी की जांच कराओ ज़्यादा अच्छा है।
0: जी
1: वैसे भी अगर किसान अपने जो भी जिले की भूमि सुधार की लाइब्रेरी हो उसमें जाकर के इसकी जांच करा जा सकते हैं।
0: अच्छा, यानी समुचित जानकारी वो लेके तब एक शुरुआत करें।
1: जी
0: अच्छा, मान लें कि भूमि का चुनाव भी किसान भाई बढ़िया से कर लेते हैं तो एकर तैयारी कैसे करें?
1: देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जिस भी जमीन में इनको लगाना है
0: जी
1: तो उसमें ये कम से कम एक बार मिट्टी पलटते हैं हल से,
0: जी
1: और 2-3 बार इसमें देसी हल या ट्रैक्टर से जो उनको सुविधा उपलब्ध है उससे करके पाटा चला देना चाहिए और
0: अच्छा।
1: भूमि को बिल्कुल समतल और भुरभुरी बना लेना चाहिए।
0: तो ये तरह से वो जो ना कि भूमि का तैयारी करें। अच्छा, देखें जैसे कि अपने जीवन बदे खान पान बढ़िया होइक चाहिए, खेती किसानी में भी हो कि खाद उर्वरक का समुचित व्यवस्था होइक चाहिए, तो का ही जैसे हमार अनाज वाली खेती हो वही स्तर से खाद उर्वरक के हम व्यवस्था करे को होता है या अगर कोनो विशेष व्यवस्था होता है?
1: देखिए, इसमें सबसे पहले तो चूँकि एलोवेरा एक औषधि पौधा है
0: जी
1: तो इसमें ये कहा जाता है कि यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो इसके औषधीय गुण में प्रभाव पड़ता है। खास करके जो औषधीय पौधे हों से इसमें रासायनिक गुण नहीं होना चाहिए,
0: जी
1: तो इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि कम से कम गोबर की सड़ी खाद जो इसमें खूब सड़ी हुई हो और उसमें सूंघने पर के अमोनिया से गंध आए, तो उस तरह की गोबर खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर पहली जुताई के समय ही मिला करके मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई करके समतल बना लें।
0: अच्छा, तो ये किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखा कि एमन रासायनिक खाद के अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो एकर औषधीय प्रभाव में कमी आ जाए, तो आप लोग रासायनिक खाद से बचें। और दूसर की जैसा प्रोफेसर साहब बताऊँ ना कि पकल गोबर का खाद हो जैसे सूंघे से अमोनिया गंध का मतलब प्रोफेसर साहब की जैसे उस सूंघे एकदम बिल्कुल जैसे सड़ा अंडा का या जहाँ टॉयलेट वगैरह जो
1: बिल्कुल
0: बाथरूम
1: बिल्कुल,
0: वगैरह
1: हाँ
0: होता है
1: बिल्कुल उसी
0: जहाँ
1: तरह।
0: पेशाब वगैरह कैल जाते जैसे गंध
1: जी
0: आवत है वो तरह के
1: जी
0: गंध उमन अगर आवे लगे तो
1: जी
0: समझे कि ये खाद जौन हो खेत में डाले
1: डाले
0: लायक
1: लग
0: हो
1: है।
0: गल हो।
1: जी
0: बिल्कुल। अच्छा, खाद के बाद जैसे कि हम एमन बात करें कि पौध रोपण का, लेकिन पौध रोपण तो तब जबकि पौध हमें प्राप्त हो तो
1: जी
0: सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एकर पौध कहाँ से प्राप्त हुई, एकर का कुछ उन्नतशील प्रजाति भी होता है या ये सामान्य रूप से एक का पौधा होता है?
1: हाँ, इसके लिए एक विशेष प्रजाति है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और इसकी प्रजाति है RC 1,11,271,
0: जी
1: RC 1,11,269, और RC 1,11,273, और RC 1,11,280।
0: अच्छा
1: ये
0: अच्छा
1: प्रजातियाँ अभी तक विकसित की गई हैं जिनको
0: अच्छा
1: सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
0: अच्छा मतलब ये प्रजाति में से वो प्रजाति का चुनाव किसान भाई कोनो भी कर लें। अच्छा, ये चूंकि एक नई चीज़ है हमारे कुछ जो कि बिल्कुल किसान भाई के बारे में नहीं जानत बटे उनके बदे, और जो खेती करत बा उनके लिए तो कोनो ऐसा बात नहीं हो, तो ये पौध का उपलब्धता उनके कहाँ से हुई?
1: ये उपलब्धता हम पहले आपसे बता रहे हैं कि या तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयोगशाला से नहीं मंगाया जा सकता है, तो हमारे यहाँ कृषि वानिकी नर्सरी है वहाँ से भी ले सकते हैं, और ज़्यादातर हमारा जो भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कृषि वानिकी प्रयोगशाला से ले सकते हैं।
0: अच्छा, काई नर्सरी अपने खेत में नहीं तैयार कर सकते?
1: हाँ, ये भी कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन पहले उनको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो मदर पौधे जो होते हैं उनको लाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे एक पौधा 3-4 पौधों का जन्म देता है तो वो पौधे वो ले आ करके और साइड से जितने पौधे निकलते हैं उनको विभिन्न स्थानों पर लगाते रहें धीरे धीरे करके, तो उस तरह से उनकी नर्सरी तैयार हो जाएगी।
0: हाँ बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई के देना है कि अगर वो एलोवेरा के वैज्ञानिक खेती के लिए तैयार हुए और जैसे ना आप बताना है कि प्रजाति से लेकर के भूमि से लेकर जलवायु से लेकर सब कुछ व्यवस्थित करके अगर कर खेती करते हैं तो उनके बढ़िया लाभ हुई। आपकी जानकारी देव खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत डॉक्टर रामचंद्र से घनश्याम सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय था एलोवेरा की वैज्ञानिक खेती।
0: किसान भाई देखा, अगर हम अपन परंपरा

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर पारितोष मिश्र से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। बातचीत का विषय है मोबाइल की लत में फंसते बच्चे और समाधान।
1: डॉक्टर पारितोष मिश्रा, कोई एक ऑनलाइन गेम क्या किसी बच्चे को, किसी किशोर को इस हद तक साइकोलॉजिकली प्रभावित कर सकता है क्या कि वो अपने आप को या किसी और को भी नुकसान पहुंचा दे?
2: मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही कॉमन है और आजकल बहुत से लोगों ने ये देखा है, रोज न्यूज़ में आता है कि बच्चे इससे प्रभावित हो रहे
1: बहुत
2: हैं
1: गेम्स
2: और
1: को बैन भी किया।
2: सारी चीज़ें जो है मेंटल हैं, आपका दिमाग को डेफिनेटली हर एक चीज़ प्रभावित करती है और इस तरह के गेम्स दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं इस तरह का, या दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का, ऐसा दोनों तरह के इंसिडेंसेस होते हैं और अब ये धीमे धीमे और कॉमन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा देखने में आ रहा है। अभी एक सीरीज भी बनी है, एक इसी से रिलेटेड हैं, उनको भी देख सकते हैं। कई सारी चीज़ें जो हैं और न्यूज़ में तो रोज ही आता है कि मोबाइल फोन एडिक्शन की वजह से बच्चे जो हैं उन पर गलत असर पड़ रहा है।
1: ऐसी क्या चीज़ है डॉक्टर साहब जो पेरेंट्स, जो जिस माता पिता ने बच्चे को पैदा किया वो नहीं दे पा रहे हैं जो मोबाइल दे दे रहा है? मोबाइल से इतना ज़्यादा वो कनेक्टेड हैं कि अपने माता पिता तक को कई बार वो मोबाइल छीनने पर या ना देने पर इतने ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि कई बार बताते हुए भी विश्वास नहीं होता कि हम जो बता रहे हैं ऐसा हुआ है।
2: जी हाँ, एक्चुअली जो भी माता पिता या आप बोल रहे हैं बच्चे ऐसा कर रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन शुरुआत माता पिता ही करते हैं। जब आप उनको बच्चे को उसकी लत लगाते हैं, कभी बच्चा अपने हाथ से अपने मर्जी से मोबाइल फ़ोन की तरफ आकर्षित नहीं होता। पहली बार आप उसको खाना खिलाते समय या कभी वो रो रहा है उसको चुप कराने के लिए आप उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर वो उसमें से ऑब्वियसली ऑडियो विजुअल इतना अच्छा होता है उसका, उसको देख के उसको अच्छा लगता है, वो चुप तो हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है, वहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। यहाँ पे पहले क्या होता था, बच्चा जब रोता था तो माँ उसको चुप कराने के लिए कहानी कुछ सुनाती थी, कुछ बोलती थी, कुछ प्यार के लफ्ज बोलती थी, कुछ दिखाती थी, बाहर ले जाती थी, घुमाती थी, ये सब करती, या फादर। तो ऐसे में बच्चा ह्यूमन इंटरेक्शन का आदि बनता था, वो माँ बाप को रिकग्नाइज करता था कि ये मेरे लिए ये कर रहे हैं। अब वही काम स्मार्टफोन कर रहा है, तो स्मार्टफोन ने एक तरह से माता पिता की जगह ले ली है, इस वजह से ये जो है ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि अब माँ बाप वही हो गया।
1: अगर ज़्यादा हम मोबाइल देखते हैं या बच्चे देखते हैं तो ये हमारी जो एकाग्रता है, जो पढ़ाई करने का एक तरीका है, उस पर भी प्रभाव डालता है।
2: बिल्कुल, जो बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हैं या मोबाइल ज़्यादा देखते हैं उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, यानी एकाग्रता कम होती है,
1: याद करने की क्षमता
2: वो, हाँ बिकॉज वो एक चीज़ समझिए, वो वन साइडेड है, वो सिर्फ जो मोबाइल कर रहा है वो बच्चा वही देख रहा है, मोबाइल को वो ऑर्डर करके चेंज नहीं कर सकता। जैसे कोई मान ली गेम चल रहा है तो वो अपने पैटर्न पे चल रहा है, बच्चा उसको नहीं चला रहा है, गेम को, गेम अब चल रहा है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, तो इस वजह से, और या रील देख रहा है तो रील वो खत्म हो रही है हर 30 सेकंड में, हर 10 सेकंड में चेंज हो रही है, दूसरी रील, तो उसको हर समय नया कुछ डिफरेंट चाहिए। गेम्स में भी ऐसे ही हो रहा है, उसमें कुछ नए लेवल जा रहे हैं, तो इस वजह से उसकी एकाग्रता एक ही चीज़ पे बने रहने की जो एकाग्रता होती है वो कम हो रही है।
1: काउंसलिंग में ऐसा क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं, बच्चों से बात करते हैं या पेरेंट्स से बात करते हैं, क्या करते हैं?
2: मैं 2-3 चीज़ें जो बहुत ही बेसिक है वो समझाता हूँ कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपका ये जो बच्चा है ये आपको मिला है, आपका काम है इसका भविष्य अच्छा बनाना। अभी वो नासमझ है, अभी आप सारे समझदार हैं, आप जो अभी पहले कुछ साल में करेंगे वही बच्चे का भविष्य तय करेगा। अगर बच्चे का भविष्य अच्छा चाहिए तो 2 चीज़ होनी चाहिए, एक फिजिकल फिटनेस और एक मेंटल फिटनेस।
1: बिल्कुल,
2: मोबाइल दोनों को ख़राब करता है। मोबाइल देने से बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं रह जाता, क्योंकि एक जहाँ बैठ के मोबाइल देखता रहता है, उसका प्ले और बाकी खेलने कूदने सब चीज़ इफेक्ट हो जाती है। दूसरा,

0: मेंटल, वो तो उसी को देखता रहता है, पढ़ाई भी नहीं करता, लोगों से बात नहीं करता, तो उसका सोशल विकास भी नहीं होता, उसका एकेडमिक विकास भी नहीं होता, तो हर तरह से वो हो जाता है। अगर आपको बच्चे सही चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली फिट बच्चा चाहिए, तो आपको मोबाइल हटाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं हटाएंगे तो मेंटल एंड फिजिकली दोनों फिटनेस खराब होगी, ऐसे में उसका भविष्य क्या होगा आप ही सोच सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पारितोष मिश्र से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। बातचीत का विषय था मोबाइल की लत में फंसते बच्चे और समाधान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 7:30 से सुनिएगा, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाली महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा 7:00 से। फिल्मों से भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 से।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर पंडित रविशंकर का पखावज वादन। सुबह 8:45 पर रोज की ही तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी अभयकांत तिवारी की। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9:00, 10:30 पर और दोपहर 12:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर अमृता मालवीय से गीत भजन का आनंद लीजिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे संगीता मिश्रा, रामसखा यादव और साथी। दोपहर 2:30 पर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्य प्रकाश पटेल, नन्हे लाल बिंद और साथियों से लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। बच्चे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे बालसंग दिन में 11:15 पर। दिन में 11:00 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनवाएंगे। सामग्री संकलन वाचन एवं संपादन होगा रितेश शुक्ल का और प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की।

अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनेगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। समय होगा दोपहर 12:30। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण बच्चे सुनेंगे उमेश चंद्रा की वार्ता कहानी मानसून की। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत

कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अवधेश चंद्र यादव से चंद्रजीत यादव की बातचीत, डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी, साथ ही कृषक साक्षरता पर आधारित सुनिएगा बातचीत अनूप ओझा से घनश्याम सिंह की। इसके अलावा आप सुन सकेंगे विकास गीत।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। ब्रिक्स देशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहली घोषणाम् अंगीकृतवन्तः। घोषणापत्रे दृढ़तर बहुपक्षवादस्य गहनतर सहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानम् अस्ति। सुदृढ़ आर्थिक विकासात्मक सहकारस्य उपरि बलं प्रदत्तमस्ति तथा च वैश्विक विषयेषु निर्णय प्रक्रियायां विकासशील देशानां महत्तर प्रभावस्य कृते अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाः समर्थनमस्ति। नवदिल्ली घोषणायाः स्वीकरणानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य समापन भाषणे उक्तवान् यत् एतत् सदस्य राष्ट्राणां सहभागित्व संकल्पाय स्पष्ट दिशां प्रददाति। सः अग्रे अवदत् यत् अधुना एतेषां संकल्पानां मूर्त परिणामेषु परिवर्तनं तेषां संयुक्त दायित्वमस्ति।
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: अद्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः द्विदिवसीयं शिखरसम्मेलनं प्रारब्धम्। ब्रिक्सदेशाः शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे एव 26,000 नवदिल्ली घोषणाः अङ्गीकृतवन्तः। ब्रिक्सदेशाः संवादस्य, परामर्शस्य, कूटनीतेः च माध्यमेन अन्ताराष्ट्रिय विवादानां शान्तियुत समाधानाय स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः। पश्चिमेशिया देशे निरन्तरं वर्धमानस्य समाह्वानस्य विषये अपि नेतारः चिन्तां प्रकटितवन्तः। ते च गतवर्षस्य अप्रैलमासस्य 22 दिनाङ्के जम्मूकश्मीर प्रदेशे आतंक्याक्रमणस्य दृढतया निन्दाम् अकुर्वन् तथा च आतंकवादस्य विरुद्धं युद्धस्य स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृतवन्तः। इतोप्यवधेयं यत् भारतं चतुर्थवारं शिखरसम्मेलनम् आयोजयति। गतसायंकाले नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा आयोजिते ब्रिक्सनेतॄणां शिखरसम्मेलने गाला डिनर इत्यस्मिन् नवरसः द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस इति विशिष्टं सांस्कृतिक प्रदर्शनम् आयोजितम्। अस्मिन् सांस्कृतिक कार्यक्रमे ब्रिक्स सिम्फनी, वन रिदम, मेनी कल्चर्स इत्येतानि आसन्, येन ब्रिक्स सदस्यानां सहभागी देशानां च संगीतज्ञाः अद्वितीयं सहयोगात्मक संगीत प्रदर्शनं कृतवन्तः। सिम्फनी इत्यस्मिन् ब्रिक्स देशानां विभिन्नानि वाद्ययन्त्राणि प्रदर्शितानि तथा च संगीतस्य भारतस्य शास्त्रीय नृत्य परम्पराणां च समन्वयः दृष्टः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आइए अब आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। स्वर था रविंद्र साठे का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहला भजन हमने लिया है फिल्म विरुद्ध से। शंकर महादेवन का स्वर है। शंकर महादेवन की शब्द रचना और अजय अतुल का संगीत है।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम अग्निपथ। नई फिल्म का ये भजन आपको सुनवा रहे हैं अजय के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है। अजय अतुल का संगीत है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया। प्रदेश भर में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत, निस्तारित किए गए मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व सहित विभिन्न प्रकार के शमनीय मामले और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय एआई मंथन का हुआ शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई की उपयोगिता पर किया विमर्श। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपना लिया गया। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: आगामी 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सेवाकाल को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की कार्ययोजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों को नए भारत का विजन दिया है।
3: प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 से लेकर के उनकी जो ये यात्रा है, ये नए भारत का दर्शन पूरे भारतवासियों को कराता है। एक नया विजन उन्होंने देश को दिया, चाहे वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो, चाहे वह आत्मनिर्भर और विकसित भारत का हो। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना उन्होंने बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देशवासियों को दिया, वेलफेयर की वे स्कीमें दी जो कभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फ्रेजाइल 5 से दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को स्थापित करने का एक मॉडल प्रस्तुत किया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की वडनगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और भव्य दिव्य कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री

0: मोदी ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 26-27 के लिए MISU, डायस प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6,55,00,000 रूपये जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार विद्यालयी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर सुनिश्चित कर रही है। MIS और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चों से जुड़ी जानकारी के बेहतर उपयोग को नई मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 1,20,00,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत में मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के शवनीय मामले निस्तारित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने आयोजन को उत्साहजनक बताया।
1: बहुत दिनों से लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बहुत ही हमें उत्साहजनक जो रिस्पांस मिला है। पेंडिंग केसेस जो लोक अदालत में जिनका निस्तारण हुआ है, जिसमें फैमिली कोर्ट, एमएसटी, कंपाउंडेबल मैटर्स, सिविल वाद और अन्य श्रेणी के वाद शामिल है, और प्री लिटिगेशन के जो टोटल वाद है वो 1,15,24,062 हमारे पास आए हैं कि जिनका डिस्पोजल हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 में पुस्तकों के विमोचन के साथ लेखकों से संवाद और उनकी रचनात्मक यात्रा को समझने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स पढ़ने के लिए प्रेरित किया।
2: आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, अभी मैं आ रहा था, मैंने बच्चों को एग्जाम वॉरियर फिर वहां वितरित की। हर बच्चे को इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। केवल स्कूली छात्र के लिए ही नहीं है, हर युवा के लिए है, हर नागरिक के लिए है, क्योंकि उसको किसी न किसी अवसर पर, किसी न किसी परिस्थिति में उन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है।
0: लखनऊ को साहित्य का प्राचीन केंद्र बताते हुए श्री योगी ने प्रदेश के उन स्थानों की चर्चा की जहां कालजयी रचनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है।
2: अनेक ऐसे साहित्यकार लखनऊ ने और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र ने दिए हैं, जिन्होंने देश को अपनी कालजयी रचना के माध्यम से आकर्षित किया है। इसी लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूर में नैमिष सारण्य है। नैमिष सारण्य में भारतीय ज्ञान की इस परंपरा ने चिंतन को आगे बढ़ाने का काम किया था। काशी के विश्वविद्यालय जग विख्यात रहे हैं। प्रयागराज की धरती, वहां के कुंभ की परंपरा, ये केवल एक आयोजन महोत्सव नहीं है, भारत की ज्ञान परंपरा की, चिंतन की वह स्थली रही है जहां पर देश भर से ऋषि मुनि जुड़ते थे। इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ में श्रीमद भागवत महापुराण की पहली कथा का वाचन भी होता है।
0: इस 9 दिवसीय पुस्तक महोत्सव में पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साहित्यिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल गतिविधियां, कार्यशालाएं और तकनीक से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल जन भवन उत्तर प्रदेश और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय AI मंथन 2.0 का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में हुआ। कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न आयामों, शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, रोजगार और तकनीकी विकास में इसकी संभावनाओं सहित विश्वविद्यालय प्रशासन में AI की उपयोगिता पर देश भर से आए विशेषज्ञों व शिक्षाविदों द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान

0: बताया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा और अयोध्या बाराबंकी व तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने तहसील रामनगर में सरयू नदी के कटान से प्रभावित ग्राम हितमापुर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया। प्रदेश भर में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत, निस्तारित किए गए मोटर वाहनों, पारिवारिक राजस्व सहित विभिन्न प्रकार के शमनीय मामले और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय एआई मंथन का हुआ शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई की उपयोगिता पर किया विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन। राग है भूपाली तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुभाष कामंत।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपने सुना पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन। राग था भोपाली तोड़ी, विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध थी। आपके साथ तबले पर संगत की थी सुभाष कामंत ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणाम में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document...
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा।

अभी आपने सुनी आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात। रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में

0: आज भारत अफगानिस्तान के साथ तीन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। ATS ने आजमगढ़ से दबोचा। आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी। चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को RO तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे। अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज। निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबकीना ने आर्यना साबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ

0: Alina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में 2025 पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी पर भी तश्वीश का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के मौके पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रोंडी के सदूर के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत ने DRDO की जानिब से रियासत के मशरकी मेदिनीपुर जिले में हथियारों और मिजाइलों की आजमाइश के लिए तजुर्बाती मरकज कायम करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात में बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। न्यूयॉर्क में US ओपन टेनिस में कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना ने बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हराकर खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में खवातीन के एशिया कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन श्रीलंका का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स रहनुमाओं ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। एक मुश्तरक बयान में ब्रिक्स रहनुमाओं ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अख्तियार करने की अपील की और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के इलाकाई इत्तेहाद के अज़्म का इरादा किया। ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के पहले दिन मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए गए नई दिल्ली ऐलामिया में कहा गया कि हर किस्म की दहशतगर्दी मुजरिमाना अमल और नाकाबिल कबूल है, ख्वाह इसके महरकात कुछ भी रहे हों और ये कार्रवाई किसी ने भी की हो। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: नई दिल्ली ऐलामिया में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, जिसमें 26 अफराद हलाक और कई दिगर जख्मी हुए थे। बाद में इस हमले का ताल्लुक पाकिस्तान की पुष्ट बनाने वाले और तरबियत हासिल करने वाले दहशतगर्दों से बताया गया। ऐलामिया में दहशतगर्दों की सरहद पार नकल व हरकत, दहशतगर्दी की माली मदद और दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। ब्रिक्स रहनुमाओं ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी को यकीनी बनाएं और दहशतगर्दी से निपटने में दोहरे मेयार को मुस्तरद कर दें। रहनुमाओं ने अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से नामजद तमाम दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मरबूत कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मुश्तरका ऐलामिया में मगरबी एशिया में कशीदगी मुसलसल इजाफे पर भी तश्वीश का इजहार किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने के साथ ऐसे इकदामात से गुरेज करने की अपील की गई जो हालात को मजीद ख़राब कर सकते हैं। ऐलामिया में कहा गया कि ब्रिक्स ममालिक बातचीत और सफारतकारी के जरिए तवील मुद्दती मुफाहमत पैदा करने की कोशिशें बढ़ाएंगे ताकि खित्ते में देरपामन सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग दिया सके। ब्रिक्स रहनुमाओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि काबिल इतलाब अल-अक़वामी कानून के मुताबिक आलमी तजारत सप्लाई चेन और तवानाई की मुसलसल और बिला रुकावट फराहमी को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। ब्रिक्स इत्तेहाद ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी तनाजात और आलमी निज़ाम में मौजूदा दौर में बढ़ते इख्तलाफात और धड़ेबंदी की सूरत हाल पर भी तश्वीश का इजहार किया। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने खिताब में कहा कि नई दिल्ली ऐलामिया रुकन ममालिक के लिए मुश्तरका अज़्म की वाज़ह सिमत का तायुन करता है। उन्होंने कहा कि ये अब इन रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो इन अज़ायम को नताइज में तब्दील करें।
3: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के तसलसुल और निफाज का मैकेनिज्म जारी रखने की तजवीज पेश की ताकि हर साल सदारत की तब्दीली के बावजूद ग्रुप की इदारा जाती रफ्तार बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि ये मैकेनिज्म सैरुखी इश्तराक के जरिए सभी इकदामात और माहसल पर अमल आवरी जारी रखने के काबिल बनाएगा।
3: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को

0: वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: आज ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का दूसरा और आखिरी दिन है। दो रोजा सरबरा मीटिंग का आगाज कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। सरबरा मीटिंग के पहले ही दिन ब्रिक्स मालिक ने नई दिल्ली एलामिया 2026 को मंजूरी दी। रहनुमाओं ने पिछले बरस 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के सख्त अल्फाज में शदीद मजम्मत की और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने अज्म का इरादा किया। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज ब्रिक्स के रुकन ममालिक और शराकत दार ममालिक मजबूत इख्तरा ताउन और पायदार तरक्की का क्याम जामे आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तश्कील के मौजू पर मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स के 10 शराकत दार ममालिक में बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। इजलास के अख्ताम के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रोंडी के सदूर के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो नाइजीरिया और युगांडा के नायब सदूर के साथ भी मीटिंग करेंगे। ये सरबराह मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनद की जा रही है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वजीर अजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस बात का इरादा किया कि भारत और चीन को अपने बाहमी ताल्लुकात और इख्तलाफात के बारे में हिकमत अमली पर मबनी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र इख्तियार करना चाहिए और इख्तलाफात को तनाज़ात में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के मौके पर कल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली दो तरफा मीटिंग में दोनों ने पिछले साल अगस्त में टिनजिन में होने वाली अपनी पिछली मुलाकात के बाद भारत और चीन के दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली मुसलसल पेशरफ्त का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक को इलाकाई और आलमी उमूर पर मुश्तरका नुकात को मुसलसल वसत देनी चाहिए और मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने के लिए भी बाहमी ताउन जारी रखना चाहिए। इससे कबल दिन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक के रहनुमाओं के साथ कई दो तरफा मीटिंगें की। वजीर आजम मोदी ने इथियोपिया के अपने हमनसब डॉक्टर आबे अहमद अली, मलेशिया के अपने हमनसब अनवर इब्राहिम और वियतनाम के अपने हमनसब ली मिन हंग के साथ भी मीटिंग की। जनाब मोदी ने अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी बातचीत की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शाम ब्रिक्स रहनुमाओं के एजाज में वजीर आजम की जानिब से दिए गए इशाइये के दौरान एक खसूसी सकाफती प्रोग्राम नोरस मुश्तरका जज्बात की कायनात पेश किया गया। इस सकाफती प्रोग्राम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई सकाफत भी पेश की गई, जिसमें ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक के मौसीकारों ने एक मुनफरद मुश्तरका मौसीकी प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत को मगरबी बंगाल के मशरकी मेदिनीपुर जिले के साहिली गांव जुनपुट में एक और हथियारों और मिजाइलों के तजुर्बे के लिए आजमाइशी रेंज मिलने जा रही है। मगरबी बंगाल के वजीराला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO की जानिब से हथियारों और मिजाइलों का तजुर्बाती मरकज कायम करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वजीराला ने कहा कि यह मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। जुनपुट में मुजव्वजा आजमाइशी रेंज, ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद तजुर्बाती मरकज और आंध्र प्रदेश में तजुर्बाती मरकज के बाद DRDO का तीसरा बड़ा मरकज होगा। भारत में इस वक्त मिजाइलों की आजमाइश के लिए एक अहम मरकज मौजूद है जिसे मरबूत आजमाइशी रेंज कहा जाता है। ये ओडिशा में मौजूद दो लॉन्च कॉम्प्लेक्स के जरिए काम करता है। जुनपुट में मुजव्वजा आजमाइशी रेंज खलीज बंगाल के रास्ते चांदीपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ होगी। ये नया मरकज ओडिशा के तजुर्बाती मरकज के काम का बोझ कम करेगा और मुल्क की दिफाई टेक्नोलॉजी और हथियारों के आजमाइश की सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने में मदद करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज गुजरात खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि

0: मध्य प्रदेश, मगरबी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में आज दिन में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं महकमा मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, सिक्किम और शुमाल मशरकी भारत के हिस्सों में भी आज दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वहीं महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी दिल्ली में अगले तीन दिन के दौरान बहुत हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब की वजह से हलाकतों की तादाद 1386 हो गई है। कुदरती आपात से निपटने की कौमी अथॉरिटी के मुताबिक अब तक बरामद होने वाली 104 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। तकरीबन 5130 अफराद अब भी लापता हैं। अब तक 13700 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 339 अफराद जेर इलाज हैं। तलाश और बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। त्रियासना, रसुआ, नोवाकोट और धाडिंग जिलों में 3700 से ज्यादा अफराद आरजी पनाह गाहों में मुकीम हैं। गुज़श्ता महीने की 26 तारीख को नेपाल तिब्बत सरहद के नज़दीक बर्फानी तोदे गिरने से आने वाले सैलाब ने शुमाली और वस्ती नेपाल के कस्बों और देहातों को तबाह कर दिया था। इराक ने मायसन सूबे की फौजी कार्रवाइयों के कमांडर को बरतरफ कर दिया है और ईरान के साथ अपनी शलामचे सरहद क्रॉसिंग को आरजी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों के बाद जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि इन हमलों की शुरुआत इराक से हुई है, तहम सऊदी अरब ने कोई जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया था। टेनिस में एलिना रायबाकीना ने यूएस ओपन के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। रायबाकीना ने कल शाम न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अरीना सबलेंका को 6-4, 5-7 और 6-2 से शिकस्त दी। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद यह रायबाकीना का पहला यूएस ओपन खिताब और करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इस जीत के साथ ही रायबाकीना WTA आलमी रैंकिंग में सबलेंका को हटाकर आलमी नंबर एक बन गई हैं। खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये खिताबी मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। 7 मरतबा की चैंपियन भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से शिकस्त देने से पहले वो 3 फतूहात के साथ ग्रुप ए में सरफहरिस्त रही। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने तीनों ग्रुप मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अलावी मैचों की सीरीज का आगाज करेगा। सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा T20 मैच मंगल के रोज जबकि तीसरा मैच जुमेरात को होगा। सभी तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान ब्रिक्स एलामिया को मंजूर किए जाने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए पेश किया गया ब्रिक्स का नई दिल्ली एलामिया, इत्तेफाकी राय से मंजूर, बैन अलाक्वामी अमन सलामती को फरोग देने के लिए मजबूत आलमी इकदाम पर जोर। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के साथ मुलाकात की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग की शिरकत से भारत चीन तालुकात में बेहतरी की उम्मीद। ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग और ईरान के सदर मसूद पजरश्कियान के भारत इन्वेट्स नुमाइश के दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में 2025 पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया है। इसके अलावा मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रुंडी के सुदूर के साथ दोतरफा मुलाकातें करेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत ने DRDO की जानिब से रियासत के मशरकी मेदिनीपुर जिले में हथियारों और मिजाइलों की आजमाइश के लिए तजुर्बाती मरकज कायम करने की तजवीज को मंजूरी दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात में बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और न्यूयॉर्क में US ओपन टेनिस में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना ने बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हराकर खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है।

0: के साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। वो छांव जो याद आती है। श्रोताओं नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रयागराज। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। आज का ये विशेष अवसर उन रिश्तों के नाम है जिनकी छाया में हमारा बचपन सुरक्षित, सहज और खुशहाल बना, यानी हमारे दादा दादी और नाना नानी। घर की कल्पना कीजिए, वही आंगन, वही दीवारें, वही कमरे, लेकिन जब वहां से किसी बुजुर्ग की आवाज गायब हो जाती है तो सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा महसूस होता है। कभी कोई पूछता था, खाना खा लिया? कभी कोई देर से लौटने पर चिंता करता था, तो कोई हमारी छोटी सी उपलब्धि पर भी ऐसे खुश होता था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। यही तो थे हमारे दादा दादी और नाना नानी और उनका ढेर सारा प्यार, स्नेह, बिना शर्त, बिना हिसाब और बिना किसी अपेक्षा के। दादी का नाम आते ही बचपन की कितनी तस्वीरें आंखों के सामने उतर आती हैं। सर्दियों की धूप, गर्म रजाई, बालों में तेल, रात की कहानियां और वो स्नेहिल आवाज़ जो नींद आने तक हमारे पास बनी रहती थी। नानी का घर तो जैसे छुट्टियों का अपना संसार होता था। आंगन, रिश्तेदार, पकवान और ढेर सारा अपनापन। दादा की उंगली पकड़कर बाजार जाना, सुबह के सैर, उनके साथ निकलना और उनकी बातों से दुनिया को समझना भी बचपन का अनमोल हिस्सा रहा है। नाना की बातें तो अपने आप में अनुभव की पाठशाला थी। उनके पास जीवन के हर सवाल का कोई न कोई किस्सा होता था। हम अक्सर सुनते थे हमारे जमाने में, उस समय शायद वो लंबी कहानी लगती थी, लेकिन आज समझ में आता है कि उन बातों में केवल बीता हुआ समय नहीं बल्कि संघर्ष, समय, अनुभव और जीवन की सीख होती थी। श्रोताओं आप सोच रहे होंगे कि आज हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड। तो आपको बता दूं कि नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे हम मना रहे हैं। हमें इस अनमोल पीढ़ी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है ये दिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता 1978 में मिली और इसे सितंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है, और आज है रविवार। तो आज हम मना रहे हैं नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे। और भारत में भले इस दिवस की शुरुआत आधुनिक संदर्भ में हुई हो, लेकिन बुजुर्गों के सम्मान की भावना हमारी संस्कृति में बहुत पुरानी है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हमारी परंपरा

जीवन के अनुभव और वरिष्ठों के सम्मान को विशेष स्थान देती रही है हमेशा से। इसीलिए ये दिन केवल कैलेंडर पर दर्ज कोई अवसर नहीं है, बल्कि अपने परिवार की जड़ों से जुड़ने का एक सुंदर बहाना है। श्रोताओं, कभी कभी किसी रिश्ते की अहमियत तब समझ में आती है जब उनके साथ बिताए पल केवल स्मृति बन जाते हैं। कल्पना कीजिए एक बच्चे की जिसकी दिनचर्या स्कूल, पढ़ाई, खेल और दूसरी व्यस्तताओं से भरे हैं। घर में दादी रोज उसकी प्रतीक्षा करती हैं और वो लौटता है तो दादी पूछती हैं, आ गए? बच्चा संक्षिप्त सा उत्तर देता है और अपने काम में लग जाता है। दादी फिर पूछती हैं, खाना खाया? थक गए? कुछ चाहिए? जवाब छोटा होता है, लेकिन दादी का स्नेह कभी छोटा नहीं होता। समय बीतता है, बच्चा पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला जाता है। विदा होते समय दादी उसके हाथ में कुछ पैसे रखती हैं। वो मना करता है तो दादी कहती हैं, ये पैसे नहीं, मेरी दुआ है। कई महीनों बाद जब वो लौटता है, घर वही होता है लेकिन दादी नहीं होती। तब उसे एहसास होता है कि जिन साधारण सी लगने वाली बातों को वो रोज अनसुना करता रहा, वही उसके जीवन की सबसे कीमती स्मृतियां थी। ये कहानी हमें रोक कर सोचने को मजबूर करती है। हमारे आसपास मौजूद बुजुर्गों को हमारी संपत्ति, सुविधा या किसी बड़े उपहार से ज़्यादा आवश्यकता है हमारे समय की। कुछ मिनट उनके पास बैठना, उनकी बात ध्यान से सुनना और उनकी पुरानी स्मृतियों को जानना उनके लिए बहुत मायने रख सकता है। आज परिवारों का स्वरूप बदल रहा है। पढ़ाई, रोजगार के कारण लोग अलग अलग शहरों में रहने लगे हैं। संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दूरी स्वाभाविक है, लेकिन रिश्तों में दूरी जरूरी नहीं। एक फोन कॉल, वीडियो कॉल या छोटा सा संदेश भी अपनापन बनाए रख सकता है। श्रोताओं, तो मैं तो यही कहूंगी कि जब भी अवसर मिले तो साथ बैठने, आप जरूर एक साथ बैठिए और समय निकालिए, क्योंकि तकनीक चेहरा जरूर दिखा सकती है, आवाज़ जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन साथ होने की आत्मीयता का पूरा स्थान नहीं ले सकती। और अब नमस्कार प्रयागराज के श्रोताओं के लिए एक आत्मीय सवाल। आपकी दादी, नानी, दादा या नाना से जुड़ी सबसे प्यारी स्मृति कौन सी है? अगर आप हमारे फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक जो करते हैं तो वहाँ पर अगर आप इस प्रश्न का उत्तर भेजें तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। क्या कोई कहानी आज भी आपको याद है तो थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आप वहाँ पे हमें लिख भेज सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी। हमें लगेगा कि हमारी जो आपसे कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी वाली है और बरकरार है। कोई ऐसा पकवान जिसका स्वाद अब भी आपके मन में बसा है, कोई यात्रा, कोई त्यौहार, कोई सीख या फिर कोई डांट जिसमें छिपा है प्रेम। और इसी बात पर आइए मनाते हैं दादी को।

श्रोताओं सोचिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कितना अच्छा अवसर है, अगर बुजुर्ग आपके साथ हैं तो उनसे उनके बचपन के बारे में पूछिए, पूछिए कि वे कहाँ पले बढ़े, उनका स्कूल कैसा था, उनके समय के त्यौहार कैसे मनाए जाते थे, परिवार में कौन कौन थे और उन्हें जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप पाएंगे कि हर परिवार के पास अपनी

आज के माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधाएं और बेहतर अवसर देना चाहते हैं, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन इसके साथ यदि बच्चों को अपने परिवार की कहानियों और बुजुर्गों के अनुभवों से भी जोड़ दिया जाए तो उनका बचपन और समृद्ध हो सकता है। दादा दादी या नाना नानी के साथ बिताया समय बच्चों को भावनात्मक जुड़ाव, धैर्य और पारिवारिक पहचान की समझ दे सकता है। यदि इस समय कोई दादा दादी या नाना नानी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, तो उनके लिए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप परिवार के लिए केवल एक सदस्य नहीं हैं, बल्कि स्मृतियों और अनुभवों का पूरा खजाना है। और आपकी कही हुई बातें, आपके संस्कार और आपके साथ बिताए हुए पल आने वाली पीढ़ियों की पहचान का

कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, तो उनके लिए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप परिवार के लिए केवल एक सदस्य नहीं हैं, बल्कि स्मृतियों और अनुभवों का पूरा खजाना है। और आपकी कही हुई बातें, आपके संस्कार और आपके साथ बिताए हुए पल आने वाली पीढ़ियों की पहचान का

और श्रोताओं, आज हम लेते हैं एक छोटा सा संकल्प इस दिवस के अवसर पर कि हम किसी बुजुर्ग से ज़रूर बात करेंगे आज के दिन। यदि वे साथ हैं तो उनके पास बैठेंगे, और यदि दूर हैं तो फ़ोन करेंगे, उनकी कोई पुरानी कहानी सुनेंगे और उनके साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, उनके जीवन के अनुभव लिखेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, और उन्हें ये एहसास कराएंगे कि परिवार में उनकी जगह आज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास समय कम है, लेकिन सच तो ये है कि रिश्तों के लिए समय निकालना पड़ता है, और ये जो निकाला हुआ समय है ना श्रोताओं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो बातचीत हमें साधारण से लगती है, यही आने वाले वर्षों में हमारी सबसे सुंदर स्मृति बन सकती है। आइए इस अवसर पर उन हाथों को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें थामा, उन आँखों को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे लिए सपने देखे, और उन दिलों को नमन करें जिन्होंने हमें बिना किसी शर्त के अपनाया।

वो आंगन, वो चौखट, वो घर याद आता है। दादी का स्नेह भरा आंचल याद आता है। दादा की उंगली थामे जो रास्ते चले थे, बचपन का वो हर सफर याद आता है। नानी के हाथों की खुशबू आज भी मन में है। नाना की सीख की रोशनी जीवन में है। समय आगे बढ़ता गया अपनी रफ्तार से, पर बचपन की वो दुनिया आज भी दिल के पास है।

तो श्रोताओं, जीवन की गति हमें लगातार आगे तो ले जाती है, हम नई जगहों पर जाते हैं, नई जिम्मेदारियां निभाते हैं और नए सपने देखते हैं, लेकिन हमारी जड़ें वहीं रहती हैं, वहाँ जहाँ किसी ने पहली बार हमें प्यार से पुकारा था, जिन बुजुर्गों ने हमारे बचपन को अपनी उपस्थिति से सुरक्षित और सुंदर बनाया, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि हम उन्हें अपने वर्तमान में जगह दें। इसलिए आज यदि दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनकी बातें सुनिए। दादी हैं तो उनके साथ कुछ पल बिताइए, नाना या नानी दूर हैं तो उन्हें फ़ोन कीजिए, और यदि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी किसी अच्छी सीख को अपने जीवन में आगे बढ़ाइए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और कृतज्ञता होगी। घर की दीवारें उसे मकान बनाती हैं, लेकिन रिश्ते उसे घर बनाते हैं, और बुजुर्ग उन रिश्तों को पीढ़ियों की स्मृतियों से जोड़ते हैं। उनके साथ बिताया समय हमारे जीवन की ऐसी पूंजी है जिसका मूल्य उम्र बढ़ने के साथ और अधिक समझ में आता है। इसी भाव के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तोत्री थी मोना पांडे और कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया था अभयकांत तिवारी ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा?
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज सबसे पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एनिमल से। अरिजीत सिंह की आवाज है, गरिमा ने इसे लिखा है और श्रेयस पुराणिक का संगीत है।

0: बॉर्डर टू का ये गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे श्रोताओं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

बॉर्डर टू फिल्म का गाना भी आपने सुना, सुनो निगम की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर की शब्द रचना थी, मिथुन का संगीत था और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है 9:15 यानी सामयिक चर्चा सुनने का। रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम मेरी आंगनवाड़ी मेरी जिम्मेदारी रखी गई है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम पंचायत और गांव के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी।
1: आत्मनिर्भर विकसित भारत दिल्ली में बनाने से नहीं, गांव और गलियों से होकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला यहां से प्रारंभ होती है। आंगनवाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इसके प्रारंभिक केंद्र बनेंगे और ये शुरुआत हुई है एक समर्थ और शिक्षित भारत के लिए, स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र। और उसकी थीम इसीलिए इस वर्ष रखी गई है कि मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी।
0: वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पोषण माह अभियान कुपोषण से मुक्ति के साथ स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। आज पोषण का ये संकल्प जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।
2: राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में एक ऐसे राष्ट्रीय संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं जो हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की समृद्धि से जुड़ा है। यह संकल्प है सुपोषित और सशक्त भारत का।
0: कार्यक्रम में शामिल रहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पोषण अभियान के अंतर्गत देश भर में 150 करोड़ से अधिक जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, पोषण सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि जीवन का सार है। इस सोच के साथ पिछले 8 वर्षों में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित पोषण अभियान के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई है। इस आम जन के बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, यह जन भागीदारी पोषण अभियान के सबसे बड़ी ताकत है।
0: पोषण माह में 5 प्रमुख विषयों आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा एवं हॉट कुक्ड मील, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, बाल शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए विशेष गतिविधियां पूरे देश में आयोजित की जा रही हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस बार यहीं से इस अभियान की शुरुआत भी हुई है। यहां राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि विस्तृत कैलेंडर जारी कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वह पोषण माह के लिए जारी कैलेंडर का पूर्णतः पालन करें।
0: वाराणसी के बाद बात कानपुर देहात की, जहां राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है और यहां आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वच्छता, संतुलित आहार और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ती शैलेश दीक्षित ने बताया कि गांव-गांव में पंजीकरण किया जा रहा है, साथ ही जागरूकता गतिविधियों के जरिए परिवारों को स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करने को कहा जा रहा है।
5: मैं आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण भी करती हूँ, महिलाओं को जागरूक भी करती हूँ और घर घर जा करके महिलाओं और बच्चों को पोषण

0: संबंधी जानकारी देती हूँ।
1: बुंदेलखंड में कुपोषण कभी बड़ी समस्या थी, लेकिन अब यहाँ भी पोषण माह जैसे अभियान और सरकारी योजनाओं ने तस्वीर बदली है। बुंदेलखंड के हमीरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां केवल विभागीय कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे बच्चों के गर्भावस्था से लेकर शुरुआती बचपन तक पोषण, स्वास्थ्य और समुचित विकास की पहली प्रहरी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ राष्ट्रीय पोषण माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि तय की गई 5 थीमों पर साप्ताहिक रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा।
2: 5 थीमें तय की गई हैं, जो साप्ताहिक रूप से उनका क्रियान्वयन कराया जाएगा। जैसे आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन के बारे में जानकारी दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा पका भोजन बच्चों को मिले, इसकी व्यवस्था पहले से ही चल रही है। सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही तय की जाएगी और उसके बारे में जागरूकता प्रसारित की जाएगी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत इस पूरे माह में विशेष अभियान चला करके सभी पात्र लाभार्थियों का इसमें हम लाभान्वित कराने का प्रयास करेंगे।
1: आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल बलरामपुर में भी पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान कई विभागों के सहयोग से चलाया जा रहा है। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नीलम ने बताया कि गांव-गांव तक पोषण का संदेश पहुंचाया जाएगा, जिससे कि पोषण के प्रति जागरूकता बढ़े।
3: हम लोग गर्भवतियों और धात्री माताओं का बैठक करवाते, उनके घर पे जाते, उनको समझाया जाता है, घर पे जाके भी समझाया जाता है और हम लोग एक माता बैठक करते हैं, उसमें भी हम लोग समझाते हैं कि आप लोगों को कैसा खान पान करना चाहिए अपना और टीका कैसे लगवाना चाहिए, कितना टीका लगवाना चाहिए, पोषण में क्या क्या लेना चाहिए, दवाई क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, हर चीज़ों के बारे में हम लोग उनको माता बैठक में भी समझाते हैं। बाकी हम लोग रैलियाँ भी निकालते हैं।
1: पोषण माह के दौरान पोषण वाटिका को भी बढ़ावा दिया जाता है। घर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल और सामुदायिक स्थानों पर हरी सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसी प्रयास को अमरोहा में भी पोषण माह के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों व मोटे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, साथ ही स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और महाविद्यालयों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित होंगे।
4: कुछ कार्यक्रम जिला स्तर पे आयोजित होंगे, कुछ ब्लॉक स्तर पे आयोजित होंगे और ज्यादातर सारे कार्यक्रम ग्राम स्तर पे हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे आयोजित होंगे। अंतर्गत जो है 5 मुख्य थीम रखी गई है, आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन पहला है, दूसरा जो है बाल विकास हेतु पोषण और एवं प्रारंभिक उद्दीपन, तीसरा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर पका हुआ भोजन, चौथा है सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही और पांचवा है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये 5 विषयों पर फोकस करके हर एक दिन का कार्यक्रम पेश किया गया साप्ताहिक।
1: पोषण माह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया जैसी समस्याओं की समय पर पहचान करना और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। शाहजहांपुर में भी राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में कुपोषण दूर करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कुपोषण की स्थिति पर निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों और महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आंकड़ों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
5: पोषण माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की जांच के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें मैंने अपने बच्चे की भी जांच कराई है, जो पहले कुपोषित था, बाद में पोषण सामग्री मिलने के बाद अब सही है।
1: 9वां पोषण माह केवल एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वस्थ भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाने का व्यापक प्रयास है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि हर परिवार तक पोषण का संदेश पहुंचे, हर बच्चे को पर्याप्त पोषण मिले और मिलकर एक स्वस्थ, सक्षम और कुपोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।
6: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे वाराणसी से शुरू हुए 9वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत प्रदेश में होने वाली गतिविधियों और जागरूकता के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
7: सामयिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। अब
8: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। सामईन, आज उर्दू प्रोग्राम में जासूसी सीरीज शह और मात की कहानी मैं कौन हूँ की तीसरी और आखिरी किश्त पेशे खिदमत है।
1: लाख छुपा लो सच्चाई को जुर्म के काले पर्दों

0: अभी तक आपने सुना?
1: हसन कामरान और अलशिफा को बाराबंकी भेजता है एक नकली गहनों के मामले के सिलसिले में, और खुद अस्पताल जाता है घायल सिपाही से मिलने। वो सिपाही बताता है कि रात में उसने समर सिंह को देखा था जो सुल्तान का आदमी है। अस्पताल से हसन कुड़ियाघाट जाता है जहां पुलिस को किसी की लाश मिली है। इंस्पेक्टर सुनील बताता है कि मरने वालों को लोग बच्चा भाई के नाम से जानते थे। असल में बच्चा भाई को सुल्तान ने कैद किया हुआ था और अपना सोना मांग रहा था। कैद में ही बच्चा भाई की मौत हो जाती है। उधर बाराबंकी की जेल में बंद सूरज कामरान और अलशिफा को बताता है कि उसने तो सिर्फ बच्चा भाई के कहने पर लालच में उसके दिए गहने बेचे थे। रात में खाना खाते हुए हसन को इंस्पेक्टर सुनील का फोन आता है। जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहाँ गोलियां चली हैं। दोनों होटल जाते हैं। अब आगे।
2: जमाने के क्या क्या सितम देखते हैं हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। हसन, अगर हम होटल से ना निकले होते तो हमारा क्या हाल होता?
3: वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कामरान, दुश्मन हमारे हौसलों को कम आंक रहा है। खैर, मैंने तुमसे नहीं कहा था, अपने रब का शुक्र अदा करो। देखो, उसने हमें फिर मुसीबत से बचा लिया।
2: बिल्कुल, वैसे मैं अभी दोनों का सदका निकाल के देता हूँ। जरा 500 रुपए दीजिए।
1: हसन ने अपने होंठ चबाते हुए 500 रुपए निकाल कर दिए।
3: बेगैरत कंजूस।
1: पैसे लेकर कामरान बाहर चला गया। कमरे में हसन और सुनील रह गए। सुनील हसन की तरफ मुतवज्जे हुआ।
4: सर, आपको कुछ देना है। फॉरेंसिक वालों की फैक्ट्री वाली रिपोर्ट आ गई है, ये लीजिए।
1: सुनील ने हसन को एक सीलबंद लिफाफा दिया। हसन ने लिफाफा खोलकर पूरी रिपोर्ट निकाली और पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ते ही हसन के लबों पर तबस्सुम आ गया। तभी कामरान वापस आया और बोला,
2: मैंने मुसीबत को टालने के लिए सदका निकाल दिया है। चलते वक्त कुछ मोहताजों को खाना भी खिला देंगे। देखो, मैंने पैक भी करा लिया है, वो भी अपने पैसों से।
3: तुम्हारे अंदर तो एक नेक इंसान है, मैं ख्वामखा तुमको जलील आदमी समझता रहा।
2: अब नेक कहो या जलील, जो भी हूं, रहना तो मेरे साथ ही है।
3: अरे सुनील, मैं तो भूल ही गया, मैंने तुमको फैक्ट्री के मालिक का पता लगाने को कहा था, कुछ पता चला?
4: जी सर, वो ये है कि।
1: तभी कामरान ने सुनील की बात काटते हुए कहा,
2: वो फैक्ट्री बिजनेसमैन मोहन धनराज की है।
4: सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी यही पता लगाया है।
2: अरे रुकिए जनाब, मैं आगे की भी बता देता हूँ जो शायद आप पता करना भूल गए हो, और वो ये कि सेठ मोहन धनराज ने अभी 6-7 महीने पहले ही ये फैक्ट्री खरीदी है। इससे पहले वो फैक्ट्री किसी सिकंदर बख्श की थी।
1: हसन ने सुनील को देखा। हसन हैरान भी था कि कामरान ने इतनी मालूमात कहां से इकट्ठा की, मगर इंस्पेक्टर सुनील के चेहरे पर शिकन देखकर वो चौंक गया और बोला,
3: क्या हुआ सुनील, कामरान की बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे पर ये शिकन कैसी?
4: सर, अभी जो नाम आया है सिकंदर बख्श, जानते भी हैं वो कौन है? हमारे मुल्क के बड़े बिजनेसमैन हैं।
1: सुनील की बातों से हसन और कामरान के दिमाग में धमाका हुआ। कुछ लम्हों के लिए कमरे में सुकून तारी हो गया। कुछ देर बाद हसन की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा।
3: तुम दोनों को यकीन है कि ये सिकंदर बख्श वही हैं? कुछ गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
2: मैं नहीं जानता, मैंने तो बस नाम का पता लगाया था।
4: सर, पक्का तो मैं भी नहीं कह सकता, मैंने सिर्फ तार इसलिए जोड़े कि सिकंदर साहब

0: साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, श्री धनराज को खड़ा करने में भी सिकंदर साहब ही हैं। अब आगे तो तफ्तीश का मामला है।
1: पहली बार हसन उलझन में नजर आ रहा था। उसकी आवाज अब काफी संजीदा हो चुकी थी।
2: ये बात हम तीनों के बीच ही रहे, इस कमरे से बाहर ना जाए। चलो कामरान, तुमको कुल्हड़ वाली चाय पिलाता हूँ।
1: होटल से निकलकर दोनों कार में बैठे और चल दिए। गरीब मोहताजों को खाना खिलाने के बाद दोनों चाय पीने पहुंचे। हसन ने कहा,
2: इतनी बातें तुमको कब मालूम हुई और कैसे?
3: मोहतरम देखिए ना, अलशिफा के साथ जाने का कितना फायदा हुआ। अलशिफा के कुछ साथी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ही कुछ वक्त पहले ये खोजबीन की थी। जब ये फैक्ट्री की डील हुई थी, इतनी महंगी जमीन और फैक्ट्री धनराज को यूं ही सस्ते में बेच दी।
2: तो मुझको क्यों नहीं बताया अब तक?
3: देखा देखा, अब हुआ ना एहसास, राज रखने पर सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है। अब गुजरी खुद पर।
1: हसन इस दफा कामरान के सामने लाजवाब था। उसने कुछ न कहा और नजरें चुराने लगा। चाय पीकर दोनों वापस गेस्ट हाउस के लिए लौट गए। गेस्ट हाउस आकर कामरान सोने चला गया, लेकिन हसन की आंखों से नींद दूर थी। वो बाहर टहल रहा था। कामरान ने खिड़की से झांका और हसन को फोन पर किसी से बात करते पाया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर हसन और कामरान आमने सामने बैठे थे।
3: क्यों जनाब, रात में सोना हुआ या जागते ही रहे?
2: थोड़ी देर से सो गया था, नींद भी अच्छी आई, तरोताजा महसूस हो रहा है। मैंने नाश्ते पर अलशिफा और सुनील को भी बुलाया है, आते ही होंगे।
1: तभी कमरे में यके बाद दीगरी अलशिफा और सुनील की आमद हुई। सबने साथ नाश्ता किया। हसन ने बताया, आज का हदफ सुल्तान है, उसके ठिकाने पर पुलिस के साथ घुसना है। चारों एक गाड़ी में निकले जिसमें पुलिस का सायरन नहीं था। ठाकुरगंज के उस हिस्से में सुबह अभी अंगड़ाई ही ले रही थी, ज्यादातर दुकानें अभी बंद थी। वो लोग वेल्डिंग शॉप के बाहर पहुंचे।
2: सभी लोग एहतियात से हथियारों को अंदर छुपा लो, किसी को शक ना हो पुलिस आई है।
1: सब लोग हथियार छुपाकर अंदर गए, जहां काम अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। सामने बैठे आदमी की तरफ इशारा करके सुनील ने बताया, यही समर सिंह है।
3: भाई साहब, हमको लोहे का एक बड़ा गेट बनवाना है, लेकिन याद रहे मजबूत हो, गोदाम के लिए बनाना है भाई। अच्छा ये बताइए, कितने पैसों में ये गेट बनेगा?
4: बन जाएगा, नाम पता और एडवांस जमा कर दो।
1: पीछे से जाकर सुनील ने पीठ में बंदूक सटा दी। हसन ने सामने से बंदूक दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। पुलिस के आदमी ने वहां काम कर रहे सभी आदमियों को एहतियातन गिरफ्तार कर लिया।
2: समर सिंह, चुपचाप हम लोगों को सुल्तान के पास कैसीनो में ले चलो।
1: समर सिंह हाथ उठाए हुए चुपचाप आगे चलने लगा। उनको पीछे के दरवाजे से लेकर कैसीनो में दाखिल हुआ। कैसीनो बंद था, बस सुल्तान के आदमी अंदर थे। पुलिस के जवान भी अंदर आ गए।
3: सुल्तान, अपने आदमियों के साथ सरेंडर कर दो, पुलिस ने इस जगह को सील कर दिया है, आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
2: खामोशी से ये काम करोगे तो किसी का खून नहीं बहेगा।
1: तभी सुल्तान की आवाज गूंजी,
5: सुल्तान को फरिश्ते भी कैद नहीं कर सकते, मार दो सभी लोगों को जो भी रास्ते में आए।
1: हसन अलशिफा और समर सिंह को लेकर आड़ में हो गया। दोनों तरफ से बंदूकें चलने लगी। सुल्तान के कुछ आदमी मारे गए। सुल्तान एक खुफिया रास्ते से भाग निकला। ये देखकर बाकी लोगों ने हथियार डाल दिए।
6: सर, आपके प्लान के मुताबिक सुल्तान भाग गया है और उसको भागने का रास्ता दे दिया गया है।
0: फिक्र ना करें सर, वो जहाँ भी जाएगा हमको खबर होती रहेगी।
2: जाएगा कहाँ, अपने मालिक के पास ही जाएगा। अलशिफा और कामरान, तुम दोनों को सेठ धनराज के पास जाना है, मैं जरा ये पूरा मामला संभालता हूँ। तुम दोनों धनराज से उसके ईवी बिजनेस की बातें पूछना।
7: जी सर।
1: अब ये ईवी बिजनेस का है,

0: नया शगुफा हसन ने छेड़ा था। ये बात किसी को समझ तो नहीं आई, लेकिन किसी ने कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। हसन और कामरान सेठ मोहन धनराज की आशानी पर पहुंचे। आलमबाग में बड़ा और आलिशान घर था। धनराज को खबर हुई तो बड़ी मोहब्बत से मिला।
1: खुश आमदीद, मेरे घर पर आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। लेकिन मुझे हैरत हुई, मेरे घर पर पुलिस क्यों आई है? मैंने तो पहले ये बयान दे दिया था कि फैक्ट्री मैंने अपने नए ईवी बिजनेस को बढ़ाने और स्कूटी स्टोर करने के लिए खरीदी थी। जल्दी वहाँ नया तामीरी काम भी शुरू कराने वाला था, इसी बीच ये हो गया। कुछ पता चला फैक्ट्री में घुसने वाले लोग कौन थे?
2: तफ्तीश जारी है सर, आप अपने ईवी बिजनेस के बारे में बताइए, ये कब शुरू किया?
1: पहले मेरा बैटरी का बिजनेस था, इसमें मुझे मुसलसल नुकसान हो रहा था तो ये शुरू किया।
3: तो अब फायदा हो रहा है? हम डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे, आप कहें तो सर्च वारंट लेकर आए।
1: देखिए, अभी नया बिजनेस है, बिजनेस में ऊपर नीचे लगा रहता है। डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफिस में मिलेंगे, मैं फोन कर देता हूँ।
0: ये दोनों धनराज के ऑफिस निकल गए। उधर हसन और सुनील ईवी प्लांट के अंदर सर्च वारंट के साथ पहुंचे। हसन काफी देर प्लांट के हर हिस्से की बारीकी से जांच करता रहा, तभी सुनील का फोन बजा।
4: अच्छा है सर, शिकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है।
5: अब पूरे ड्रामे के इख्तिताम का वक्त है सुनील, चलो सिकंदर साहब से मिलते हैं।
0: हसन ने फोन करके अलशिफा और कामरान को भी वहीं बुला लिया। गोमती नगर इलाके में एक बड़ा महल, मेन गेट से लेकर हर जगह मुस्लि सिक्योरिटी गार्ड्स, सब अंदर दाखिल हुए, किसी को नहीं रोका गया। अंदर सोफे पर सिकंदर बख्श इत्मीनान से बैठा था।
6: आइए आइए, आप तो पूरी फौज के साथ आ गए, क्या बात हो गई? आने से पहले फोन पर वक्त तो लेना चाहिए था। खैर, आजकल अदब और अखलाक का जमाना ही कहाँ है।
7: भरी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ।
0: सिकंदर ने जोर से कहकहा लगाया।
5: सुल्तान को जानते हैं?
6: सुल्तान, ये कौन है?
5: और मोहन धनराज को?
6: मोहन जी तो शहर के जाने माने ताजिर हैं, तिजारत के मामले में मिलना होता रहता है। इन सब बातों का क्या मतलब है भला?
5: दरअसल अफ्रीका, मशरिक वस्ता और दीगर ममालिक में एक बैनुल अक्वामी रैकेट है जो नकली सोना बेचता है। इन मुल्कों की खुफिया एजेंसियों को शक था कि हिंदुस्तान में भी कोई है जो इस रैकेट की मदद कर रहा है, इसलिए वजीर आजम और वजीर दाखिला ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि इस मामले का खुलासा करूं।
0: कामरान को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था पूरा मामला। हसन ने बात जारी रखी।
5: साइंस का एक कायदा है, अगर तांबे और जस्ते को एक खास तनासुब में मिलाकर गर्म किया जाए तो सोने जैसा बन जाता है देखने में। इसके अलावा अगर तांबे और पीतल के गहने बनाकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाए तो वो लोगों को गुमराह करने के लिए काफी है।
6: ये बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ, कहानियाँ ना बनाओ।
7: इज्जतदार हो? वैसे हसन, ये तो बताओ, उस फैक्ट्री में नकली सोना बन रहा था, ये तुमको कैसे पता चला और क्या सबूत है इस बात का?
5: मैंने लखनऊ आने के पहले ही अलशिफा को इस काम पर लगा दिया था। नकली सोना बनाने के लिए कोई तो बड़ी जगह चाहिए थी, जो वीरान जगह पर हो, जहां लोगों का आना जाना कम हो, और अलशिफा को उस मूसा बाग वाली फैक्ट्री पर शक हुआ। रही सबूत की बात तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है वहां कॉपर और जिंक के कतरे मिले हैं। जब हम फैक्ट्री में घुसे थे वहां अजीब सी बू थी।
2: लेकिन सर, सुल्तान का इन सब में क्या किरदार है और वो बाराबंकी वाला मामला क्या था?
5: सुल्तान सिकंदर साहब का दाहिना हाथ है। सिकंदर के यहाँ काम करने वाले बच्चा भाई ने सुल्तान से नकली सोना चुराया था और उसके नकली गहने बनवा कर दूर दराज के गांवों में बेचने के लिए सूरज को भेजा। बच्चा भाई को सुल्तान ने मारा है।
4: और सर, जो गोलियां होटल में आपके रूम पर चली थी वो?
5: जाहिर है उसके पीछे भी सुल्तान और सिकंदर साहब ही हैं।
0: सिकंदर अब इन बात

0: उसे खींच चुका था। चिल्लाकर बोला,
1: मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते जा रहे हो, दो कौड़ी के जासूस, मेरी एक शिकायत पर तुमको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, आया समझ में?
2: मुझको ये आरजू, वो उठाए नकाब खुद, उनको ये इंतजार तकाजा करे कोई। रुके जनाब, थोड़ा सब्र करें, हसन बिना दलील के कभी कोई बात नहीं करता। बोलो हसन, सेठ धनराज इसमें कैसे मुलव्विस हुआ?
3: सिकंदर साहब 2 साल पहले बर्बाद होने की कगार पर थे, बिजनेस बैठ चुका था, उधर धनराज का बैटरी का बिजनेस भी घाटे में था। ऐसे में सिकंदर साहब की मुलाकात उस रैकेट से हुई और उस रैकेट की मदद और पैसों से सिकंदर बख्श दोबारा खड़े हुए, धनराज को अपने साथ मिलाया। नकली सोने के लिए कॉपर की जरूरत थी, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी से अच्छा बिजनेस क्या हो सकता था। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी, मोटर और वायरिंग में कॉपर का काफी इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखें तो इनकी स्कूटी मार्केट में ना टिकाऊ है और ना उनकी मांग है। ये बिजनेस तो बस एक बहाना है, घाटे के बाद भी मुनाफा इस बात का सबूत है। सिकंदर, सुल्तान और धनराज सबके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, जो अदालत में काफी हैं।
4: ओह अच्छा, तभी सिकंदर बख्श ने अपनी महंगी फैक्ट्री सस्ते में मोहन धनराज को दे दी।
1: वाह, तुम लोगों को तो नौटंकी में होना चाहिए, अच्छा ड्रामा है। सबूत कहाँ है, जवाब दो, कहाँ है सबूत?
5: हमने सुल्तान को जानबूझकर भागने दिया था, उसके पीछे हमारे आदमी थे, हमारे पास पूरा वीडियो है। जब वो इस घर में घुसा था, आधे घंटे बाद तुम्हारे आदमी उसे बचाने के नाम पर मोहनलालगंज के फार्म हाउस ले गए थे गोली मारने के लिए। सुल्तान और तुम्हारे आदमी हमारे कब्जे में है और सेठ मोहन धनराज भी हमारे हिरासत में है।
0: अब जाकर सिकंदर के पेंच ढीले हुए, मगर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई थी। वो बोला,
1: इस घर में घुस तो आए हो, जिंदा यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, शूट कर दो इन सबको।
0: उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया, मगर किसी ने कोई हरकत ना की।
3: सिकंदर, तुम्हें लगता है हम दूध पीते बच्चे हैं, गोली खाने यहाँ आ जाएंगे? कल रात ही मैंने वजीरे दाखिला से बात करके रातों रात इन गार्ड्स को बदलवा दिया था, ये पुलिस के आदमी हैं, तुम अपने ही घर में कैद हो।
0: अब कामरान का जब्त जवाब दे गया, आगे बढ़कर उसने सिकंदर का दामन थाम लिया।
2: तो तुम हो वो आदमी जिसने परेशान कर रखा था, मैं कौन हूँ लो पता लगा लिया, तुम कौन हो?
0: कामरान ने 2 जोरदार तमाचे लगाए सिकंदर को, जिससे उसके होश फाख्ता हो गए।
2: एक हमारे ऊपर फैक्ट्री में हमला करवाने के लिए, दूसरा होटल में हमले के लिए। याद रखिए, हसन और कामरान मुजरिम को 7 पर्दों के पीछे भी देख लेते हैं।
3: कामरान बस करो, आगे पुलिस को अपना काम करने दो। अलशिफा, उम्मीद है तुमको एक जोरदार स्टोरी मिली है न्यूज के लिए, मुझे पूरी रिपोर्ट ऊपर भेजनी होगी।
6: जी बिल्कुल सर।
0: इंस्पेक्टर सुनील सिकंदर बख्श को गिरफ्तार करके ले जाता है और इस तरह ये नकली सोने का केस सुलझा लिया जाता है। अगले दिन गेस्ट हाउस में हसन और कामरान अपना सामान पैक कर रहे हैं, आज उनकी ट्रेन है। अलशिफा भी उनको विदा करने के लिए आई है। तीनों स्टेशन के लिए गेस्ट हाउस से बाहर आते हैं, वहां सुनील किसी ज़ईफ़ खातून को लेकर खड़ा है।
3: क्या हुआ सुनील, रुख्सत करने आए हो?
5: सर मिलने भी आया था और मिलाने भी। ये शाइस्ता बीबी हैं, इनकी बेटी शाजिया 1 महीने से गायब है, मैंने बहुत ढूंढा मगर मिली नहीं, सर आप कुछ करिए।
0: हसन ने उस ज़ईफ़ा की आंखों में देखा, वहां उसे एक सदमा और एक माँ की तड़प दिखाई दी। हसन बोला,
3: कामरान सामान वापस रखो, हम कहीं नहीं जा रहे, पहले एक माँ की बेटी को ढूंढना है।
7: डरती है अहले जुर्म हसन कामरान से, शमशीर जब भी निकली है उनकी मियां से, छुप जाए कहीं जाके दुनिया की नजर से, मुजरिम को ढूंढ लाएंगे सारे जहां से।
8: उर्दू प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे
6: जासूसी सीरीज शह और मात की कहानी मैं कौन हूँ

0: की तीसरी और आखिरी किश्त। सामयिन इस ड्रामे को अपनी खूबसूरत आवाज़ों से आरास्ता करने वाले लोगों के इसमें गिरामी और किरदारों का तारुफ इस तरह है। रावी सुरेंद्र राजेश्वरी, डिटेक्टिव हसन मुश्तबा आसिफ इकबाल, कामरान खान शमसुल आरफीन, इंस्पेक्टर सुनील सुभाष खन्ना, सिकंदर बख्श जमशेद सिद्दीकी, सुल्तान मोहम्मद उमर, अलशिफा शाइस्ता जाहिद, मोहन धनराज सैयद मोहम्मद उमर, सुल्तान का आदमी सईद अख्तर। तहरीर और पेशकश आसिफ इकबाल की थी। आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं अमृता मालवीय। आपको इनके स्वर में गीत और भजन जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

सीतेश आलोक के स्वर में का लिखा अमृता मालवीय के स्वर में ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम था सुगम संगीत। अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को

0: और सुदृढ़ करने की प्राथमिकता समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलिना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकिना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria.
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कलाकार हैं संगीता मिश्रा और राम सखा यादव। तो पहले सुनते हैं संगीता मिश्रा के स्वर में ये देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माथुरी। कलाकार हैं संगीता मिश्रा। अभी आपने सुना था इनके स्वर में देवी गीत और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में गंगा गीत।

लोक गीतों के इस कार्यक्रम लोक माधुरी में अभी आप सुन रहे थे संगीता मिश्रा के स्वर में लोकगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं राम सखा यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत। पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है राम सखा यादव और साथियों के स्वर में झूमर सुनने का।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माथुरी। आज के कलाकार थे संगीता मिश्रा, राम सखा यादव और साथी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र बस रास्तों को महसूस करने के लिए होते हैं, जहां हर मोड़ एक नई कहानी कहता है।

0: यूं ही सफर, यूं ही सफर।
1: कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ऐसे शामिल होते हैं जैसे सुबह की पहली किरण चुपके से आंगन में उतर आए। ना कोई शोर, ना कोई दस्तक, बस एक मीठा सा एहसास, और इसी खूबसूरत एहसास को आवाज़ देता है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

गीतों की दुनिया में कुछ ऐसे नगमे होते हैं जो हमारी रूह को खोने में मजबूर कर देते हैं, जो कभी पुराने नहीं होते। उन्हें सुनकर हमें उसी ताजगी का एहसास होता है जो हमें शायद पहली बार उस गीत को सुनकर हुआ था।

हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ख़ास शख्स ऐसा होता है जो हमारी पूरी दुनिया होता है, जिसके होने से हर खुशी मुकम्मल, हर कमी पूरी लगती है और दिल बस इतना कहता है, मेरी दुनिया तुमसे ही।

कभी कभी गुजरे हुए लम्हे, अधूरी बातें, यहाँ तक कि किसी की याद से जुड़ी गलियाँ अनायासी उस शख्स की याद दिला देती हैं जो शायद अब हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगली उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 MHz पर। प्रस्तुत है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर है रितेश शुक्ल का।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं रितेश और आप सुन रहे हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के 21वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। दिनांक 12 सितंबर 2026 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के झलवा परिसर स्थित मुख्य सभागार में शनिवार को आयोजित 21वें दीक्षांत समारोह में कुल 728 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 22 पदक प्रदान किए गए। समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दिव्यांश ओमर को वर्ष 2026 का चेयरमैन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अरविंद ए नाटू, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय

प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के साथ साथ प्रोफेसर भीम सिंह विज्ञानश्री पुरस्कार विजेता और प्रधानमंत्री प्रोफेसर NSUT नई दिल्ली, प्रोफेसर मुकुल एस सुतामणे निदेशक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद तथा श्री अपूर्व कुमार डाइसेक्ट AI के संस्थापक और CEO की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ हुई।

0: संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मुकुल शरद सुतावणे ने पुष्प गुच्छ दे करके अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि संस्थान के लिए यह वर्ष अकादमिक अनुसंधान एवं विकास तथा समाज की सेवा के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन एवं योगदान को बनाए रखने और मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया कि नए पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता 160 क्रेडिट वाले बीटेक कार्यक्रम में अनिवार्य बहुविषयक माइनर की शुरुआत है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने मूल विषय से इतर विभिन्न क्षेत्रों में माइनर का अध्ययन कर सकते हैं। इनमें उद्यमिता एवं नवाचार, अर्थशास्त्र एवं वित्त, भारतीय ज्ञान परंपरा, प्रदर्शन एवं ललित कला तथा विज्ञान एवं प्रसन्नता सहित अनेक क्षेत्र शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के क्षेत्रों का चयन करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना तथा उनके व्यापक कौशल एवं क्षमताओं का विकास करना है। संस्थान ने अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की भी व्यापक समीक्षा की है। इसमें कार्यक्रमों के नाम और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु दोनों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य इन कार्यक्रमों को भावी विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, आकर्षक और स्वीकार्य बनाना है। इस क्रम में संस्थान के सभी 11 मौजूद एमटेक कार्यक्रमों के नामों को संशोधित कर उन्हें उभरते तकनीक क्षेत्रों एवं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक समकालीन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संस्थान अकादमिक उत्कृष्टता, उद्योग जगत से जुड़ाव और विद्यार्थियों के करियर विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर मजबूत कर रहा है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के संपादित ध्वनियांश।
1: To encourage our students to choose the more rewarding path of entrepreneurship and innovation for their career rather than an on-campus or off-campus job. Around 20+ startups are successfully being incubated at Newgen IDC Center of the Institute, cutting across a wide spectrum of domains from technology to manufacturing and social entrepreneurship, with some of them in the collaboration of Indian Army and Indian Railways. The Institute has established an umbrella sectionate company titled as IIIT Allahabad Innovation Foundation, IIF, to look after, help evolve, strengthen and facilitate the entrepreneurship and innovation ecosystem on campus. We are participating in UP government startup initiative with around 30 teams of budding entrepreneurs being mentored and planned for incubation over the span of 5 years. The institute has recently sanctioned the ITBI, inclusive TBI for women in the women category by the DST, which is recognition of institute's commitment in the developing startup ecosystem on campus. The Mighty Plus STPI funded initiative is on the way to support transnational research to startups in the domain of assistive technology. We have an office of Dean of Alumni Affairs to interact and keep connected with our vibrant and ever-growing alumni base. The Global Alumni Meet is organized every year to reorganize and felicitate the performing and illustrious alumni spread across the globe and appeal them to contribute back to their beloved alma mater. Before I put my words to rest this evening, I heartily congratulate all the degree awardees of this 21st Congress Ceremony of IIIT Allahabad, their proud and contented parents, all my faculty colleagues, officers and staff, and the whole IIIT family. My dear graduates, dream big, dream hard, dream vain away, chase your dreams and exert for your dreams. The dreams will certainly come true the other day. Excellence is a journey and never the destination. Let us traverse this journey forever. Milestone achievement will certainly come on your way. Thank you very much.
0: इसके बाद दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद प्रोफेसर अरविंद ए नाटू ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में करें। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और सामाजिक आवश्यकताएं निरंतर बदल रही हैं। इनके

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के 21वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग और वाचन स्वर थे रितेश के, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की।

अभी आप सुन रहे थे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद बच्चों।
0: बच्चों, एक हफ्ते के लगातार काम के बाद थोड़ा विश्राम तो मिलता है हमें रविवार को, और ये रविवार आपके और हमारे लिए खास होता है ना।
1: बिल्कुल,
0: क्यों? क्योंकि होता है हमारे मनपसंद कार्यक्रम बाल संग।
1: तो स्वागत है आज के बाल संग कार्यक्रम में। आपके दिन को और भी खूबसूरत बनाने आपकी दो दीदियां करेंगी आपसे ज्ञानवर्धक बातें और मनोरंजन भी।
0: तो बच्चों, शुरू करें आपसे बातचीत। दीदी, कभी कभी कोई काम हमसे नहीं करने का मन होता, हमें बहुत बोरियत होती है, तो हम कह देते हैं ना कि ये काम हमसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। या तो मन नहीं होता है या हम करना नहीं चाहते हैं।

0: और ये तो बात हमारी सरासर गलत होती है ना?
1: बिल्कुल
0: वैसे ही हमारे बच्चे भी होते हैं दीदी, कभी कभी वो नहीं करना चाहते हैं।
1: सही कह रही रचना। जो विषय उन्हें बोरियत लगता है या लगातार कई दिन विद्यालय न जाने के कारण वो काम करना नहीं चाहते तो वो ऐसा करते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आप सभी ने कभी न कभी कही होगी।
0: बिल्कुल ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, हमारे जीवन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो छोटे तो होते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है।
1: हाँ बच्चों, एक ऐसा ही वाक्य है, हम नहीं कर सकते। कभी कोई मुश्किल सवाल सामने आया तो हम नहीं कर सकते। कक्षा में मंच पर बोलने का अवसर मिला तो मुझसे नहीं होगा।
0: किसी नई चीज को सीखने की बारी आई तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच हम नहीं कर सकते हैं या फिर हम कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं?
1: बच्चों, मैं नहीं कर सकता, कई बार हमारी क्षमता की सच्चाई नहीं बल्कि हमारे मन का डर होता है, और इसी डर को बदलने के लिए हमें अपने शब्दों में एक छोटा सा बदलाव करना है। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता तो तुरंत कहिए हम कोशिश करेंगे।
0: हाँ बच्चों, और विश्वास कोशिश की पहली सीढ़ी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी काम में पहली बार विशेषज्ञ नहीं बन जाता है, मास्टर नहीं बन जाता है। एक बच्चा जब पहली बार लिखना सीखता है या सीढ़ी चढ़ना सीखता है, तो जब लिखना सीखता है तो वो अक्षर टेढ़े मेढ़े ही बनाता है, और सीढ़ी चढ़ता है तो वो गिरता भी है।
1: बिल्कुल। तो बच्चों, पहली बार साइकिल चलाते समय संतुलन बनाना आसान नहीं होता। पहली बार मंच पर बोलते हुए आवाज़ में झिझक हो सकती है, लेकिन अभ्यास और प्रयास धीरे धीरे मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। इसलिए अगर किसी काम में पहली बार सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम के लिए योग्य नहीं हैं।
0: इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और अभ्यास करना है और एक बार फिर से कोशिश करनी है। बच्चों, सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कभी हमें असफलता मिलती है, कभी कोई हमारी हंसी भी उड़ाता है, और कभी हमें लगता है कि हम दूसरों जितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा समय में दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद से कहिए कि हम आज से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। कल जो नहीं आता था, आज उसे सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपको मैथ्स नहीं आती है और आप इंग्लिश में मास्टर हैं,
1: जी
0: है ना? तो ये नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको खाली समय में बैठेंगे, जब आपके पास टाइम मिलेगा, घर में या स्कूल में कोई फ्री पीरियड आपको मिलेगा, या कोई टीचर नहीं आती है, या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टीचर के पास जा करके बार बार पूछने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो कल से उसे सुधारने की कोशिश करोगे ना बच्चों? यही छोटी छोटी कोशिशें आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का हदार बनती है हमारी। और ऐसे ही हमारे कई महापुरुष हैं जो कई बार, देखो, छोटी कक्षाओं में तो जो है वो कई बार पिछड़े भी हैं, लेकिन आगे चल करके वो
1: एक महान हस्ती
0: कितने
1: बने
0: हस्ती
1: हैं।
0: बने हैं। कोई साइंटिस्ट बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई शिक्षक बना है।
1: तो बच्चों, एक छोटी सी चीज, या मान लो हम सीख ही दे
0: सीख
1: रहे हैं
0: रहे
1: आपको कि आपको जैसे चित्र बनाना सीखना है, ठीक है, पहला चित्र अच्छा नहीं बना। अब आपके पास दो रास्ते हैं, पहला मुझसे चित्र नहीं बनता छोड़ देते हैं, और दूसरा आज अच्छा नहीं बना तो क्या हुआ, हम फिर कोशिश करेंगे। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो पहला रास्ता आपने चूज किया वो आपको वहीं रोक देगा, और जो दूसरा रास्ता हमने बताया वो आपको सीखने का अवसर देगा। इसीलिए असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे अपनी सीख बनाइए। तो आज एक छोटा सा संकल्प लें, जब कोई काम कठिन लगेगा तो हम तुरंत हार नहीं मानेंगे, हम कहेंगे हम कोशिश करेंगे, हम अभ्यास करेंगे, हम अपनी गलती से सीखेंगे, हम दोबारा प्रयास करेंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि हम नहीं कर सकते को बदल कर हम कोशिश करेंगे कहना सीखेंगे।
0: तो भाई दीदी, इसके लिए कुछ टिप्स भी है कुछ,
1: तो
0: कि
1: बताओ।
0: जैसे कि मैं नहीं कर सकता को बदलना है। जब भी मन में आए मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत कहो मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। छोटा सा अभी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अपनी मिस्टेक से मत भागिए, गलती होने पर खुद को बोलना मत बंद करिए, मैं कितना स्टूपिड हूँ, इसके बजाय मेरी गलती कहाँ हुई और मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। मिस्टेक आपकी आइडेंटिटी

0: नहीं है, मिस्टेक आपकी लर्निंग का हिस्सा है बच्चों, इसलिए आप अपनी कोशिश को जो है लगातार बनाते रहिए। अगर आपको 90 मार्क्स चाहिए और अभी 60 आए हैं, तो सिर्फ 90 के बारे में ही सोच करके स्ट्रेस मत लीजिए, यानी आप क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल सही कह रही रचना। तो बच्चों याद रखिए कि कोशिश छोटी हो सकती है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। एक कदम आज, एक कदम कल, और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं।
0: तो बच्चों आज की मुलाकात से बस यही बात अपने साथ लेकर आए थे, और मुश्किल देखकर रुकना नहीं है, असफल होकर झुकना नहीं है, और डर कर कहीं नहीं कहना नहीं है हम नहीं कर सकते, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से कहना है हम कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश और विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और इसी सकारात्मक सोच और नए उत्साह के साथ बाल संघ में इस अंक में बारी है अब आपका मूड चेंज करने की और प्यारे से गीत की।

0: बच्चों
1: गीत
0: आपने
1: कैसा लगा?
0: भाई, उम्मीद है आपके मन में भी एक नई ऊर्जा आई होगी इस गीत को सुनकर। और रचना भाई, हम एक जानकारी और बच्चों को देंगे कि कल है हिंदी दिवस, यानी 14 सितंबर, है ना।
1: तो भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें इसको ध्यान में रख करके बच्चों हिचक नहीं करनी चाहिए। बच्चे आजकल मैंने देखा है कि क्लास में बच्चे हिंदी का काम पूरा नहीं करते हैं दीदी, और बच्चे काम करना नहीं चाहते हैं। इंग्लिश का काम कर लेंगे, मैथ्स का कर लेंगे, साइंस का कर लेंगे, मगर हिंदी की कॉपी में तो बच्चे हमसे, खास मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम आप हिंदी ही क्यों पढ़ाती हैं। तो हमने कहा क्यों तुम्हें हिंदी नहीं अच्छी लगती? नहीं, मुझे हिंदी नहीं अच्छी लगती। भाई क्यों नहीं अच्छी लगती? हमारा भारत देश हिंदुस्तान देश है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो बच्चों इससे भागना नहीं चाहिए। भाई सब भाषाएं अपनी अपनी जगह मानना जो है मान्यता रखती हैं, लेकिन हिंदी हमारे सार्वजनिक भाषा, यानी हम हर जगह हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी को शुद्ध रूप में प्रयोग करना चाहिए, अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। और आप इंग्लिश भी सीखें, बोलें और भी भाषाएं सीखें, लेकिन हिंदी ज़रूरी है, हिंदी में काम करें। सारे कार्यालय में भी हिंदी का काम होता है, हर जगह हिंदी का काम
0: देखो
1: होता है,
0: भाषाएं।
1: और आपको हिचक नहीं होनी चाहिए मन में। बहुत लोग हिंदी के लिए भागते हैं ना, हिचक करते हैं अपने मन में कि हम इसको बोलेंगे तो इसके आगे शर्मिंदा होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: भाई देखो, हम भारत में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और गर्व से आप इसको कहिए कि हम
1: अपनाइए।
0: कि हमारी भाषा हिंदी है और हमें इसको आगे
1: और
0: बढ़ाना
1: हम
0: भी
1: हाँ
0: चाहिए।
1: हिंदुस्तानी हैं। और शैल, अब देखो बच्चों के लिए हमारे पास रोचक जानकारी है, और जिसे बता रहे हैं हमारे विनय भैया और गुंजन दीदी, तो क्यों ना हम पहले ये सुन लें।
0: बिल्कुल।
2: बच्चों, ये दुनिया बहुत ही अनोखी है और दुनिया अनेक रोचक चीजों से भरी पड़ी है।
3: अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय घटनाएं, समुद्र की अथाह गहराइयों की रहस्य, और जंगलों व रेगिस्तान की अनोखी दुनिया,
2: पशु पक्षियों, कीट पतंगों की विचित्र आदतें और उनका स्वभाव, यानी सभी कुछ अनोखा, अद्भुत और रोचक।
3: और इसी तरह की कुछ अनोखी जानकारियां लेकर हम आए हैं। मैं हूँ गुंजन दीदी।
2: और मैं हूँ विनय भैया। बच्चों, तुम सबको तो हनी यानी कि शहद पसंद ही होगा, और होगा भी क्यों नहीं, इतना मीठा जो होता है।
3: वाकई मीठे मीठे बच्चों के लिए तो मीठी चीज ही अच्छी लगती है, साथ ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है ना भैया?
2: बिल्कुल,
3: इसमें इतने सारे पोषक तत्व जो होते हैं भाई, और इस शहद को बनाता कौन है?
2: ये छोटी सी हनी बी यानी कि मधुमक्खी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती है, ये शहद वो फूलों के पराग से बनाती है, तो खुद मधुमक्खी का वो भोजन यानी कि पराग उसके लिए कितना पोषक होता होगा।
3: वाकई जब हमारे लिए इतना पोषक तत्वों से भरपूर है, तो भाई मधुमक्खी के लिए तो और भी ज्यादा होगा, है ना?
2: और एक जिज्ञासा ये भी मन में हो रही होगी,
3: क्या
2: कि मधुमक्खियाँ शहद बनाती कैसे हैं?
3: अरे हाँ, ये तो सवाल उठ खड़ा हुआ भाई। तो बच्चों, होता क्या है, मधुमक्खियाँ फूलों पर जाती हैं, आपने देखा भी होगा, फिर क्या करती हैं ये सोचा है? जाती हैं और उनसे मकरंद यानी कि नेक्टर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो इकट्ठा करती हैं। वो मकरंद को कहाँ तक लाती हैं? अपने छत्ते तक। वहाँ उसे अच्छे तरीके से संसाधित करती हैं, है ना?

0: मात्रा कम होने के साथ जो वो नेक्टर लेके आती है ना, वो क्या हो जाता है बच्चों? गाढ़ा हो जाता है और फिर वही शहद बन जाता है।
1: आमतौर पर बच्चों ये माना जाता है कि फूल मधुमक्खियों के लिए सबसे अच्छे भोजन का स्रोत हैं। लेकिन एक शोध से पता चला है कि हर फूल का पराग यानी कि पोलन मधुमक्खियों की सभी पोषक संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। कुछ फूलों के पराग में पोषक तत्वों का सही संतुलन नहीं होता है।
0: यानी कि शोध में पाया गया है कि मधुमक्खियां ये पहचान सकती हैं कि उनके भोजन में जरूरी अमीनो एसिड, प्रोटीन के जो छोटे छोटे घटक होते हैं, उनका संतुलन ठीक है या नहीं है।
1: अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो मधुमक्खियां बड़ी कुशलता से उसकी मात्रा कम कर सकती हैं। वो अलग अलग फूलों से पराग इकट्ठा कर छत्ते में जमा कर बी ब्रेड बनाती हैं।
0: बी ब्रेड में अलग अलग पराग स्रोत को मिलाने के कारण पोषक तत्वों का संतुलन बेहतर हो जाता है।
1: मधुमक्खियों को ऊर्जा मुख्य रूप से फूलों के रस यानी नेक्टर से मिलती है, जबकि पराग उन्हें प्रोटीन देता है। ये प्रोटीन उनके शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है।
0: और इसीलिए विज्ञानियों का कहना है कि बगीचों और खेतों में मधुमक्खियों के लिए कई प्रकार के फूल लगाने चाहिए जो पूरे मौसम में अलग अलग समय पर खिलते रहें।
1: और बच्चों अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं की। ये महीना यानी कि सितंबर का महीना खगोलीय घटनाओं से भरा है। 23 सितंबर शरद विषुव है, अर्थात दिन और रात इस दिन बराबर होंगे। यही वजह है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि करीब 12-12 घंटे होगी।
0: और भाई ऐसी ही स्थिति 21 मार्च को भी बनती है। 26 सितंबर को पूर्णिमा होगी। इस पूरे चंद्रमा को पश्चिमी देशों के खगोलविद क्या कहते हैं? हार्वेस्ट मून।
1: क्योंकि शरद ऋतु की शुरुआत यानी कि शरद विषुव के सबसे करीब पड़ने वाली पूर्णिमा होती है, इसलिए इसे पारंपरिक रूप से कार्न मून भी कहते हैं।
0: और अब बात सेहत के रियल हीरो की। हाँ भाई, तुम सोच रहे होगे कि सेहत का रियल हीरो कौन है? मैं बताती हूँ, वो है नारियल।
1: बच्चों नारियल इतना उपयोगी होता है कि भारतीय परंपरा में इसे श्रीफल और फिलीपींस में इसके पेड़ को जीवन का पेड़ कहा जाता है।
0: नारियल और इससे जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली नाविकों ने इस फल को पहली बार देखा तो इसके नीचे की ओर बनी तीन काली आँखें और भूरे छिलके उन्हें किसी भूत या डरावने चेहरे जैसे लगे थे। आपको तो डर नहीं लगता? भाई अब डरना नहीं और आगे सुनो। पुर्तगाली भाषा में भूत को कोको कहा जाता है और वहीं से इसका नाम पड़ा कोकोनट।
1: नारियल के पानी में भरपूर पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ताजे हरे नारियल में लगभग 94% हिस्सा शुद्ध पानी होता है। नारियल का पीएच स्तर हमारे खून के काफी करीब होता है।
0: और नारियल का पानी मलाई, खोल, छिलका और पत्ता यानी 100% हिस्सा किसी न किसी काम में यूज होता है।
1: नारियल का पेड़ 60 से 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है और अपनी पूरी जिंदगी फल देता है। ये 35 मीटर यानी कि 10 मंजिला इमारत के बराबर तक बढ़ सकता है।
0: अब हम लेके आए हैं लंबी लंबी सूंड। किसकी होती है ये सूंड भैया?
1: हाथी की। हाथी की सूंड उसकी नाक और ऊपरी होंठ का विकसित रूप है। ये शक्तिशाली तो होती ही है, साथ ही संवेदनशील भी होती है। हाथी इससे पानी पीता है, भोजन कर

0: भोजन उठाता है, चीजों को छूकर पहचानता है, अपनी सूंड से आवाज और संकेत भी करता है और साथ ही शरीर पर पानी या मिट्टी भी डालता है।
1: बिल्कुल, और कभी कभी तो हमने देखा है भैया, वो महावत को भी उठा के अपनी पीठ पे बैठा लेता है ना? इसलिए हाथी की सूंड उसके लिए बहुत काम आने वाला अंग है।
0: और बच्चों, अब हम बात करेंगे उल्लू की, और उसकी खास बात होती है कि हम सब जैसे दिन में यानी कि रोशनी में देख पाते हैं, लेकिन उल्लू रात के अंधेरे में भी देख लेता है। उल्लू की आंखें कम रोशनी में देखने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित होती हैं। उसकी आंखों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उपलब्ध थोड़ी सी रोशनी का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है।
1: अरे भैया, सिर्फ आंखें ही नहीं, उल्लू की तो सुनने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत तेज होती है। उसके कानों की स्थिति और चेहरे की बनावट आवाजों को पहचानने में मदद करती है, तभी तो वो अंधेरी रात में अपने आसपास थोड़ी सी भी हलचल का पता लगा लेता है।
0: बच्चों, आजकल आप देख रहे हो कि कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, और बारिश के साथ साथ तो कभी बिजली भी चमक रही है, तो मन में एक जिज्ञासा होती है कि भाई ये बारिश की जो बूंदें हैं वो कहाँ से गिरती हैं और कैसे गिरती हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं वो आती कैसे है, इतना सारा पानी आखिर आता कहाँ से है, इस जादुई सफर की शुरुआत कहाँ से होती है?
1: बारिश का पानी आसमान से नया बन के नहीं आता, बल्कि ये पानी धरती, नदियों, तालाबों और समुद्र से भाप बनकर ऊपर जाता है, और इसे कहते क्या है? जल चक्र।
0: बच्चों, होता क्या है कि जब सूरज तपता है तो उसकी गर्मी से समुद्र, नदियों, तालाबों और मिट्टी का पानी गर्म होकर जल वाष्प यानी भाप बनता है।
1: ये हल्की भाप ऊपर आसमान में चली जाती है, ऊपर जाकर हवा ठंडी होती है तो भाप छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। जब बादलों में ये इकट्ठी हुई बूंदें भारी होने लगती है ना, तो वो नीचे गिर जाती हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं? बारिश। बारिश का पानी असल में रंगहीन होता है। रंगहीन आप समझ रहे हैं? जिसका कोई रंग नहीं, उसका अपना कोई भी कलर नहीं होता।
0: और कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में एक रंग बिरंगी सी अर्धगोलाकार आकृति दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। और बच्चों, जानते हो इंद्रधनुष भी बारिश की बूंदों के कारण दिखाई देता है, क्योंकि बूंदें सूर्य के प्रकाश को अलग अलग रंगों में बांट देती हैं और हमें सात रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो बच्चों, ये थी रोचक जानकारियां। इसी तरह अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाते रहिए और उन्हें शांत करने के लिए इच्छुक रहिए और उसका समाधान
1: खोजते रहिए। खोजना भी है और फिर सबको बताना भी है। हमारे दोस्त लोग भी, अगर हम उनसे भी ये शेयर करेंगे तो कहते हैं ना, आप जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है, तो सबसे शेयर भी करिए, है ना?
2: तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे रोचक जानकारी, और इस कार्यक्रम में आपने ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। तो वाचन स्वर था विनय श्रीवास्तव और गुंजन दीदी का।
3: और बच्चों, अब बारी है आपके लिए एक प्यारे से गीत की।
2: तो चलो मिलकर सुनते हैं गीत।

0: मारे मामा रे शैली, गाना तुम्हें कैसा
1: भाई
0: लगा?
1: मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने बचपन में ये गाना बहुत सुनती थी, और जब भी कभी मैं इस गीत को रेडियो में सुनती हूँ ना, तो मुझे अपना बचपन पूरी तरह से
0: अब
1: याद आता
0: तुम
1: है।
0: मैं
1: और मैं
0: अभी
1: बैठे
0: मैं
1: हूँ,
0: अभी
1: उछल
0: मैं
1: भी रही
0: बचपन
1: थी।
0: चल में चली गई थी,
1: हाँ वही तो मैंने
0: क्योंकि
1: कहा ना कि
0: मुझे
1: अभी मैं
0: बहुत,
1: उछल रही
0: और
1: थी।
0: मैं ये छोटे में जो है रेडियो में ही ये गाना सुनती थी जो आज रेडियो में बोल रही हूँ, और मेरे पापा को बहुत शौक था रेडियो सुनने का, तो मैं रेडियो में एक गाना जरूर सुनती थी उनके संग बैठ करके, तो मैं पूरी पूरी उसी में खो ही गई थी कि मैं ये गाना तब सुनती थी और आज मैं बच्चों को ये गाना सुना रही हूँ। तो देखो ये तो हो गई गाने की बात शैल, और अब हम आते हैं बहुत ज़रूरी बात पे जो कि बच्चों को हम बताते हैं शब्द ज्ञान। तो हमारा हिंदी का शब्द है प्रत्युत्पन्नमति, है ना? प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है समय और परिस्थिति के अनुसार तुरंत सही निर्णय लेने की बुद्धि, यानी हाजिर जवाबी और सूझबूझ। यानी सरल भाषा में कहे बच्चों कि मुश्किल या अचानक आई परिस्थिति में बिना घबराए तुरंत सही उपाय सोच लेना। जैसे कि आपको वाक्य बता रहे हैं, राहुल ने बिना घबराए परिस्थिति अनुसार तुरंत सही कक्षा में उत्तर खोज लिया। यानी कक्षा में टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा और टीचर चैप्टर पढ़ाना ही शुरू किया था, और बच्चों ने एकदम सही, राहुल ने हाजिर जवाब क्वेश्चन का

0: आंसर दे दिया। चोर को देखकर मोहन ने अपनी प्रत्युत्पन्नमति से दरवाजा बंद कर दिया, यानी तुरंत अचानक जो है उसने जो है अपने
1: प्रेजेंस ऑफ माइंड का
0: इस्तेमाल किया। अगर किसी बच्चे से अचानक मंच पे पूछा जाए और वो घबराने के बजाय तुरंत सोचकर सही जवाब दे देता है तो हम इसे यही कहेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी प्रत्युत्पन्नमति,
1: यानी क्विक वेटनेस। और देखो दूसरा शब्द है अंग्रेजी का ब्रिक बैट, इसका अर्थ होता है कि ईंट या पत्थर का टुकड़ा। जैसे अब बच्चों आपको हम ऐसे समझाते हैं, द न्यू मूवी रिसीव अ मिक्स ऑफ ब्रिक बैट एंड प्रेज फ्रॉम फिल्म क्रिटिक्स, है ना। बच्चों जैसे कोई काम करता है या कोई कर रहा है तो उसकी कभी कभी कोई आलोचना भी करता है और निंदा भी करता है, है ना?
0: जैसे मान लो हमने कोई चीज बनाई, आपने कोई चित्र बनाया कक्षा में, तो जैसे किसी को बहुत अच्छा लगा और किसी को कम अच्छा लगा तो उसने उसकी आलोचना भी की और प्रशंसा भी की, यानी दोनों ही रूप में ये बच्चों इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जो है
1: इस शब्द को।
0: हाँ, इस शब्द
1: यानी ब्रिक बैट्स को,
0: ब्रिक बैट्स को। और जैसे रोड़ा, तो भाई हम रास्ते में चल रहे थे और छोटे छोटे पत्थर के रोड़े पड़े थे, यानी हम कहीं पहाड़ पे घूमने गए थे तो जो है पत्थर के रोड़े गिरने लगे, तो ये ब्रिक बैट्स,
1: ब्रिक बैट्स,
0: है ना दीदी। तो ये हमारा हो गया आज का शब्द ज्ञान। और अब शब्द ज्ञान के बाद फिर से हम लोग क्यों ना एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल। अभी तो गाना हम बाद में भी सुन सकते हैं। हाँ। लेकिन देखो अभी हम बात करना चाह रहे थे, कल 14 सितंबर है।
0: हाँ, तो थोड़ा सा दिवस है। हाँ, तो क्यों ना बच्चों को जानकारी दे दें।
1: तो हम थोड़ा सा बच्चों से हिंदी दिवस के बारे में बात करना चाह रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो सबसे पहले हमारे बच्चों को रचना ये बताओ कि इसका इतिहास और महत्व इतना ज्यादा क्या है।
0: भाई जब ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था बच्चों हिंदी दिवस का, तो वो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को बच्चों मनाया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया था। और इसको मनाने का उद्देश्य, जैसा कि पहले भी बताया था, कि हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलाना है, इसे बढ़ावा देना है। क्योंकि हमने बताया ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में ही काम करना पसंद करते हैं, अन्य भाषाओं में, जैसे आजकल बहुत ही अंग्रेजी के नए नए शॉर्ट फॉर्म निकाल लिए हैं कि हमको बहुत लंबे रूप में नहीं बात करना।

0: शैल, गीत तो बहुत ही सुंदर सुनवाया
1: ओहो
0: तुमने, और
1: भाई,
0: इसमें
1: मैं तो
0: भी
1: सुनती रह
0: एक
1: गई, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बोलना भी है, और मैं एकदम आंख बंद किए बैठी रह गई.
0: मैं देख रही थी तभी तो मैंने बोलना शुरू कर दिया. और शैल, अब इसमें एक शब्द था बारिश, तो देखो बारिश तो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, और
1: लेकिन
0: उसमें
1: देखो, 2 दिन से धूप भी तो हो रही है.
0: धूप तो हो रही है. धूप और बारिश की जो ये आंख मिचौली हो रही है ना,
1: हाँ,
0: उससे क्या हो रहा है पता है? हर कोई व्यक्ति जो है
1: बीमार
0: बीमार
1: पड़
0: हो रहा
1: रहा है. ये
0: है.
1: बात सही कह रही है.
0: मतलब हर घर में कोई ना कोई इस समय बीमार है. तो भाई बच्चों को तो खास करके जो है बताना. देखो तुम्हें खांसी भी आ गई, और ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, इसके लिए क्या कहा जाए. और हमारा भी गला पकड़ा है, कभी कभी पकड़ने लगता है. तो बच्चों आपको यही कहेंगे कि जब आप दौड़ भाग करके खेल कर आते हैं ना, तो आप पानी पीने की कोशिश करते हैं. और क्लास में भी बच्चे कहेंगे मैम ठंडा पानी भर लाएं. बॉटल में पानी होगा तब भी वो फेंकेंगे,
1: और
0: और
1: ठंडा पानी भर लेंगे,
0: ठंडा
1: बिल्कुल.
0: पानी लाएं, ठंडा पानी लाएं, और पीने की कोशिश करते हैं.

0: जाते हैं, और क्लास में भी बच्चे कहेंगे मैम ठंडा पानी भर लाए, बॉटल में पानी होगा तब भी वो फेंकेंगे
1: और ठंडा पानी भर लेंगे,
0: ठंडा पानी लाए, ठंडा पानी लाए और पीने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा ठंडा पानी तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सबको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो कड़वी कड़वी दवाई जो खानी पड़ती है
1: वो नहीं अच्छा लगता,
0: वो नहीं अच्छा लगता है। तो भाई अपनी सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई मन लगा के करिए, क्योंकि देखिए अब सभी के जो है टेस्ट शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों में, मतलब और पढ़ाई ज़ोरों से शुरू हो चुकी है और त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं, तो त्यौहारों का भी आनंद लीजिए। अभी कल आप हिंदी दिवस मनाएंगे ही मनाएंगे स्कूल में, जिनके स्कूल खुले होंगे, और कल और हम लोगों का जो दीदी लोगों का विशेष त्यौहार भी है, तो उसमें भी आपकी मम्मी को मत परेशान करिएगा कि जो है ज़्यादा, क्योंकि वो भूखी प्यासी रहती हैं, तो जो ज़्यादा बोलवाइएगा मत, चिल्लवाइएगा मत। वैसे तो आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब जानते हैं, और बच्चों अपना एक टाइम टेबल सेट करिए, है ना, कि हमको किस टाइम स्कूल जाना है, किस टाइम पढ़ाई करनी है, किस टाइम हमको जो है खेलने, अगर आप कुछ सीखने जाते हैं तो उस टाइम आप सीखने जाइए। और बच्चों लेकिन स्कूल से आके थोड़ा टाइम आराम ज़रूर करिए, क्यों, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी तो दूसरे कामों में आपका
1: मन नहीं लगेगा,
0: और फिर आप जो रात को स्टडी करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। और दीदी देखिए हमको उधर से दीदी इशारा कर रही है कि अब चलने का टाइम हो गया है, तो बच्चों से कहते हैं टाटा बाय बाय और जय हिंद।

0: अभी बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल संघ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन

0: मिलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
1: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया
0: जी।
1: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruption have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Addressing the open session of BRICS Summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi also emphasized on timely identification of challenges, preparation for them and taking immediate action. He said that a consensus has been reached on a BRICS integrated early warning system for the prevention of and response to infectious diseases. He added that early warning data integration guidelines have been formulated for disaster management.
3: Aaj ke interconnected world mein koi bhi sankat ek kshetra tak simit nahi rehta. Isliye humne BRICS samuh mein resilience badhane par vishesh bal diya hai. चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
2: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
3: Technology aur critical minerals ka weaponization hamari saajha pragati mein badha ban sakta hai. Isliye humne technology ke adoption mein inclusivity par bal diya hai.
2: Mr. Modi said they have set up a BRICS Digital Center of Excellence for smart grids and energy storage, which will help make clean energy systems more reliable, efficient and accessible. Prime Minister said

हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज शाम 7:30 से आपको सुनवाएंगे भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनाएंगे पंडित रविशंकर उपाध्याय का पखावज वादन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12:30 पर। फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचाएंगे हेलो फरमाइश के साथ 1:15 पर। 2:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा। आज के कलाकार होंगे सूर्य प्रकाश पटेल और साथी प्रीति मिश्रा और नन्हे लाल बिंद और साथी।

ग्रामीण बच्चों के कार्यक्रम बाल गोपाल से शुरू होगी हमारी सायंकालीन सभा 5 बजे। बच्चे सुनेंगे उमेश चंद्र की वार्ता कहानी मानसून की।

युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी होगा 5:15 पर। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अवधेश चंद्र यादव से बातचीत डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी, अनूप ओझा से बातचीत कृषक साक्षरता और लोकगीत। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पखावज वादन। कलाकार हैं पंडित रविशंकर उपाध्याय। तो ये सुनते हैं पखावज पर तीन ताल, कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय।

पंडित वासुदेव उपाध्याय का चक्रधार। चक्रधार।

अभी आप सुन रहे थे तीन ताल में पखावज वादन। कलाकार थे पंडित रविशंकर उपाध्याय। हारमोनियम पर संगीत कर रहे थे शमशाद अहमद खान। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

तो आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं शालिनी दुबे। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दुनिया बदल रही है, नई शक्तियां उभर रही हैं और बदलती हुई इस वैश्विक व्यवस्था में संवाद, सहयोग और साझेदारी का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसी भावना को साकार करता है ब्रिक्स, एक ऐसा मंच जहां अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों वाले देश आपसी सहयोग, विकास और साझेदारी की नई संभावनाओं पर साथ आते हैं। कहा जाता है कि भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन संगीत की कोई सीमा नहीं होती। सुर और ताल दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आपको बता दें कि ब्रिक्स भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इसके विस्तारित स्वरूप में शामिल अन्य सदस्य देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये सभी देश मिलकर आपस में वैश्विक सहयोग की एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। और जब बात भारत की हो तो हमारे पास दुनिया को जोड़ने के लिए संगीत से बेहतर माध्यम भला और क्या हो सकता है। तो सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद का भी एक माध्यम बन रहा है। भारत की संस्कृति तो सदियों से ही यह संदेश देती आई है कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। तो आइए एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं जो हमें ये बताता है कि भले ही हमारे रास्ते अलग हों लेकिन मंजिल अगर शांति और विकास की हो तो साथ चलना ही सबसे सुंदर विकल्प है।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है विश्व के उभरते देशों के उस महत्वपूर्ण समूह को जिसने वैश्विक मंच पर सहयोग, विकास और बहुपक्षीय साझेदारी की एक नई तस्वीर प्रस्तुत की है, ब्रिक्स। और आप ये भी जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में वर्तमान में ब्रिक्स देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है और आज उसका दूसरा वह आखिरी दिन है। तो आइए संगीत परंपरा के स्वर में भारत की विविधता और हर ताल में उसकी जीवंतता को सुनते हैं इस गीत में।

श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना के 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। भारत ने अपनी अध्यक्षता में एक व्यापक दृष्टिकोण रखा है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इसका मतलब है कि विकास का केंद्र केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आम इंसान भी होना चाहिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस एक और खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने ब्रिक्स को केवल एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में नहीं बल्कि विविध संस्कृतियों और साझा आकांक्षाओं के संगम के रूप में महसूस किया। ब्राजील की जीवंतता, रूस की सांस्कृतिक गहराई, भारत की विविधता, चीन की प्राचीन सभ्यता और दक्षिण अफ्रीका की रंगीन सांस्कृतिक विरासत, इन सभी में एक बात समान है, विविधता में एकता और सहयोग की शक्ति। इसी संदेश के साथ अब अपनी रेडियो सखी शालिनी दुबे को दीजिए अनुमति। उम्मीद है कि आज के इस विशेष कार्यक्रम के सुरों ने आपको ब्रिक्स देशों की विविधता और मित्रता से परिचित कराने के साथ साथ सहयोग और सद्भावना का एक सुंदर संदेश भी दिया होगा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पांस के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
0: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराही इजलास में ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। नई दिल्ली एलामिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अपने अज्म का अहादा भी किया गया। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में मुजरिमाना और बिलाजवाज है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स शराकतदार ममालिक के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। इन रहनुमाओं में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम, वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म ली मन हंग, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कजाकिस्तान, फिलिपाइन, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और बरूंडी के सुदूर के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। गौरतलब है कि ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान की सदारत में मुनक़िद हो रही है और इस साल चोटी कॉन्फ्रेंस का मौज़ू लचक, इख्तिरा, तावुन और पायदार तरक्की की तामीर है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के छठे योम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर RML इंस्टीट्यूट को सेहत की खिदमात की तौसी से मुतालिक एक अहम तोहफा मिलेगा। वज़ीर आला यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूनिट का इफ्तिताह करेंगे। ये यूनिट मजीद मरीजों को गुर्दे के ट्रांसप्लांट की सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब में वज़ीर आला 194 टेक्निकल एहलकारों को तकरीरी नामा भी देंगे। इससे पहले वज़ीर आला ऊंचाहार में श्री शिव महापुराण कथा में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम काबिनी वजीर डॉक्टर मनोज कुमार पांडे कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करेंगे। पहले गुजरात के वज़ीर आला और फिर मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत के इस दौर में यादगार बनाने के लिए रियासती हुकूमत और बीजेपी तंजीम

0: टीम मुश्तरका तौर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रियासत गीर सेवा संकल्प अभियान का आगाज करेगी। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहिम के एक्शन प्लान को शेयर करते हुए कहा कि 17 सितंबर को वजीर आजम की यौम पैदाइश को रियासत भर में सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन हर गांव की पंचायत, म्यूनिसिपल बॉडी और अहम एस्टेब्लिशमेंट में बरकतों के चिराग रोशन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने हम वतनों को एक नए हिंदुस्तान का ख्वाब दिया है।
1: प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 से लेकर के उनकी जो ये यात्रा है, ये नए भारत का दर्शन पूरे भारतवासियों को कराता है। एक नया विजन उन्होंने देश को दिया, चाहे वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो, चाहे वह आत्मनिर्भर और विकसित भारत का हो। इसके लिए व्यापक कार्य योजना उन्होंने बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देशवासियों को दिया, वेलफेयर की वे स्कीमें दी जो कभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
0: वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम के वडनगर से काशी तक के सफर को भी मुहिम से जोड़ा गया है। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और मंदिर की तामीर और अजीमुशान कुंभ मेले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बैक वक्त विरासत और तरक्की को फरोग दिया है। इस तकरीब में बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। रियासती हुकूमत काउंसिल स्कूलों के इंतजाम और तालीमी निजाम में बच्चों से मुतालिक मालूमात की निगरानी को मजीद मुनज्जम और जवाबदेह बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में 2026-27 के लिए MIS, UDIS प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के मोसर ऑपरेशन और इस्तेमाल के लिए 6,55,00,000 रुपये जारी किए गए हैं। बुनियादी तालीम के वजीर मुमलिकत संदीप सिंह ने कहा है कि हुकूमत स्कूल के निजाम को मजीद शफाफ और जवाबदेह और हर बच्चे की तालीम तरक्की की मोसर निगरानी को नहीं बना रही है। MIS और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम बच्चों से मुतालिक मालूमात के बेहतर इस्तेमाल के लिए नई तहरीक फराहम करेगा। और रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। दरियस्ता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों में तेजी है। फरुखाबाद और बलिया में दरियाए गंगा, शाहजहांपुर में दरियाए रामगंगा और अयोध्या, बाराबंकी और तुर्तीपार में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मौसम बोलूँ मैम, गांव का नाम विंध्याचल।
0: विंध्याचल से मौसम जी ने कॉल की, तो मौसम जी कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: हीरो फिल्म का मैम, इसका टाइटल सॉन्ग।
0: हीरो फिल्म का टाइटल सॉन्ग, जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की ये फिल्म थी
1: जी मैम।
0: तो भाई इसकी फरमाइश की है मौसम जी ने विंध्याचल से, तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाते हैं, लीजिए सुनिए।

0: गोश्त हंडिया, तहसीन हंडिया, थाना हंडिया, गांव मुगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार प्रेमचंद जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है रुस्तम
1: जी,
0: और गाने के बोल हैं, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी

0: बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा।
1: तो भाई प्रेमचंद जी की फरमाइश है रुस्तम फिल्म के इस गीत की, तो आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेमचंद जी, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: नमस्कार। हेलो अनुरोध।
0: नमस्कार जी।
1: धीरज रवारी बात कर रहा हूँ, गुजरात।
0: अरे गुजरात से धीरज रवारी जी हमारे साथ हैं। श्रोताओं देखिए कितनी दूर से इन्होंने कॉल की है। बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी आपका। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी? आज लावारिस फिल्म का गाना सुनना है। हम ट्रेन में या हवाई मार्ग से नहीं आ सकते, लेकिन टेलीफोन मार्ग से आकाशवाणी प्रयाग आते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो हमारा स्वागत आप करते हैं तो हमें अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए हमारे सारे जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, उनके विचारों का स्वागत करते हैं, और जो भी वो गीत सुनना चाहते हैं उसे हम जरूर सुनवाते हैं।
1: जी जी।
0: तो आपकी पसंद का लावारिस फिल्म का कोई भी गीत।
1: जी।
0: तो आपकी पसंद के लिए हम सुनवाने जा रहे हैं लावारिस फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: मैं चिरमिरी कुरमपुर जिला खमरिया छत्तीसगढ़ के इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है पपीता,
0: जी
1: बहुत अच्छा गाना
0: किशोर कुमार की आवाज में
1: है।
0: गाना है।
1: जी मैडम,
0: चलिए ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गाना पतिता फिल्म से लीजिए, सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हेलो अनुरोध कार्यक्रम
0: जी अपना नाम बताएं।
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्तरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइए राजू जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मोर पनघट पे नंद लाला गगरिया फोर गयो रे, पनघट पे।
0: जी जी जी, मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे।
1: जी जी
0: भैया, तो आपने मुगले आजम फिल्म के गीत की फरमाइश की है
1: जी।
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम नितेश आर्या है, प्रयाग से।
0: जी नितेश आर्या जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है 1 2 3।
0: अच्छा अच्छा 1 2 3, ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है
1: जी। इस फिल्म के सारे गाने, इस फिल्म का कोई भी गाना अपनी
0: अच्छा चलिए चलिए जरूर सुनवाएंगे। नितेश जी आपकी पसंद का ये गाना
1: नाम ले ले।
0: हाँ ले लीजिए।
1: राजेंद्र जी है प्रतापगढ़ से, जो सारी करते हैं, उनकी सारी बहुत अच्छी होती है।
0: अच्छा अच्छा, राजेंद्र जी अगर सुन रहे हैं ये कार्यक्रम तो देखिए नितेश जी को आपकी शायरी बहुत ही पसंद आती है। अच्छा और कौन है?
1: और प्रेमचंद जी है जो हल्दिया प्रयागराज से।
0: जी जी,
1: गाते हैं बहुत अच्छे, उनके बारे में लगता है।
0: अच्छा अच्छा, और
1: हमारे विकास जी है दादन प्रयागराज से, हमारे दोस्त।
0: जी जी जी,
1: और सारे श्रोताओं के गाने जैसे रहेगा।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: श्रोता सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज बोल रहा है मैम।
0: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जैसे करने
0: वैसी भरने।
1: जी मैम,
0: इसका कौन सा गाना है?
1: यही गाना।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम।
0: ठीक है, पवन जी की पसंद का ये गाना आइए सुनते हैं।

0: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलरहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर, भोजपुर, बाबा घुसननाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं मैडम
1: जी। जी प्रभाकर जी, कौन सा गीत सुनेंगे
0: मैडम जी? फिल्म का नाम है नाम
1: जी,
0: और गीत के बोल है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
1: चिट्ठी आई है। पंकज उदास की आवाज में ये गाना प्रभाकर जी की पसंद का, तो सुनवाएं आपको?
0: हाँ मैडम जी,
1: लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध, प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister says trust of Global South nations grown in BRICS warns against weaponization of technology and critical minerals. Prime Minister Modi holds bilateral meetings with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi on the sidelines of the BRICS summit. Indian Railways records 5.4% year-on-year growth in freight loading in August 2026. Gujarat's Ukai region records over 11 inches of rain. Red alert issued across several southern districts of the state. In Indonesia, around 140 passengers and crew missing after ferry carrying more than 240 people overturned today. And in women's cricket, India to face defending champions Sri Lanka in the finals of the T20 Asia Cup in Dubai today. Prime Minister Narendra Modi today noted that the trust of the Global South nations in BRICS has grown because the voices are heard and the experiences are respected. He opined that the strength of BRICS lies in diversity and cooperation. Addressing the open session of the BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping.
2: आज के interconnected world में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने BRICS समूह में resilience बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पांस के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की गई है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉशन दैट वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल्स कैन बिकम अ हर्डल फॉर प्रोग्रेस। ही सेड ब्रिक्स नेशंस हैव स्ट्रेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी इन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्दर स्टेटेड दैट एन इनिशिएटिव हैज बीन प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश द ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल टू कनेक्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस विद नॉलेज, फाइनेंस एंड न्यू मार्केट्स। Mr. Modi said they have set up a BRICS Digital Center of Excellence for smart grids and energy storage, which will help make clean energy systems more reliable, efficient and accessible. Prime Minister said that the benefits of solutions developed within BRICS should be made adaptable and accessible to meet the needs of the Global South. Mr. Modi further stated that the BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework will help make supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS incubator network will connect startups and incubators. Prime Minister said India has proposed

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता अस्सीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा

0: के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए, जिस तरह आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अलसीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

0: मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
2: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
3: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
4: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की यह पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग

0: और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक गीत। आज हम जिन कलाकारों को सुनेंगे उनके नाम हैं सूर्य प्रकाश पटेल और साथी, प्रीति मिश्रा, नन्नेलाल बिंद और साथी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों की आवाज में लचारी।

0: इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी आज की ये सभा यहीं विराम लेती है। अगली सभा में 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हमारा प्रसारण एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर जारी रहेगा। सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

0: स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। ये आकाशवाणी प्रयागराज है। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लड़कनों जय हिंद।
2: हम कहे घनश्याम भैया।
1: हाँ भाई, जो भैया
2: अपन चुन्नू मुन्नू। तो भैया यहाँ समय पढ़ाई लिखाई में खूब लगा हुई,
1: खूब खूब खूब
2: समय पढ़ाई लिखाई वाला है। न गर्मी ज्यादा न ठंडी ज्यादा,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ऐसा भैया लग बिक के जोन पढ़ाई लिखाई कई लिखित आवे वाले समय में अर्धवार्षिक परीक्षा भी उनकर हो। तो हम तो कही भैया पढ़ाई लिखाई तब अच्छा रहे जब सेहत भी अच्छा रहे उनकर।
1: ये हो देखा मन मस्तिष्क दुरुस्त रही न बैजू भैया, तब हो पढ़ाई लिखाई हुई। देखा कहल गल बना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करे।
2: हाँ, तो अपन चुन्नू मुन्नू काम में दुई टीवा भैया पढ़ाई लिखाई करें और भैया

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 107.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: गोपाल।
1: लड़कनों जय हिंद।
2: हम कहे घनश्याम भैया।
3: हाँ भाई, जो भैया
2: अपन चुन्नू मुन्नू तो भैया यहाँ समय पढ़ाई लिखाई में खूब लगा हुई,
0: खूब खूब खूब
2: समय पढ़ाई लिखाई वाला है, न गर्मी ज्यादा न ठंडी ज्यादा,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ऐसे में भैया लग बिक के जोन पढ़ाई लिखाई कई ली तो आवे वाले समय में अर्धवार्षिक परीक्षा भी उनकर हो तो हम तो कही भैया पढ़ाई लिखाई तभी अच्छा रहे जब सेहत भी अच्छा रहे उनकर।
0: ये हो देखा मन मस्तिष्क दुरुस्त रही न बैजू भैया, तब हो पढ़ाई लिखाई हुई। देखा कहल गल बा ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करे।
2: हाँ, तो अपन चुन्नू मुन्नू काम दुई ठीवा भैया पढ़ाई लिखाई करें और भैया खाली समय जोन खेले के समय हम खेले कूदे।
0: भैया अपन स्वास्थ्य अच्छा रखें, मजबूत रखें
2: और साफ सफाई भी रखें। तो भैया हो जब सब कुछ अच्छा रहे तब ही अच्छा लागे सब कुछ। हाँ, अभी न्यू हो तो भैया यहाँ समय तो पढ़ाई लिखाई अगर मेहनत आदत बन गई भैया तो आगे चल के वही काम दे था जब प्रतियोगिता में बैठा थे मेहनत ज्यादा वाला था।
0: बिल्कुल बैजू भैया हो देखा एक चीज और की जौन बात कैला है ना कि चुन्नू मुन्नू के भैया हो हर एक चीज का सही सही जून बखत होए के चाहिए।
2: ई बात है? सही कहे भैया। अब तक कही भैया पढ़ाई लिखाई की बात हो तो हिंदी की बात ना की है जाए तो भाई दिक्कत बा।
0: बिल्कुल
2: भाई अपन प्रदेश जोन बाटे है देश भी भाई हिंदी भाषी क्षेत्र बाटे है। दूसर बात एक काल 14 सितंबर है देखत।
0: हाँ,
2: 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनावा जाता भैया। अब हिंदी दिवस काहे मनावा जाता कि अपन जोन बाटे है कि हिंदी के प्रचार प्रसार बढ़े और ये जोन ब हिंदी भाषा के जोन राजभाषा के रूप में का कहथिन जोन भारत संघ अपन भारतीय संविधान सभा जवन रही है 14 सितंबर 1949 के देवनागरी लिपि में संघ के राजभाषा के रूप में सही स्वीकार
0: बिल्कुल स्वीकार कर गल। हाँ,
2: एक बात और घनश्याम भैया कि हिंदी खाली भाषा ना हो इसे एक दूसरे से भावना जुड़ी व साहित्य संस्कृत सब चीज कहीं ना कहीं समझे के आदान प्रदान के एक माध्यम भी बाटे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बैजू भैया हो तो देखा कि चुन्नू मुन्नू न काल भैया अपने स्कूली में देखा वाद विवाद प्रतियोगिता निबंध का प्रतियोगिता भाषण सांस्कृतिक कार्यक्रम का भैया देखा खूब जोर शोर से तैयारी करत हुआ।
2: तो हम तो कही भैया कि मैं करें अब कल देखा मैं हिंदी दिवस अच्छे से मनावे।
0: बिल्कुल
2: अब देखा है कि कहानी सुनवाई दिया जाए चुन्नू मुन्नू फिर आगे बत कही हुए।
0: हाँ, हाँ।
2: तो देखी कहानी है कहानी मानसून की उमेश चंद से तो चुन्नू मुन्नू एक सुनाई और समझाई।
0: बिल्कुल सुनवा दा।
4: बच्चों आज हम कहानी मानसून की बताएंगे। मानसून उन हवाओं को कहते हैं जो मौसमी तौर पर बहती हैं। मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में दो बार पूर्ण परिवर्तन होता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका तात्पर्य मौसम से होता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब सागर पर बहने वाली हवा के लिए किया जाता था जिसकी दिशा वर्ष के 6 मास तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक शेष 6 मास ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इसी आधार पर ग्लोब के उन सभी भागों की हवा को जिनकी दिशा में ऋतु के अनुसार पूर्ण विलोम स्थिति आ जाती है मानसून कहा गया। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। हिंद महासागर और अरब सागर से भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान की ओर बहने वाली यह हवाएं इन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा में सहायक होती हैं। दुनिया के अनेक क्षेत्रों जैसे उत्तर व दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया में भी ऐसी ही वर्षा होती है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन हायले ने 1686 ईस्वी में किया। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति एकमात्र पृथ्वी के असमान संघटन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण ही होती है। यदि पृथ्वी समांग होती केवल स्थल ही स्थल होता या जल ही जल तो मानसून का आविर्भाव कदापि नहीं होता। यदि सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो मानसून हवाएं स्थल तथा जल समीर का ही विस्तृत रूप होती हैं। गर्मियों में अधिक सूर्यताप के कारण स्थलीय भाग सागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाने के कारण न्यून दाब के क्षेत्र हो जाते हैं तथा सागरी भागों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत जाड़े में स्थल भाग उच्च दाब के केंद्र बन जाते हैं तथा सागरी भाग न्यून दाब के क्षेत्र, परिणाम स्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं।

वर्षा ऋतु का आगमन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के शुरू होने के साथ होता है। यह ऋतु जून में शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है। भारत की 80% वर्षा इन्हीं पवनों द्वारा होती है। वर्षा अकस्मात ही शुरू हो जाती है। मानसून के इस अकस्मात आरंभ को मानसून प्रस्फोटन कहते हैं। भारत के तटीय भागों में मानसून का प्रस्फोट जून के प्रथम सप्ताह या इसके भी पहले हो सकता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पौने जुलाई तक ही आ पाती हैं। वर्षा आरंभ होने के कारण मध्य जून से मध्य जुलाई तक दिन का तापमान 5 अंश से 8 अंश सेल्सियस तक गिर जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पौनों की दो शाखाएं हैं, अरब सागर की मानसून पौने, बंगाल की खाड़ी की मानसून पौने। अरब सागर की मानसून की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। जब भारत के तट पर पहुंचती है तो तीन शाखा में विभाजित होती है। पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद यह नीचे उतरती है, फलस्वरूप इसका तापमान बढ़ जाता है और इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। इससे दक्षिण पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है। यही कारण है कि इस ऋतु में मंगलौर में वर्षा 280 सेंटीमीटर होती है, जबकि बंगलौर में 50 सेंटीमीटर ही होती है। इसकी दूसरी शाखा नर्मदा तथा तापी की घाटियों से होकर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश करती है। तट के निकट कोई रुकावट न होने के कारण यह दूर तक चली जाती है और वर्षा करती है। नागपुर में इन पवनों द्वारा 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसकी तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली पर्वत के समानांतर जाती है। रास्ते में कोई रुकावट न आने के कारण ये पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं करती। आगे चलकर यह हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर पर्याप्त वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पौने दो शाखाओं में विभाजित होती हैं। इसकी पहली शाखा गंगा के डेल्टा प्रदेश को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप जैसी है, जिससे वायु को एकदम ऊँचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है। यहाँ पर स्थिति चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी के पश्चिम में 1616 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौसिनरम के स्थान पर लगभग 1221 वार्षिक वर्षा होती है, जो विश्व में सबसे अधिक है। इसकी दूसरी शाखा हिमालय पर्वत से टकराती है। यह हिमालय पर्वत की ऊंची श्रेणियों को पार करने में असमर्थ होती है तथा पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती है। ज्यों ज्यों यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, त्यों त्यों नमी कम होती जाती है और इसकी वर्षा करने की शक्ति कम होती जाती है। इसके द्वारा की गई वर्षा की मात्रा कोलकाता, पटना, इलाहाबाद तथा दिल्ली में क्रमशः 119 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 56 सेंटीमीटर है। भारत का पूर्वी तट विशेषतः तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता और शुष्क रह जाता है। इसका कारण यह है कि तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसून के समानांतर है और अरब सागर की धारा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर को लौटना शुरू कर देती है और 15 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से निवर्तित हो जाती है। 15 अक्टूबर तक यह दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़कर शेष समस्त भारतीय क्षेत्र से लौट जाती है। लौटती हुई पवने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। मानसून पवनों का आगमन तथा उनकी वापसी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न है। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून सबसे ज़्यादा बाद पहुंचती है तथा सबसे पहले वहां से वापस लौट जाती है। बाद में मानसून लगभग 1 जुलाई तक पहुंचती है और मध्य सितंबर में वहां से लौट जाती है। इस प्रकार वहां पर वर्षा में केवल 2.5 माह ही मानसून सक्रिय रहता है। इसके विपरीत कोरोमंडल तट पर मानसून जून के शुरू में पहुँच जाती है और मध्य दिसंबर में लौटती है। यहाँ पर मानसून वर्षा में लगभग 6 माह सक्रिय रहती है। ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशा का उल्टा होना तथा इसके साथ मौसम बदलना भारत के मानसून जलवायु की मुख्य विशेषता है। बारिश कैसे होती है? बारिश वाष्पीकरण के कारण होती है। आपने देखा होगा कि कूलर का पानी वाष्प बनकर खत्म हो जाता है। धूप हवा में रखे कपड़े सूख जाते हैं। पानी के वाष्प बनकर उड़ जाने और फिर बारिश के रूप में बरसने के बीच एक लंबी प्रक्रिया होती है। पानी के वाष्पीकरण के बाद यह भी जरूरी होता है कि नमी वाली यह हवा अपने उस गर्म वातावरण को छोड़कर ठंडे वातावरण की ओर बढ़े, जिससे जल वाष्प में सघनता पैदा हो सके। गर्मियों के मौसम में जब तापमान ज़्यादा होता है, तब समुद्र, नदियों, झीलों का पानी धूप में गर्म होकर धीरे धीरे वाष्प बनकर हवा में मिलने लगता है। इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। हल्की होने के कारण यह जल वाष्प हवा में ऊपर उठने लगती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है,

0: तापमान कम होने लगता है। ऊपर जाने पर ताप में आई इस कमी से वाष्पकण धीरे धीरे संघनित होने लगता है, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिससे पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदें बनने लगती हैं। ऐसा होने पर बादलों का निर्माण होने लगता है। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। हवा के साथ जब ये बादल अधिक तापमान वाले स्थान से कम तापमान वाले स्थानों की ओर जाने लगते हैं, तो वातावरण में पाए जाने वाले धूल कणों के कारण बादलों की ये नन्ही बूंदें एक दूसरे के और पास आकर और ज़्यादा संघनित होने लगती हैं। इस तरह वाष्पीकरणों की सघनता बढ़ने से बारिश की बूंदों का निर्माण होता है, और अपने बढ़ते वजन के कारण ये बूंदें जमीन पर गिरती हैं। आकाश से गिरती ये पानी की बूंदें हमें बारिश के रूप में दिखाई देती हैं। बारिश धरती का उत्सव है। घास, पत्तियों, फूलों, पंखुड़ियों, कीड़ों, पक्षियों, जंतुओं, मवेशियों और पशुओं के धड़कते हुए हृदय के लिए बारिश खुशियाँ लेकर आती है। मानसूनी बरसात होने से ही नदियों, झीलों, तालाबों आदि में ढेर सारा पानी भर जाता है। पहाड़ों के सोतों से भी नदियाँ निकलती हैं। अनेक छोटे बड़े सोतों से मिलकर एक बड़ी नदी निकलती है, जो पहाड़ी रास्तों पर उछल कूद मचाती हुई नीचे मैदानी की ओर अपनी उर्वरता का वरदान लिए चली जा रही है। यह नदी किसी अन्य नदी से जाकर मिलती है और वह किसी अन्य से विशालकाय नदी का इसी तरह जन्म होता है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद समुद्र में मिल जाती है। जो व्यक्ति पानी की तरह मृदुल और सहनशील होता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है और समुद्र तक पहुंच सकता है। पानी की तरह तरल होने का अर्थ विनम्र होना, किसी से व्यर्थ विवाद न करना, चुपचाप अपनी राह पर बढ़ते चले जाना। हमें बारिश की एक एक बूंद का संरक्षण करना चाहिए, तभी मानसून पर निर्भरता कम होगी। शहरी और ग्रामीण, अमीर गरीब, सभी को लाभ मिलेगा। किसान बेसब्री से मानसून की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें फसलों के लिए सही समय पर बारिश की ज़रूरत महसूस होती है। हमारे यहाँ बिना बारिश के अच्छी खेती संभव नहीं है। बारिश से धूल से भी राहत मिलती है। सिंचाई में अच्छा निवेश करने के बाद भी हमारी कृषि का अधिकांश हिस्सा मानसून पर आधारित है। किसानों को बुआई से लेकर फसल काटने तक वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में सिंचित भूमि का 60 से 80% भूजल से सींचा जाता है। हर वर्ष बारिश से ज़मीन का भीतरी जलस्तर दोबारा भर जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष जब मानसून केरल से कश्मीर, बंगाल या राजस्थान की ओर चलता है, तो उसके धीमा पड़ने, रुकने या नष्ट होने पर लोग परेशान हो जाते हैं। मानसून हमारे देश का वित्त मंत्री है और रहेगा। मेरा मानना है कि मानसून पर निर्भरता कम करने की कोशिश के बजाय हमें उसके साथ अपना जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश तेज करनी चाहिए। हम बारिश की एक बूंद का संरक्षण करें, वह चाहे कहीं भी गिरे। अगर हम ऐसा करने में सफल रहे तो हमें लाभ मिलेगा। हर एक सूखा ग्रामीण समुदाय की क्षमताओं को कमजोर करता है, देश को खोखला बनाता है। मानसून की विफलता और पानी की समस्या निपटने के लिए हमारे पास दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए। देश में बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के विकास के कारण पानी की मांग बढ़ रही है, वहीं हम उपलब्ध जल में कचरा मिलाकर प्रदूषित कर रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए जरूरी है कि बारिश के पानी की हर बूंद को सहेजा जाए, इसे टैंक, तालाब और यहाँ तक कि हर घर की छत पर सहेजा जाए। यह काम हर गाँव और हर शहर में किया जाए, तब हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर बूंद का सही उपयोग हो, इसके इस्तेमाल से ज़्यादा और अलग फसलें ली जाएं और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाई जाए, पेड़ पौधों द्वारा स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जाए।
1: हाँ भैया
2: घनश्याम,
1: आई
2: देखा हो कहानी रही मानसून की, उमेश चंद से की चुन्नू मुन्नू सुने, उनका ही पता चला कि मानसून कैसे आवत है, बारिश कैसे होत है, उत्तर अलग है, दक्षिण में अलग है, तो ये सब के जानकारी लेन। अब देखा चुन्नू मुन्नू से विदा ले के भी समय आ गया, वह तो विदा ले जाए। लड़की ना, जय हिंद।
3: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ.
1: अभी युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी.

0: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त दिव्या द्विवेदी। आज इस खूबसूरत शाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी सुबह चाय की चुस्कियों से, थोड़ी सी मुस्कुराहट से और कुछ अच्छे इरादों के साथ शुरू हुई होगी।
1: और मैं हूं अंजलि श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की शाम आपके लिए लेकर आई है ढेर सारी बातें, कुछ नए थॉट्स और एक ऐसा विषय जिस पर हम सबको थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्यों ना आज की लाइफस्टाइल की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी तो अब एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है ना?
0: बिल्कुल अंजलि, आज की ज़िंदगी में सुबह आंखें खुलते ही हम मोबाइल की स्क्रीन देखने लगते हैं, फिर मैसेजेस, नोटिफिकेशन, काम, पढ़ाई, ऑफिस, ट्रैफिक और ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां। कभी लगता है कि दिन छोटा पड़ गया है और काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऊपर से सोशल मीडिया पर हर किसी की ज़िंदगी एकदम परफेक्ट दिखाई देती है और अपनी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि वो तो कुछ है ही नहीं।
1: एग्जैक्टली।
0: हाँ, और लेकिन सच कहा जाए अंजलि, तो लाइफस्टाइल तो सबकी अपनी अपनी होती है और हर किसी की अपनी जर्नी बहुत खूबसूरत होती है।
1: हाँ।
0: आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है और यही आज की लाइफस्टाइल की सबसे खास बात है कि हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे साधन हैं जितने शायद पहले के लोगों के पास नहीं थे। आप घर बैठे कोई भी नई भाषा सीख सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं, अपनी पसंद का हुनर विकसित कर सकते हैं, कोई छोटा सा आइडिया सोशल मीडिया पर शेयर करके आप लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी युवा अपने शहर में बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से के कोई भी व्यक्ति से बात कर सकता है, उससे उसका काम सीख सकता है।
1: बिल्कुल, और यही तो मुझे लगता है दिव्या कि आज की जनरेशन की खासियत है। हम सिर्फ चीज़ों को इस्तेमाल करने वाली पीढ़ी नहीं है, हम चीज़ों को बदलने वाली पीढ़ी भी हैं। हमें सवाल पूछना आता है, अपनी बात रखना आता है, और अगर कोई पुरानी व्यवस्था हमें सही नहीं लगती तो उसके बारे में सोचने और उसे बेहतर बनाने की हिम्मत भी रखते हैं हम। आज के युवा पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को भी समय दे रहे हैं। जैसे कि कोई अगर म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है तो वो म्यूज़िक सीख रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सफलता का मतलब सिर्फ एक अच्छी नौकरी या बड़ी सैलरी नहीं रह गई है। बहुत से लोग अब ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो समाज के लिए भी यानी सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, लेकिन हर खूबसूरत चीज़ के साथ कुछ चुनौतियाँ भी तो आती हैं। हमारी लाइफस्टाइल जितनी तेज़ भाग रही है ना, उतना ही ज़रूरी हो गया है कि हम अपने मन को थोड़ा आराम भी दें। आज हम लगातार ऑनलाइन रहते हैं लेकिन कभी कभी अपने लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हमारे पास बातचीत के लिए ऐप्स हैं लेकिन बैठकर दिल की बात करने का समय एकदम कम हो गया है। कभी कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की नौकरी अच्छी लगती है, किसी की फिटनेस अच्छी लगती है, किसी का ट्रेवल लाइफ देखना हमें अच्छा लगता है और किसी का रिलेशनशिप, सब कुछ अलग अलग। हमें कभी कभी किसी और की ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर जिंदगी सच नहीं होती। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ छुपी होती हैं। उनकी अपनी परेशानियाँ हैं और उनकी अपनी जर्नी है और अपना, हर किसी का अपना समय होता है।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या। और शायद आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे ना छोड़ दें। करियर बनाना ज़रूरी है, अपने सपने पूरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन नींद, सेहत, परिवार, दोस्त और मानसिक सुकून भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे अच्छी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो यही होती है कि आप थोड़ी देर आराम करिए, रिलैक्स करिए, कुछ सुकून के पल चुराइए अपने लिए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए, किसी दोस्त से बात करिए या बस बालकनी में बैठकर आसमान देख लीजिए। हर समय कुछ

0: हासिल करना ज़रूरी नहीं है. यू हैव टू पॉज अ लिटिल. यू कांट रन एवरी टाइम. यू कांट रन इन दैट रैट रेस ऑलवेज. कुछ पल सिर्फ जीने के लिए भी होने चाहिए. और इसी से मुझे एक बात और याद आती है अंजलि, कि आज की पीढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. मैं अपने पर्सपेक्टिव से जब उन्हें देखती हूँ, वो बदलाव को स्वीकार करना जानते हैं. उनके अंदर ये क्षमता है. नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, नए करियर ऑप्शन एक्सेप्ट कर चुके हैं, नई सोच है उनके पास. आज के युवा उन्हें समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं. हमें अपनी भाषा, अपने त्यौहार, अपनी परंपराओं और घर घर के बड़े बुजुर्गों की सीख, ये सब हमारी पहचान है और इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए. आधुनिक होने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, उससे जुड़ाव भूल जाएं. और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आधुनिक होना ये ज़रूरी है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना ये बहुत खूबसूरत बात है.
1: बिल्कुल. तो दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में ना हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं चलती. हम जितना अपने लिए काम करते हैं, उतना ही थोड़ा सा समय दूसरों के लिए भी निकाल सकते हैं. किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दोस्त की बात सुनना, किसी को पढ़ाई में मदद कर देना, या अपने आसपास सफाई रखना, ये छोटे काम ज़रूर हैं, लेकिन इनका असर बड़ा हो सकता है. और शायद यही छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर एक बेहतर समाज बनाती हैं.
0: तो आज इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुद को एक पॉज दीजिए और एक छोटा सा सवाल पूछिए. क्या मैं सिर्फ अपने आज को बेहतर बनाना हूँ, या फिर अपने आने वाले कल के लिए भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ? क्योंकि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ दे रही है. लेकिन इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या बचा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस पर सोचना बिल्कुल जायज़ है.
1: तो दिव्या, इतनी सारी बातें हमने कर ली और हम अपने लिसनर्स को बोलते हैं कि हम उनके लिए इन्फोटेनमेंट का पिटारा लाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, व्हाट अबाउट एंटरटेनमेंट? तो

0: तो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम में। और
1: आज की
0: हमारे
1: हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों कि क्या हमारी पीढ़ी भविष्य बचा सकती है। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो अक्सर अपनी नौकरी, अपना घर, अपने सपने और अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या भविष्य सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी का नाम है? भविष्य का मतलब वो दुनिया भी है जिसमें हम और हमारे बाद आने वाले लोग सांस लेंगे, पानी पिएंगे, पढ़ाई करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। और अगर हम ध्यान दें तो आज हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जो आने वाले कल को प्रभावित कर सकती हैं। बढ़ता प्रदूषण, पानी की कमी, पेड़ों की कटाई, बदलता मौसम और प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए।
0: हमारे आज के फैसले ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर बनाते हैं। और जो तुमने अभी बोला ना अंजलि, वो बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करते हुए हमें सिर्फ परेशानियों के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। हमारी पीढ़ी के पास बहुत सारी ऐसी खूबियाँ भी हैं जिनसे हम मदद लेकर इस बदलाव को ला सकते हैं। आज हमारे पास तकनीकें हैं, जानकारी है और दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी बात पहुंचाने की क्षमता है। कोई युवा पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैला सकता है, कोई नई तकनीक के जरिए पानी या ऊर्जा बचा सकता है और उसके नए तरीके भी डेवलप कर सकता है, तो कोई अपने शहर की सफाई या पेड़ लगाने जैसी मुहिमों को शुरू कर सकता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और स्वच्छ साफ बना सकता है।
1: बिल्कुल, और यही हमारी पीढ़ी की ताकत है। हम बदलाव के बारे में सोचते हैं और उसे शुरू करने का साहस भी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल किस दिशा में करते हैं? क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर पर्यावरण बचाने की पोस्ट डालना काफ़ी नहीं है, उसके साथ अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। पानी की बर्बादी रोकना, बिजली बचाना, प्लास्टिक का कम यूज़ करना, कचरा इधर उधर ना फेंकना, ये छोटे कदम हैं लेकिन इनका असर बड़ा हो सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और भविष्य बचाने का मतलब सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं होता दोस्तों। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये सभी भविष्य का हिस्सा हैं। हमें एक ऐसा भविष्य चाहिए दोस्तों जिसमें सिर्फ कुछ लोग आगे बढ़ने का मौका ना मिले, उन सभी को मौका मिले जिनको उसकी ज़रूरत है। सभी को मतलब समान अवसर मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर मिले, हर युवा को अपने सपनों के लिए मेहनत करने का अवसर मिले, उस पर काम करने के लिए उसे रास्ते मिले, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले।
1: और इसकी

0: शुरुआत हम अपने आसपास से कर सकते हैं दोस्तों। किसी बच्चे को पढ़ाई में हेल्प कर दीजिए, किसी बुजुर्ग को नई तकनीक समझा दीजिए, और अपने घर में बेटियों और बेटों को बराबर अवसर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। ये सभी काम हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ वो नहीं सीखेगी जो हम उसे बताएंगे, वो ये भी देखेगी कि हम आज किस तरह जी रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि। और हमारी तो भारतीय संस्कृति ही है कि जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, हम ऐसी कामना करते हैं, तो हमारा आने वाला भविष्य, तो क्या हम उसमें कल्पना नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति समान अधिकार को पाए, हर व्यक्ति समान जीवन जिए, सभी को अवसर मिले और एक सुदृढ़ समाज, एक सुंदर समाज की स्थापना हम लोग करें, है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि वो भी कहा जाता है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, तो होल वर्ल्ड इज़ आर फैमिली। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, तो दिस शुड ऑल्सो इम्प्लाई इन दैट।
1: बिल्कुल। और आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों कि तकनीक का हम सही यूज़ करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शिक्षा, नई चिकित्सा तकनीक और विज्ञान के दूसरे क्षेत्र में हमारे भविष्य को बेहतर हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम तकनीक को समझें, उसे जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं और सही जगह उपयोग करें। हमें ये याद रखना होगा दोस्तों कि स्क्रीन पर बताया गया समय पूरी ज़िंदगी नहीं होता। मतलब हम आजकल जब भी देखते हैं कि हमारा जो एक यूथ, जो पॉपुलेशन है, वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, हम उसमें रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम उसमें अपना मिनट से कब घंटों तक पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता।
0: बिल्कुल
1: लेकिन अगर उसी सोशल मीडिया का हम यूज़ करें एक ऐसे पावरफुल हथियार के तौर पे, हम उसमें अपने अच्छे मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के साथ हम जुड़ें और एक अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए नई नई पहल शुरू करें, तो ये एक पावरफुल टूल टूल नहीं बन जाएगा?
0: बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अप टू अस दिव्या, कि हम उसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं कि नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। और कहा जाता है ना कि किसी चीज़ की भी अति अच्छी नहीं होती है, तो इफ़ यू आर यूजिंग दैट फॉर द पॉजिटिव फीडबैक और आप कुछ अच्छा करने चाह रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जैसा कि तुमने कहा। और अगर हम विकास की बात करते हैं, तो हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें तरक्की भी हो और प्रकृति का सम्मान भी। सड़कें बने, उद्योग बने, शहर आगे बढ़े, लेकिन पेड़ों, नदियों और हवा की कीमत पर नहीं। सरकार, संस्थाएं और आम नागरिक, सभी की अपनी भूमिका है। नीतियां बनाना ज़रूरी है, लेकिन उनका पालन करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी।
1: और मुझे लगता है अंजलि कि इस पूरे विषय की सबसे ज़रूरी बात यह है, उम्मीद। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को देखकर हमें ये लगता है कि एक आम इंसान आखिर क्या ही कर सकता है। जैसे कि जब हमें कचरा साफ करने के लिए कोई मुहिम चलानी होती है, तो हमारे घर में एक, हमारे आसपास में लोग एक आम बात कह देते हैं कि अरे मैं अकेला कितना ही साफ कर लूँगा। लेकिन एक बात कही जाती है, अकेला चलो रे, ऐसे एक बंगाली कविता भी है इस पर। तो जब एक व्यक्ति आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी को प्रेरित कर सकता है, तो क्या हम शुरुआत करके अपने भविष्य को बचाने के लिए इस पर काम नहीं कर सकते? हो सकता है हमारी इस पहल को देखकर, हमारे इस पहले उठाए गए कदम को देखकर हमारे पीछे लाखों लोग चल दें, हमारे साथ जुड़ जाएं और एक बेहतर समाज की जो हम संकल्पना कर रहे हैं उसके ओर काम कर सकें।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो हम लोगों के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वही जाके जो बड़ा गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे।
1: और दोस्तों, एक व्यक्ति पानी बचा सकता है, दूसरा पेड़ लगा सकता है, तीसरा बच्चे को पढ़ा सकता है, और चौथा आसपास के लोगों को जागरूक कर सकता है। मतलब एक एक करके अगर हम एक गोल, एक व्यक्ति, एक समाज पकड़े, तो हम कई दिशाओं में भी काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: ऐसे दोस्तों, आज से अगर हम नहीं शुरू करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि आज के दौर पे जिस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं, जिस तरीके से स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर व्यक्ति हमें परेशान दिख रहा है, साथ ही साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रदूषित होता जा रहा है, सोसाइटी एकदम स्ट्रेसफुल हो चुकी है। हम किसी से भी मिलते हैं तो बैठ के गप्पे लड़ाने जैसे काम, और साथ में बैठ के सुकून के दो पल बिताने जैसे माहौल वो नहीं बना पाते। हम जब भी मिलते हैं तो हम ये कहते हैं, अरे मेरी ज़िंदगी में तो ये ख़राब चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में तो इतना स्ट्रेस चल रहा है, अरे मेरे पास तो ये परेशानी है। मतलब मानसिक तनाव भी है, शारीरिक तनाव भी।

0: और हमारे आसपास जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, जो जिसका इतना तेज़ी से हनन होता जा रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। तो इसके लिए अगर हमने अभी से शुरुआत नहीं की तो हो सकता है आगे चल के बहुत देर हो सकती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब हम आसपास अपने देख रहे हैं तो कहीं हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हम अपने साथ ही अपनी लाइफ भी जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, कोई अपडेट देते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों का चालू होता है ना कि जो स्ट्रेस होता है हम लोगों का, वो बताना शुरू करते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट इन्वायरमेंट, कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, वेदर इट इज़ रिलेशन या हम एटमोसफियर या इन्वायरमेंट जिसकी भी बात करें, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू दैट। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो पावर है टू वर्क ऑन दैट, और आप ही उसके लिए स्टेपिंग स्टोन्स रख सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: और मुझे ऐसा लगता है दिव्या कि हमारी पीढ़ी के पास ऊर्जा भी है, ज्ञान भी है और बदलाव की इच्छा भी। हमें बस उस ऊर्जा को सही दिशा देनी है। तो दोस्तों, आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अपने भविष्य के लिए क्या कर रहा हूँ और क्या मैं अपने बाद आने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा छोड़कर जाना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ बहुत कुछ करें, बस एक अच्छी आदत चुनिए और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए।
0: क्योंकि भविष्य कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम अचानक पहुंचना चाहेंगे। भविष्य आज के हमारे फैसलों से बनता है। आज हम जो सीखते हैं, जो करते हैं, जो हम चाहते हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, वही आगे जाके हमारा भविष्य बनता है। तो इस पर काम अगर हम आज से शुरू करेंगे तभी वो बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। और वो कहते हैं ना कि एक दिन में चीज़ें नहीं बनती लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। तो वो एक दिन ज़रूर बनेगी, इसके लिए शुरुआत हमें एक दिन से करना होगा।
1: बिल्कुल, और अगर हमारी पीढ़ी अपने ज्ञान, तकनीक और संवेदनशीलता को साथ लेकर चले तो हम भविष्य को बेहतर बनाने में ज़रूर योगदान दे सकते हैं। तो आइए आज से अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, थोड़ा कम समय बर्बाद करें। इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग फ़ोन, आप कुछ और काम कर सकते हैं। बीट आप अपने गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने गार्डन में जाइए, पेड़ लगाइए, उनका ध्यान रखिए, या डेवलप अ हॉबी, एनीथिंग, और स्टार्ट द सोशल अवेयरनेस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से।
0: क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमें ये नहीं पूछेगी कि हम कितनी बड़ी बातें करते थे उस वक्त के लिए, हम कितना सब कुछ करना चाहते थे। वो हमसे ये पूछेगी कि हमने उनके लिए क्या किया है, हम क्या बदलाव लाए हैं। तो इस सवाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शुरुआत करें, अपने बेहतर समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ें और उन सभी चीज़ों पे काम करना शुरू करें। क्योंकि ये सभी कुछ हमारे ही ऊपर है, जैसे तुम कह रही हो, इट इज़ अप टू अस कि हम उन चीज़ों पे काम करें और उन सब चीज़ों को सुधारें।
1: और अपने कल के लिए अपने आज पे काम करें।

0: तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और हमारे कार्यक्रम के उस खास सेगमेंट का जिसका नाम है प्रेरणा पुंज, उस पे आते हैं। प्रेरणा पुंज यानी ऐसे व्यक्तित्व की यात्रा से रूबरू होते हैं हम उसमें, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
1: कभी आपने सोचा है कि आज हम अपने घर में बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं और कुछ कुछ ही सेकंड दुनिया में किसी कोने से कनेक्ट हो जाते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं दोस्तों, हमारे लिए सब कितना सामान्य हो चुका है ना। शायद कभी रुककर हमने ये सोचा ही नहीं कि ज़िंदगी में हमारे पास कितनी सारी साइंस की चीज़ें हैं, कितनी सारे आइडियाज़ हैं जिनको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं ना।
0: बिल्कुल। और इस पूरी दुनिया को संभव बनाने वाले जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ से आए, ये शायद ही हमने कभी सोचा हो।
1: एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम है निकोला टेस्ला।
0: एक ऐसा व्यक्ति जो बिजली को सिर्फ एक साइंटिफिक फिनोमेना के रूप में नहीं देखता था, बल्कि वो सोचता था कि बिजली का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है।
1: उन्होंने ऐसे समय में अल्टरनेटिव करंट, वायरलेस कम्युनिकेशन और रिमोट कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम किया, जब ये आइडियाज़ जो थे वो आज की तरह फैमिलियर नहीं थे। मतलब किसी से भी ऐसे आइडियाज़ के ऊपर बात की जाए ना दोस्तों, तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे। अगर आज आसान भाषा में हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट यानी AC, ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, और इसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे घरों तक पहुंचती है। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है बिना तार के इंफॉर्मेशन भेजना, और रिमोट कंट्रोल इसका मतलब तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी मशीन को दूर बैठ के कंट्रोल करना।
0: उनकी कहानी इन्वेंशन से कहीं ज़्यादा एक ऐसे दिमाग की कहानी है जो लगातार सवाल पूछता था, कल्पना करता था और अपने आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट्स में बदलने की कोशिश करता था।
1: तो आइए आज के प्रेरणा पुंज में हम जानते हैं निकोला टेस्ला की कहानी और समझते हैं कि आखिर उनकी सोच में ऐसा क्या था जो उन्हें अपने समय से इतना अलग ले गया।
0: निकोला टेस्ला का जन्म दोस्तों 10 जुलाई 1856 को स्मिलिजन नामक स्थान पर हुआ था, जो उस समय ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था और आज क्रोटिया में है। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रीस्ट थे और उनकी माँ जॉर्जिना टेस्ला औपचारिक शिक्षा प्राप्त न करने के बावजूद कई तरीके के घरेलू उपकरण बनाने की प्रतिभा भी रखती थी। बचपन से ही टेस्ला की मेमोरी और इमेजिनेशन बहुत तेज थी और उन्हें मशीन्स और साइंटिफिक फिनोमेना

0: को समझने में विशेष रुचि भी थी।
1: उन्होंने ग्रेस के पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की और बाद में प्राग जाके अपना अध्ययन किया। हालांकि उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरी नहीं हो सकी, इसके बाद भी उन्होंने बुडापेस्ट और पेरिस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम किए और इसी दौरान इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में उनकी रुचि और गहरी हो गई।
0: 1884 में टेस्ला अमेरिका पहुँचे और कुछ समय थॉमस एडिसन के साथ भी काम किया, लेकिन टेस्ला और एडिसन की सोच में एक महत्वपूर्ण अंतर था। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम पर काम कर रहे थे, जबकि टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे। अगर इसे आसान तरीके से समझें तो डीसी में इलेक्ट्रिसिटी एक ही डायरेक्शन में बहती है, जबकि एसी में इलेक्ट्रिसिटी की दिशा बदलती रहती है।
1: टेस्ला का मानना था अल्टरनेटिंग करंट को लंबी दूरी तक अधिक प्रभाव ढंग से पहुंचाया जा सकता है। 1888 में उन्होंने अपने एसी मोटर और पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण पेटेंट प्राप्त किए। एसी मोटर यानी ऐसी इलेक्ट्रिकल मोटर जो अल्टरनेटिंग करंट से चलती है। उसका इंडक्शन मोटर इसी तरीके से की टेक्नोलॉजी पर आधारित था जो आगे चलकर मॉडर्न इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को विकास में इसका विशेष महत्व था।
0: टेस्ला के एसी सिस्टम को जॉर्ज वेस्टिंगटन हाउस ने अपनाया और दोनों ने मिलकर अल्टरनेटिंग करंट टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
1: 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में टेस्ला और वेस्टिंग हाउस ने एसी सिस्टम का प्रदर्शन किया। यह डेमोन्स्ट्रेशन एसी इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
0: इसके बाद दोस्तों नायग्रा फॉल्स पर बड़े पैमाने पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए टेस्ला के एसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यानी नायग्रा फॉल्स के पानी से बिजली बनाई गई और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक पहुंचाने में टेस्ला की टेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
1: लेकिन दोस्तों टेस्ला की वैज्ञानिक यात्रा केवल इलेक्ट्रिसिटी तक सीमित नहीं है, उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पर भी प्रयोग किए। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है बिजली के बहुत तेज़ी से बदलने वाले वेव्स और हाई वोल्टेज का मतलब है बिजली का बहुत अधिक इलेक्ट्रिकल प्रेशर।
0: दोस्तों इसी क्षेत्र में उन्होंने टेस्ला कॉइल विकसित की। टेस्ला कॉइल ने हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट्स के अध्ययन और प्रयोगों के लिए नई पॉसिबिलिटीज़ भी पैदा करी।
1: टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन और एनर्जी ट्रांसमिशन की संभावनाओं को लेकर भी बेहद उत्साहित थे। वे समझते थे कि क्या इन्फॉर्मेशन या एनर्जी के बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना उसके लिए संभव है कि नहीं है।
0: दोस्तों 1898 में उन्होंने एक छोटे बोट जो है उसका प्रदर्शन किया, जिसे रेडियो सिग्नल्स के जरिए दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। आज रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हमें इतने कॉमन लगते हैं, लेकिन उस समय किसी मशीन को बिना तार के दूर से कंट्रोल करना एक बेहद असाधारण डेमोन्स्ट्रेशन था।
1: टेस्ला ने आगे चलकर यहाँ पे वार्डन क्लाइव टावर के जरिए वायरलेस ट्रांसमिशन से जुड़े अपने बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम किया। उनका उद्देश्य था कि वायरलेस तरीके से इंफॉर्मेशन और एनर्जी को दूर तक पहुंचाया जा सके और इसकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए।
0: हालांकि आर्थिक कठिनाइयों और कई दूसरी समस्याओं के कारण ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। यही टेस्ला की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हर आइडिया सफल नहीं होते और हर एक्सपेरिमेंट अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं है कि कोशिश कर देना बंद की जाए।
1: टेस्ला के जीवन में साइंटिफिक अचीवमेंट्स के साथ आर्थिक कठिनाइयां और प्रोफेशनल डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, फिर भी उनकी क्यूरियोसिटी और नए आइडियाज़ पर काम करने की इच्छा उनकी कभी कम नहीं हुई। उनका काम आज भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
0: तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आज के प्रेरणापुंज के लिए टेस्ला को ही हमने क्यों चुना? इसका पहला कारण यह है कि उनकी क्यूरियोसिटी। टेस्ला किसी प्रॉब्लम को केवल उसके मौजूदा सॉल्यूशन तक सीमित करने में विश्वास नहीं रखते थे। वो लगातार ये सोचते थे कि इसे किसी और तरीके से कैसे किया जा सकता है और इसके पीछे छिपी हुई नई पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। दूसरी प्रेरणा ये है कि उनकी इमेजिनेशन। उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचा जो अपने समय से काफ़ी आगे थे। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि उनका एक्सपेरिमेंटेशन। केवल कोई नया आइडिया

0: सोच लेना इनफ नहीं होता है, उस आइडिया को टेस्ट करना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स सीखने पड़ते हैं और उससे सीख लेनी होती है।
1: टेस्ला का जीवन इसी क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन है। आज के युवाओं के लिए उनकी कहानी इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इनोवेशन केवल बड़ी लेबोरेटरीज और बड़ी डिस्कवरीज से शुरू नहीं होती, ये एक छोटे आइडिया से, एक छोटे से सवाल से शुरू होता है कि ऐसा क्यों होता है या इसे बेहतर और कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो उसे दबाइए मत,
0: उसके बारे में पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, और अगर पहली कोशिश सफल ना हो तो उससे सीखकर अगली कोशिश करिए।
1: क्योंकि टेस्ला हमें ये भी सिखाते हैं कि किसी एक फील्ड में रुचि होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी को एक सीमा में बंद कर देना ये सही नहीं है। नई टेक्नोलॉजी सीखिए, किसी नए सब्जेक्ट पर काम कीजिए, उसे समझिए, अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखिए और सोचिए कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। क्योंकि कई बार इनोवेशन की शुरुआत किसी बड़े लेबोरेटरी से नहीं बल्कि एक साधारण से सवाल से होती है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को
3: बीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से ब्रेक के बाद हम वापस आ गए अपने प्रोग्राम में, और अब हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है।
7: और आपको जैसा कि पता है कि हम अपने प्रोग्राम के एंड में एक छोटा सा Q&A सेशन लेके आते हैं, तो कल का हमारा प्रश्न था,
6: संविधान का कौन सा भाग जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और इसका उत्तर है भाग 4। तो उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हमारी प्रतिक्रिया को साझा किया, अपनी प्रतिक्रियाओं को, उन सभी का धन्यवाद। और हमारा आज का प्रश्न है,
7: भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था? आप इसका उत्तर हमें हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर दे सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। और दोस्तों, इसी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइएगा, और हम आगे चल के आपके लिए नए टॉपिक्स लेके आएंगे, नई बातें लेके आएंगे, नए एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे।
6: और दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब हम अपनी ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करते हैं, तो हम इस उम्मीद से शेयर करते हैं कि अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना हो, या कुछ बताना हो, या कुछ अपने सुझाव देने हो, या कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट आपकी हो, तो आप वो हमसे शेयर करें। हम पूरी आपको इस चीज़ की आश्वासन देते हैं कि हम आपके रिक्वेस्ट को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर ध्यान देंगे।
7: बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलेंगे फिर आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
6: और मुझे यानी दिव्या को दीजिए इजाजत।
7: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा जाति सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग

0: योग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सही

0: है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स MSME सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए सुनिए पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 7:30 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। शाम 6:30 पंचायत घर में ग्रामीण भाई अवधेश चंद्र यादव से चंद्रजीत यादव की बातचीत सुनेंगे। विषय होगा डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी। साथ में एक और भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी अनूप ओझा से घनश्याम सिंह की। विषय होगा कृषक साक्षरता। साथ ही आप सुनेंगे विकास श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत।

तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत में किसान भाई सुनेंगे मत्स्य पालन का वैज्ञानिक तरीका, इस बारे में बातचीत। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा, इसमें आप डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय होगा युवाओं में बढ़ता रक्तचाप, कारण और उपचार। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनवाएंगे 7:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे 7:30 और 10:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन और 12:30 पर सुनवाएंगे गुरु प्रसाद वर्मा का वायलिन वादन। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 9:50 पर और 7:45। सवेरे कलाकार होंगे ममता त्रिपाठी और 7:45 आप सुजाता सिंह के स्वर में गीत और भजन सुनेंगे। 10:05 पर होगा कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता एवं अभय कांत तिवारी की बातचीत। लोकगीत सुनिएगा 10:30 पर, कलाकार होंगे राम कैलाश, आश्रया द्विवेदी और साथी। 6:30 पंचायत घर में कलाकार होंगे शैलेश कुमार शर्मा। पंचायत घर कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा ग्रामीण भाई नंदलाल से लोक भाषा में कविता पाठ सुनेंगे। श्रोता अपने फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गाने सुन सकते हैं। फ़ोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद में दिन में 12:30 पर। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता, समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं 9:30 पर। तो ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं समूह स्वर में देश कान।

अभी आप समूह स्वर में देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ब्रिक्स संघः न तावत् केवलं राष्ट्राणां परिगणित समुदायमात्रः अपितु वैश्विक विषमतानां परिहाराय एका अनन्यथा सिद्धा समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदिल्ली घोषणा पत्रम ब्रिक्स देशानां भावी सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य आह्वानम् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्र उत्पादन श्रृंखला भारतस्य प्रभुत्वे एव अवचिन्ना तिष्ठेत्। अपि च दुबई नगरे निवर्त्यमानायाः T20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः चरमे सोपाने अद्य भारतं श्रीलंका दलेन सह पक्ष प्रतिपक्ष भावेन सम्मुखी भविष्यति। अथ वार्ताः।

0: ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिज उद्गामी प्रौद्योगिकी सृजनात्मक अर्थव्यवस्था समेत्य जनानां मिथः सम्पर्केषु व्यापक सहयोगाय गभीरः विचार विनिमयः निरवर्ति। अत्रापि च प्रधानमन्त्रिणा मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतह अल सीसी इत्यनेन सह गभीरा मन्त्रणा प्रत्यष्ठापि। सामाजिक अंतर्जालीय पटले मोदिना प्रोदीरितं यत् गोष्ठ्यामस्याम् अविनाभावेन सम्बद्धाः क्षेत्रीय घटनाक्रमाः तथा प्रवर्धमाना भारत मिस्र संधि इत्यादयः विषयाः सम्यक् समीक्षिताः। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह निरवृत्तां वार्ताम् अधिकृत्य मोदिना प्रामाण्य पुरस्सरम् अभिहितं यत् उभौ पक्षौ बहुविध क्षेत्रेषु स्वकीयां संधिं पुनरपि समुनिष्यतः। तेन राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य सहज सौहार्दम् आशावाद्योन्मेषश्च भूरिशः प्रशंसितः। अपरञ्च प्रधानमन्त्रिणा फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिना फर्डिनेंड आर मार्कोस इत्यनेन सह उच्चस्तरीय सम्भाषणं समाचरितम्। आसियान अध्यक्षरूपेण फिलीपीन्स देशस्य ब्रिक्स सम्मेलने उपाधिरहितां सहभागितां सह सहर्षम् अन्वमोदत। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे व्याप्तिज्ञानेन साधितां सम्पूर्तिं प्रति पूर्णं सन्तोषं प्रकटितवन्तौ। तथा हि प्रतिरक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश अंतरिक्ष रेल शिक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी जनसंपर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक संबंधानां अनन्यथा सिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अंगीकारं प्रापतुः। रत्नाभूषण क्षेत्रे स्वावलंबनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमंत्री अमित शाहः मुंबय्याम् उपस्थापयत् यत् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण श्रृंखला पूर्णतया भारते एव नियंत्रणीया। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन् नवसरे विजयप्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते। समारोहे राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे च उपस्थितौ आस्ताम्। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृतिम् उद्घोषयन् आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव प्रावोचत यत् ब्रिक्स घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती सम्पूर्तिः अस्ति। मंत्रिणा प्रतिपादितं यत् वैज्ञानिक अनुसंधानैः गुणवत्ता नियंत्रणैः च आयुर्वेद पद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनं अनवरतं प्रयतते। महिलानां 20-20 एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दले। उभे अपि दले भारतं श्रीलंका च स्पर्धायाम् अपराजिते भूत्वा अन्तिम चरणं प्रविष्टे। महिला एशिया चषकस्य इतिहासे सप्तवारं विजेता भूत्वा भारतीय दलं सर्वाधिक सफलं दलमस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: आओ घनश्याम भैया, का हाल चाल बा हो खेती किसानी के भैया?
0: बैजू भैया हो देखा खेती किसानी न बढ़िया अपने रौनक पर हो।
1: हाँ भाई, मौसम यहाँ साल अच्छा बन गया बे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भैया, धान का बढ़िया मिलत जात बे। और वह भैया कही गए ना, धान पान केरा पानी के चेरा तो का बराबर पानी मिलत भैया,
0: मिलत जात बा हो। थोड़ा सा रोप

0: रोपाई के समय में बारिश देर भइल रहल, लेकिन भैया रोपाई के बाद समझला हो कि भैया समय समय पर जैसे लगत बा कि टाइम टेबल बनल बा बारिश का, जब जरूरत बा भैया बरस देत बा। हाँ तो धान तो भैया बड़ा बहाले हुए हो भैया। आ भैया देखा जब खेती में ना किसान के खेत में फसल बहाले रहे भैया, दुआरे पर पशु बाग बागवानी बहाले रहे, तो किसान तो वैसे मोछ पे ताव देके मुस्कुराते रहे
1: ना। जब खेत में हरियाली तो घर में खुशहाली,
0: बिल्कुल।
1: तो हम तो कह भैया के खेती किसानी में किसान भाई लगा बटे, फिर भी बारिश होत बा, लेकिन संध्या सवेरे ओकर जरूर निगरानी करें, देखत रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, डांडे मेड़े तनी टहलत रहें।
1: हाँ, हाँ,
0: तो अच्छा दूसर बजू भैया ने कि देखा डांडे मेड़े टहले से ही होता है कि अगर मान ला कौनो तल बेतल बुझात बा तो भैया हो जौन कृषि वैज्ञानिक बाइन कृषि विशेषज्ञ बाइन लेके पहुँच जा, ओके समझ ला भैया, जौन सलाह दे ओके अनुसार जौन को निदान कहला।
1: या किसान भाई अपने समझ लेते हैं दिक्कत आवत बा, तो भाई वहां तो हिसाब से दवाई छिड़की है या खरपतवार अगर हो तो का निकाल दे, तो ये सब देखभाल करे से ही खेती बढ़िया होए भैया। धान के फसल के अलावा और भी जोन फसल लेहे बाटन, चाहे का कहा थी न ज्वार बाजरा हो, मक्का हो या साग सब्जी हो, तो ओकर भी देखभाल करत रहें, और मैं जोन भी दिक्कत आवे ओका दूर करे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: देखे हो समय समय पे यह देखत आवे हो कि खाद का उपयोग किसान भाई करत है ना, खास करके रासायनिक खाद, लेकिन धीरे धीरे अब जागरूक किसान जवन है ना, वो जैविक खाद या गोबर के सड़ी खाद जैसे पहले डाला जाता रहा वो भी डालत है। तो भैया हो गोबर खाद का बड़ा महत्व भी उपयोगिता भा खेते में, और उससे देखा सबसे बड़ी चीज़ तो माटी की संरचना बनी रहा था, अब माटी उपजाऊ होता है। तो भैया हो गोबर का खाद का भी महत्व समझे किसान भाई, और एक तभी होए भैया जब पशुपालन की ही होगा, तब तो गोबर इकट्ठा हो ओकर खाद बनौवा भैया। तो भैया हो पशुपालन करें, और जे तो भाई ज़्यादातर किसान भाई केहन बाटन जे नाई केहन, कम से कम अपने खाए भरे के खाद गाय भैंस बात पाले रहें। तो भैया
0: यो बैजू हर विधि विधान करा भैया, जौने से कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम हो जाए। देखा हो एक जमाना रहे बैजू कि रासायनिक खाद का प्रयोग किसान नहीं करत रहे, तो सनई ढैचा उरद मूंग भैया माटी के नीचे दबाए देते रहना।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
0: अब भैया हो जैविक खाद बनाओ तो ना कूड़ा करकट से भैया देखा खूब बढ़िया खाद बनत रहे, बायोगैस गोबर गैस लगवा के जौन बढ़िया खाद बनत रहे हो कि कोई जरूरत नहीं पड़त रहे रासायनिक खाद का।
1: नहीं आज भी देखा किसान भाई जागरूक हैं करत हैं, खास करके केचुआ वाली खाद देखा बड़ा फायदेमंद बनावत बाटे, तो ये सब के देख के भाई विकास करें तो अच्छा बा है। एक बार और घनश्याम भैया कि हम तो देखा किसान खेती किसानी में लगा बाटी है, अगर हमारे जौन फसल पैदा हो था भैया ओकर उचित मूल्य माने दाम ना मिले भैया, तो बड़ा खाला था।
0: नहीं नहीं भैया अब तो देखा सरकार बड़ा सजग बा वो बैजू भैया, अब देखा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य जौन है ना वो सरकार भैया तय कह देता।
1: हाँ भैया MSP जोन में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौनो भी फसल के मौसम शुरू हो के बीज बुआई के पहले ही निर्धारित हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: ऐसे फायदा ई बात किसान भाइन के सुरक्षा मिलत है कि ऐसे कम में तो हमार अनाज न बिचा
0: नहीं देवे के बाय नहीं है भैया। हो किसानन के पता नहीं रहे जौन लोग आवे भैया कह दे औने पौने दाम में किसान से लूट ले।
1: ना ना अब तो भाई चाहे महंगा हो या सस्ता हो लेकिन जितना निर्धारित हो ये फसल के ये अनाज के इतना मूल्य रहे तो उसे कम ना बिचाए, इतना तो कम से कम भाई सुरक्षा की गारंटी मिले।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया हो न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान भाई की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, तब उनका असुरक्षा की भावना हट जाता है, सुरक्षा मिलत है। अब 22 प्रकार के फसल के जोन बाटे है ना, बाटे है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कब भैया हो कृषि लागत मूल्य आयोग हो था
0: निर्धारित करे तो भैया एक अनुमान लगा लेते
1: हाँ
0: कि कितना लागत किसान लगाए के खेती करते हैं, कितना मूल्य कम से कम रखा है कि उनके फायदा हो
1: फसल के बीच में मूल्य का संतुलन हो, घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजार का भाव वही हिसाब के देखते मैंने सब चीज के देख मूल्य निर्धारित होता है।
0: बैजू भैया हम कहीं कि देखा अब तो नेट पर भैया कुल जानकारी बात क्योंकि बहकावे से बहके के जरूरत नहीं।
1: तो भैया हो 22 प्रकार के जोन कृषि फसल बाटिन है जोने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया तो वह है भैया धान गेहूं ज्वार बाजरा मक्का रागी अरहर मूंग उड़द चना मसूर मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी सरसों तिल कपास। हाँ।

0: भैया हो तो ई सब शामिल
1: अरे तो
0: बाटन।
1: कुलय हो गेल भैया
0: हाँ
1: लगभग
0: यही
1: इत।
0: तो सब पैदा
1: हाँ
0: होत
1: और क्या।
0: बाटे है भैया। तो भैया हो ऐसे किसान भाइन के सुरक्षा बा, खास करके भैया जोन अपन सरकार क्रय केंद्र खोले बा वो हमें बेची ही तो ज़्यादा फायदा भाई,
1: बिल्कुल।
0: बिचौलिए के दही तो औने पौने में लेबे करें। तो किसान भाई हमारे जागरूक बाटे ना, फसल तैयार हो तो क्रय केंद्र में जाए के, जैसे मान लो धान की फसल अब तैयार हो तो क्रय केंद्र में जाइ तो जितना निर्धारित बा उतना तो मिले।
1: मिलवे करी मिलवे करी।
0: तो ये बात का ध्यान रखें। तो भैया घनश्याम देखा तो चर्चा का बात रही, आज और का सुनवावत बाटा बताओ भैया।
1: भैया देखा हो आप रोज की तरह से आजो अपन कार्यक्रम खूब भरल पुरल बा बजू भैया।
0: हाँ।
1: आ देखा भैया एक बड़ी जरूरी बात कही बा हो कि डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। अवधेश चंद यादव से चंदीज भैया के बातचीत हुई।
0: अच्छा
1: आ एक भैया देखा भेंट वार्ता बा कृषक साक्षरता।
0: हाँ तो बहुत
1: यहाँ
0: जरूरी भाई,
1: यो सुनल
0: पढ़े
1: जाए
0: लिखे
1: अनूप
0: रहबा
1: ओझा
0: तबे तो
1: भैया
0: का
1: से
0: कहते
1: हमार
0: हैं।
1: बातचीत बा।
0: हाँ
1: लेकिन देखत है ना
0: हाँ
1: विकास श्रीवास्तव भैया देखा मुस्कियात बहन।
0: तो उनका गौनाई सुनवा हुआ भैया।
1: हाँ तो भैया हो आवा विकास श्रीवास्तव के एक सुनल जाए गौनाई।
0: सुनवाए दे भैया।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: भैया हम कही देखा ही विकास श्रीवास्तव के गौ नई किसान भाई सुने और सनेश भी
2: खूब खूब
1: देखा बात बत कही हो तो भैया वो खेती किसानी के साथ पशुपालन भी काम कर रहे आजकल डेयरी उद्योग लोग खोलत हैं अच्छा फायदा भाई घरे के घरे हैं दूध भी पिए के मिलत बाप दो पैसा का आमदनी
2: होता
1: तो भैया हो नई नई तकनीक है ना हमें कैसे प्रयोग हुई तब ज़्यादा फायदा होता है तो आज देखा बात बत कही जोन होत रही कि डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी का भूमिका बाँटे है अवधेश चंद यादव से चंजीत यादव के बात बत कही भाई बे हम तो सोची कि अपने पशुपालक भाई की सुनवाई दिया जाए फायदा ले
2: हैं। बिल्कुल बिल्कुल
1: तो सुने भैया
3: किसान भाई आप देखा तरह तरह से भाई पशुपालन करत हैं और पशुओं के पाल के आप चाहते हैं भैया कि डेयरी उद्योग चलाए के और उसी अच्छा फायदा लिया जाए तो भाई देखा एक आधुनिक तकनीक के रूप में जौन जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका के बात की जाते डेयरी उद्योग में तो भाई जैव प्रौद्योगिकी के भूमिका का बाटे डेयरी उद्योग में जौन से आप सबके अच्छा फायदा हो सके देखा ये विषय पे जानकारी देख लिए आज मेरे साथे बाटे अवधेश चंद भैया जौन की ई कुल के जानकार बाटे भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे और हम आपसे जानना चाहब भैया कि ई डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी के का भूमिका बाटे एमें भैया सबसे पहले तो हम जैव प्रौद्योगिकी के मतलब जानना चाहब कि का मतलब है एक जौन से किसान भाई जान के एका उपयोग में लावें।
4: जैव प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है एक जैव दूसरा प्रौद्योगिकी जैव का अर्थ जीव विज्ञान से है और प्रौद्योगिकी मतलब जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों पर हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे सूक्ष्म जीव शैवाल बैक्टीरिया कवक ईस्ट कोसा चाहे वो जंतु कोसा हो और चाहे पादप कोसा हो चाहे वो कोसा के कुछ अवयव हो का उपयोग करके हम मानव के लिए अच्छे उत्पाद प्राप्त करते हैं
3: जी।
4: जैव प्रौद्योगिकी में कुछ भाषाओं का समावेश होता है
3: जी जी
4: जैसे जैव रासायनिकी सूक्ष्म विज्ञान अभियांत्रिकी विज्ञान जेनेटिक इंजीनियरिंग या अनुवांशिकी अभियांत्रिकी
3: जी।
4: जैव

0: कि मैं सूक्ष्म जीवों या जो जंतु या कोशिकाएं हैं उनमें जेनेटिक स्तर या अनुवांशिकी स्तर पे कुछ परिवर्तन करके उसमें सुधार करके उच्च गुणवत्ता व अधिक मात्रा में उपयोगी उत्पाद और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: जेनेटिक स्तर या अनुवांशिकी परिवर्तन का अर्थ है जेनेटिक पदार्थ जैसे डीएनए आरएनए में बदलाव लाकर मनचाहे उत्पाद को हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: का मतलब यह ये कुल वैज्ञानिक तरीका है, आधुनिक तरीका है जो ने के अगर इस्तेमाल करें किसान भाई तो निश्चित तौर पे भाई इसी जो ना डेयरी उद्योग में उनमें गुणवत्ता भी आए और उत्पादन भी बढ़े, और अगर उत्पादन बढ़े तो किसान भाई के लाभ हुए।
0: अब जैसे हम साहब बताना चाहेंगे कि डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग कर
1: हाँ
0: सकते
1: हाँ
0: हैं,
1: बिल्कुल बताओ भैया।
0: इससे हम लीव स्टॉक, लीव स्टॉक मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी जो है उनमें हम अनुवांशिकी स्तर पर विकसित मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें विकसित कर सकते हैं।
1: अच्छा मतलब अच्छी नस्ल एक तरह से तैयार की जा
0: हाँ
1: सके
0: हाँ
1: थे।
0: हाँ
1: जी
0: इससे जो हमारे लीव स्टॉक पैदा होंगे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनमें बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी,
1: जी
0: उनकी उच्च पोषण क्षमता होगी। उच्च पोषण क्षमता का मतलब उनको हम अगर कोई थोड़ा भी भोजन देंगे तो उनमें जो न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व होते हैं
1: जी।
0: उनको अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होगी।
1: का मतलब भैया एक तो नस्ल में सुधार होए और दूसरे वो जौन की भाई पोषक तत्व की बात की जाती है कि पशुओं के पोषक तत्व दिया जाए, वही पोषक तत्व उनमें से जितना भी पोषक तत्व तो उनका दिया जाए भोजन के रूप में उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अवशोषित कर ले ही और ओकर उपयोग जो ना है उत्पादन में वो कर सकते। और
0: अच्छा,
1: भैया
0: कुछ उच्च प्रजनन क्षमता भी उनमें रहेगी। कुछ
1: अच्छा
0: हम जानवरों को देखते हैं कि उनमें प्रजनन क्षमता की कमी से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो
1: जी।
0: उनके लिए सरोगेट मदर का हम उपयोग करते हैं।
1: अच्छा भैया ये का होता है, ये कौन विशेष तकनीक में का जौन से भाई कि जौन जनन क्षमता हो तो उनमें वृद्धि हो जाए और अगर जनन क्षमता में वृद्धि हो तो निश्चित तौर पर उत्पादन भी बढ़े।
0: हाँ, इसमें किसी उच्च गुणवत्ता वाले जानवर विदेशों से जो हैं
1: हाँ।
0: उनको ला कर मतलब उनके स्पर्म या जो ओवम को यहाँ पे हम फर्टिलाइज करके यहाँ की गांव जानवरों में
1: जी।
0: कोख में हम जो रखते हैं उसे सरगोट मदर, हिंदी में सरगोट मदर का मतलब किराए की माँ या किराए की कोख
1: अच्छा, काहे
0: कहा
1: मतलब
0: जाता
1: भैया
0: है।
1: कि नस्ल सुधार के लिए
0: हाँ
1: जौन भाई कुछ उच्च गुणवत्ता के नस्ल वाले भाई जानवर बाटे उन्हन
0: जैसे जो
1: के
0: जानवर बाँझ हैं बंद
1: जी
0: हैं
1: हाँ।
0: उस लाइलाज हैं उनके लिए है वे जो है सरगोट मदर का विकल्प एक है।
1: मतलब नर और मादा युग्मक के निषेचन कराए के
0: दूसरे
1: ऐसन
0: में दूसरे
1: जानवरन में स्थापित करके उसी जौन है बच्चा पैदा करेगी भी।
0: हाँ।
1: अच्छा। और
0: अच्छा,
1: भैया
0: इससे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो हम जानवर या लीव स्टॉक पैदा करते हैं वो काफ़ी विकसित मतलब हिष्ट पुष्ट रहेंगे, मांसपेशी और स्वस्थ और सुडौल मजबूत रहेंगे। दुग्ध उत्पादन इससे अच्छा होता है
1: जी
0: और उच्च स्तरीय उत्पादन दूध की पोषण क्षमता विकसित करना मतलब कि दूधों के अवयव जैसे प्रोटीन है लैक्टोज है फैट है
1: जी
0: उसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को वसा की कमी होती है तो उसके लिए वसा हम बढ़ा सकते हैं, जैसे गाय में वसा कम होती है भैंस में ज़्यादा,
1: जी
0: तो उनके बीच की जीन्स को लेके हम दोनों के बीच की वसा मतलब गाय में वसा कुछ बढ़ा सकते हैं और
1: जी
0: भैंस की वसा कुछ घटा सकते हैं। या तो आपने सुना होगा कि किसी किसी को लैक्टोज नहीं पचता है
1: जी जी
0: तो उनके लिए हम दूध से लैक्टोज रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे रोगियों को हम लैक्टोज या जो होते हैं बीमार उनको हम दे सकते हैं।
1: का मतलब भैया कि दूध के गुणवत्ता उनमें जौन पोषक तत्व तो होते हैं ओकर मात्रा घटाए भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं इस तकनीक के इस्तेमाल द्वारा।
0: इस तकनीक का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि दूध की पाचकता बढ़ा सकते हैं हम।
1: अच्छा।
0: दूध फर्मेंटेटेड होगा तो ज़्यादा बढ़िया से पचता है। दूध में एक और इसका अनुप्रयोग है कि औषधि व मौखिक टीका द्रव का उत्पादन करना।
1: अच्छा। ये भैया का होता है।
0: औषधिक मतलब दूध में हम शुरू से मतलब जीन्स कुछ ऐसे लाते हैं बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवों से जो एंटीबायोटिक और एंटी फंगल और एंटीवायरल उत्पादों को उत्पन्न करते हैं, उनको हम इसमें जीन्स लाएंगे जो ट्रांसजेनिक हम बनाते हैं पशु जो है,
1: जी
0: जिससे उनमें जो है दूध में खुद ब खुद औषधि एंटीबायोटिक उसमें आते रहेंगे और हमें मौखिक टीका द्रव का हमें मिलता रहेगा।
1: का मतलब दूध में जो ना

0: बतावत बाटे भैया एंटी फंगल और एंटी वायरल और तरह तरह के जवान संक्रमण के डर रहा है वह डर के भी खत्म किया जाए।
1: हाँ बिल्कुल।
0: एक चीज भैया और बताओ, जैसे ट्रांसजेनिक के बात आप करते बाटे हैं या जैसे किड़वन के बात की जाते हैं, इका होते कर विषय में थोड़ा फरियाक
1: बताना चाहेंगे कि ट्रांसजेनिक वे जानवर होते हैं
0: जी
1: जिनमें दो जातियों के जीन्स को लेकर संकर करके एक नया प्रकार के लक्षणों का एक जानवर पैदा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई
0: जी
1: जिसमें ह्यूमंस मतलब आदमी के जीन्स को लिया गया
0: जी जी
1: जो लैक्टोज बनाने के लिए उत्तरदायी था। अब इस गाय में के दूध में लैक्टोज जो कि केवल मानवीय दूधों में ही पाया जाता है
0: जी।
1: इसके दूध में भी पाया जाने लगा जिसका उपयोग हम शिशुओं को दूध पिलाने के लिए करते हैं। जो माए अपना दूध नहीं पिलाना चाहती अपने शिशु को उनके लिए यह दूध उपयोगी होता है।
0: काहे मतलब कि भैया जैसे माँ के दूध होते है उस तरह के दूध जानवर से प्राप्त किया जा सकता है और ओकर इस्तेमाल जो है शिशुओं के पियाव में किया जा सकता है। अच्छा
1: अच्छा एक दूसरा ट्रांसजेनिक आपने जैसे आप पूछा बताना चाहेंगे हम कि गाय बनाएंगे जिसमें लैक्टोफेरिंग और लाइसोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: ये दूध में हमारे पाए जाएंगे जिनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक दूसरी ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई जिसमें ब्लड डिसऑर्डर को दूर करने की क्षमता थी।
0: अच्छा अच्छा मतलब जो भाई खून में जो कमी हो जाता है वह कमी के भी दूर करे की क्षमता जौन उत्पाद हुई उसमें रहे। एक चीज और बताऊं भैया, जैसे ये पाश्चुरीकृत दूध की बात कही जाते है एक विषय में बताओ ये काबा इसी का किसान भाई का लाभ हुए।
1: पाश्चुरीकृत दूध का मतलब कि दूध में से सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को हटाना।
0: अच्छा अच्छा
1: तो पाश्चुरीकृत में जो है हम तापमान के द्वारा सूक्ष्म जीवों को मारते हैं।
0: अच्छा
1: तो ये तीन प्रकार से होता है, इसके तीन टाइप होते हैं। निम्न ताप पे एक होता है जैसे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए हम रखते हैं।
0: 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक दूध का रखा जाए।
1: हाँ, गर्म करते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं मर जाते हैं।
0: अच्छा
1: इसके बाद अगर हम तापमान और बढ़ा देंगे लेकिन टाइम उसी हिसाब से कम करेंगे जैसे 70 से 71.7 सेंटीग्रेड जब बढ़ाएंगे तो टाइम हमें 10 से 15 सेकंड करना होगा।
0: तो इस तरह से भाई दूध पाश्चुरीकृत हो जाए और हमें जो सूक्ष्म जीव बहुत नुकसान करते हैं वो जो है खत्म हो जाए ही तो दूध की गुणवत्ता बढ़ जाए। आप भैया आए और इतना बढ़िया जानकारी दें, सब जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया,
3: घनश्याम भैया, ये देखा इतने नीक बात कही जोन भाई डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पे अवधेश चंद्र यादव से चंजीत यादव की बात कही किसान भाई सुनन तो गुने भैया कैसे कैसे का बताए
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: वैज्ञानिक विधि से कहाँ का करे वो कैसे उनका उद्धार होए तो ये सब भाई उपयोग करें वैज्ञानिक चीज़ जानकारी ले ही तभी फायदा होए। दूसरी बात देखा की बात कही होत रही कि भाई कृषक साक्षरता हम तो कही घनश्याम भैया साक्षर हो बहुत जरूरी बा। आज के युग में जैसे हर जगह मोबाइल होइगे हर चीज होइगे किसान भाई कौन फसल कहाँ पे कौन दर से बिचात बा
2: क्योंकि भरोसे ना रहे के हो बैजू क्योंकि मुंह नहीं था
3: नहीं नहीं भाई
2: किसान अगर पढ़ा लिखा है जानकार है भैया ने तो अपन का जरूरत बा का जाना चाहते है वो भैया हो चाठे बटन दबाऊ नेट पे गई देख लेन
3: भैया। दूसरी चीज अपने खेत खसरा खतौनी हर चीज जानकारी रखत बा बटन कहाँ का दिक्कत आवत ब का नहीं तो पढ़े लिखे से बड़ा फायदा बा। आजकल देखा खेती भी वैज्ञानिक हो गए और खास करके नकदी फसल का खेती कैसे कही जाए तो देखा पढ़े लिखे बाटन अलग ढंग से खेती करत है व्यावसायिक खेती के जमाना बाटे तो ये जब पढ़ाई लिखाई जरूरी बा तो कृषक साक्षरता का है भेंटवार्ता बा अनूप ओझा से घनश्याम सिंह भैया आपके तो हम तो कही किसान भाई एक सुन और समझे
2: बिल्कुल। किसान भाई देखा एक समय रहल हो जब हमार किसान भैया लोग कम पढ़ लिखत रहते रहने एक दूसरे के देख के एक दूसरे के अनुभव से सीखत रहने अपन खेती किसानी करत रहने दो पैसा का आमदनी होत रहा। धीरे धीरे समय बदल किसान भाई अब पूरी जानकारी कहल जाते कंप्यूटर पे आ गल मोबाइल पे आ गल हमें चाहे अपन फसल बेचे के हो चाहे हमें नए नए किस्म के जानकारी लेवे के हो सब कुछ अब आपके अब अपने स्तर से मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से लेके ओके अपने अनुसार अपना सकते हैं। लेकिन एक ही जानकारी लेवे बदे भी जानकारी हो पढ़ाई लिखाई हो

0: बहुत जरूरी हो। यानी एक तरह कहल जाए तो कृषि के क्षेत्र में भी साक्षरता का बहुत महत्व हो। कृषि में हमारे जो कृषक हैं वो कितना साक्षर हों और वो साक्षरता से अपने खेती में कैसे लाभ ले सकते हैं, आज यही सब के बारे में जानकारी आप लोग तक पहुँचाओ खातिर अपने स्टूडियो में अनूप ओझा जी हैं, जिनके आप प्रसिद्ध समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप से आज कृषक साक्षरता के बारे में हम कुछ बातचीत करें। हम आपसे ये जानना चाहते भाई कि एक जो सजग किसान, एक समुचित किसान कहल जाए जेके जे कि हर तरह से अपने खेती किसानी के अच्छे से अच्छे ढंग से अपना सकत हो, तो उनके साक्षर हो कितना आवश्यक हो।
1: भैया बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कृषि आज की पूरी जो खेती का अनुभव और खेती के तरीकों की बात आप कर रहे हैं
0: जी,
1: पूरी मिट्टी ही बदल गई है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे पहले किसान हल चलाता था खेत में बैल और छोटी छोटी जोत को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक जूझता रहता था, अब वो दुनिया, अब वो जमाना, अब वो दौर बदल गया।
0: बिल्कुल,
1: अब हम एक नई मिट्टी पर पैर रोप चुके हैं, हम एक डिजिटल मिट्टी पर कदम रख चुके हैं। इस डिजिटल दौर में जब मिट्टी डिजिटल डिजिटल मिट्टी की हम बात करने लगे तो खेती भी पूरी तरह से डिजिटलाइज होने लगी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अब डिजिटल खेती कैसे हम करें, डिजिटल खेती के तरीकों की ओर जब हम बढ़ेंगे, उसके बारे में जब हम ज्ञान और डेटा का संग्रह करेंगे, संवर्धन करेंगे, अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे, तब हम आज के युग की, आज के दौर की खेती में अपने को खड़ा कर पाएंगे और कृषि को, कृषि के क्षेत्र में किसान भाई अपने को आगे बढ़ा पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपको बता दें कि कृषि इतना व्यापक क्षेत्र है, खासतौर से भारत में। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कृषि आधारित, हमारा समाज भी कृषि आधारित है। कृषि आधारित क्या है, कृषि पर पूरी तरह निर्भर है। हम लोग सिर्फ किसान ही नहीं है, हम लोग एक तरह से मजदूर किसान है।
0: बिल्कुल,
1: कि हम सिर्फ किसानी नहीं करते, हम मजदूर से काम नहीं कराते, हम बल्कि अपना श्रम उससे जोड़ करके रखते हैं, हम जुड़े रहते हैं उससे। लेकिन भैया आज के समय में इतना दुनिया, इतना जमाना तेजी से बदलल हो कि बदलते दौर में अब जब किसान भाई लोग अपने आप के बदले के तैयार न हुई हैं तो उनके हाथ से और उनके जेहन से, दोनों से बहुत कुछ निकल जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कहने का मतलब ये है कि कृषि में अब अपने को खड़ा करने के लिए छोटी छोटी मिट्टी के बारे में, मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बारे में
0: जी,
1: उसके पोषणीयता के बारे में, रसायन के बारे में, खाद के बारे में, उर्वरक के बारे में, और सबसे बड़ी चीज़ कि जब तक सटीक जानकारी आपको नहीं होगी, किसान को समय की समयबद्धता की जानकारी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि कब हम किस समय पर कितना, कौन सी खेती करें, कौन सा बीज ले आएं और कितना उसमें पानी दें और कितना उसमें खाद दें। खासतौर से डेटा संग्रह के क्षेत्र में जब तक किसान अपने को संवर्धित नहीं करेगा, विकसित नहीं करेगा, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएगा, तब तक आज के कृषि में उसे आगे जाना बहुत कठिन है। इसलिए हम यही सलाह देंगे, हम कहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में अपने को उन्नत बनाने के लिए, अपने को और विकसित करने के लिए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कृषि आधारित शिक्षा को अपनाना बहुत जरूरी,
0: बहुत आवश्यक है। तरह से कृषक साक्षर रही तो जैसन कि ओझा भैया देखा बताओ थे कि हर तरह से आप मजबूत रहबा और आपका लाभ, आपके खेती निश्चित रूप से लाभप्रद। भैया हम आपसे एक चीज़ जानना चाहब कि आज के समय में और एक पुराने समय में किसान अपन खेती करत रहना, जैसन कि आज आप बहुत काफ़ी हद तक प्रकाश डाल देंगे साक्षर हो कितना जरूरी है, ये तौर तरीका से लेकर पुराने ढंग की खेती और आज के ढंग की खेती में अंतर का देखते हैं आप।
1: भैया देखिए, खेती मैंने आपको पहले भी बताया कि
0: जी,
1: खेती पूरी तरह से आमूल चूल बदल गल हो,
0: जी जी जी
1: बदलत हो, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में डेटा आधारित अब देखा खेती हो गल हो, खेती में सेंसर का उपयोग होता, खेती में ड्रोन का इस्तेमाल होता।
0: बिल्कुल,
1: अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी एक योजना चालू किया है, लागू किया है ड्रोन दीदी।
0: बिल्कुल,
1: और ड्रोन दीदी का इस्तेमाल खास तौर से हमारे यही प्रयागराज से उन्होंने लॉन्च किया था। अब किस तरह से जो लड़कियां

0: मेहनत कश महिलाएं हसिया और कुदाल लेकर के खेतों में परिश्रम करती थी और सुबह से शाम तक पसीना बहा करके और फिर उसी मिट्टी में अपने को रंग करके रच बस करके जब शाम को घर आती थी तो कैसे अपने बच्चों को अपने परिवार में अपने परिश्रम की खुशी अपना फिर वही बनाना खाना फिर उसी खेत में जूझना।
1: जी,
0: लेकिन अब वही महिलाएं अब ड्रोन के जरिए तमाम डेटा संग्रह करने की ओर बढ़ गई हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: वो कौन कौन सा कीड़ा के किरौना खेत में लगत हुवन, कब कितना नमी हो खेत में कि कितना नमी तेजी से भागत हो, कब जोत का जरूरत हो, कब पानी।
1: में
0: अब
1: कौन चीज का
0: सीधे जो है
1: आवश्यकता है। जी
0: सेंसर और ड्रोन के जरिए वो डेटा प्रबंधन करके डेटा संग्रह करके और उस तकनीक के जरिए किसान को उसके ज्ञान को संवर्धित करके हम लोग बहुत चीज़ बदल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अब बदलने
1: बिल्कुल
0: की ओर है। अब भैया एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर इससे आज के किसान

0: जोत का जरूरत है, कब पानी की,
1: में
0: अब
1: कौन चीज
0: सीधे
1: का
0: जो है
1: आवश्यकता है जी?
0: सेंसर और ड्रोन के जरिए वो डेटा प्रबंधन करके, डेटा संग्रह करके, और उस तकनीक के जरिए किसान को उसके ज्ञान को संवर्धित करके हम लोग बहुत चीज़ बदल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अब बदलने
1: बिल्कुल
0: की ओर है। अब भैया एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर इससे आज के किसान कदम नहीं मिलाएंगे, इस युग से, इस दौर से,
1: बहुत पीछे रह
0: तो
1: जाएंगे।
0: बहुत पीछे
1: बिल्कुल
0: रह जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: अगर आपको यह है कि हम वह है अनुभव हो, घाक के कहावत पर अब चले के समय बहुत कम रह गए।
1: बिल्कुल, तकनीक से हर कुछ
0: अब
1: तकनीक पे
0: तकनीक आधारित
1: बिल्कुल आ
0: दुनिया
1: जाएगा।
0: हो गई
1: बिल्कुल
0: है, खेती
1: बिल्कुल
0: तकनीक पर आधारित हो गई है।
1: ओजा सर, आप ये समय हम जानना चाहते कि जैसे आपका अनुभव है, आप क्षेत्र के बारे में भी जानकारी रखते हैं, तो वर्तमान में कृषक साक्षरता की स्थिति का समझ में आता है आपके?
0: ये देखिए, आपके बताएं साक्षरता की जो बात कर रहे हैं, एक विषय की जो पढ़ाई है, कृषि शिक्षा तमाम हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस साक्षरता, उस शिक्षा से आप बता दिए कि अब जो है कृषि में तकनीक का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। अब खेती क्या हो गई, जैसे कि सरकार ने बनाया स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, उसी तरह से अब बहुत तेजी से हम बढ़े हैं स्मार्ट खेती की तरफ। डिजिटल खेती ही, जैसे परिशुद्ध खेती कृषि, ये परिशुद्ध कृषि है, कृषि में डेटा और प्रौद्योगिकी और विश्लेषण का जो समन्वय है, संगम है। एक तो हो गया डेटा, कृषि के क्षेत्र में डेटा के साथ प्रौद्योगिकी और उसके साथ साथ विश्लेषण,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जब तीनों का समागम होगा, तीनों की त्रिवेणी जब बनेगी, डेटा भी होगा किसान के पास और किसान के पास कृषि आधारित उद्योग भी होंगे,
1: बिल्कुल
0: प्रौद्योगिकी होगी, और उसके वो आगे बढ़ाने के लिए विश्लेषण जब होगा तो विपणन होगा, बाजार मिलेगा, नए नए बाजारों का उद्भव होगा, नए नए बाजारों का गठन होगा,
1: जी
0: बाजारों का उदय होगा, कृषि क्षेत्र में नए बाजार
1: जी
0: विकसित
1: जी
0: होंगे।
1: जी
0: जब बाजार बनेंगे, बाजार विकसित होंगे और किसी को प्रौद्योगिकी में हम तब्दील करेंगे डेटा संग्रह के जरिए, तब हम अपने को एक सजग, संपन्न और सक्षम किसान और साक्षरता सही मायने में यहाँ सफल साबित हो।
1: बिल्कुल जैसे आप किसान के अंदर सुधार बदे, जैसे आप साक्षरता के बात करते हैं, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो एकरे प्रति जागरूक ना है, तो सुधार के संदर्भ में आप हमने किसान भाई से क्या कहना चाहते?
0: भैया देखिए, पहले हम बताए आपको कि हमारा जो सीमान है, हमारा जो खेत है, हमारा जो क्षेत्र
1: क्षेत्र
0: है,
1: है।
0: खास तौर से हमारे यहाँ छोटी जोत के किसानों की बहुलता है। छोटी जोत, एक एक बिस्सा का खेत हो,
1: जी।
0: ये कोनो इलाका में लोग उधर बिहार में कट्ठा बोलते हैं, हमारे यहाँ विश्वा बोलते हैं, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे किसान, मझोले किसान, जिनके पास 10 बिस्वा खेत है, 5 बिस्वा खेत है, तो कोई पालक की खेती करत हो, तो कोई धनिया का वही में
1: जी जी
0: उगा करके करत हो। अब वो 5 बिस्वा में धान अगर के खेती कोनो किसान करी तो वो अपनी जीविका को नहीं चला पाएगा। तो किसान अगर सजग नहीं होगा, वो किसान अगर समय के साथ और उन्नतशील और तकनीक आधारित खेती, मूल्य संवर्धन आधारित खेती नहीं करेगा, तो उस होड़ में वो कैसे अपनी जीविका चला पाएगा।
1: बिल्कुल
0: वही में भैया अनौनी हो, पठौनी हो,
1: जी,
0: लड़का है, गदेला है,
1: पढ़ाई
0: और
1: लिखाई सब
0: पढ़ाई
1: कुछ।
0: लिखाई है, उसी में दवाई भी है,
1: जी।
0: कहे उनके खांसी आवत हो, उनके बेरामी हो, उनकर कपार पीरात है, तो उनकर करिया कमर
1: तमाम
0: पीरात
1: तरह
0: हो,
1: की
0: तो
1: जरूरतें
0: इनके
1: हैं।
0: दवाई
1: जी
0: लिया हुआ, तो उनके जूता लिया हुआ, उनके छत्ता लिया हुआ, तो उसी में जो है बच्चे का टिफिन भी तो उसी से जुड़ा हुआ
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: सवेरे
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल
0: और सबसे बड़ी प्रियोरिटी है अब गांव के भी किसान भैया, देखिए कि गांव में नहीं, वो शहर में अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो जब अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो जब तक उनके पास उसी कृषि से उतना लाभ अर्जित नहीं करेंगे, तो फिर वो उनकी जो अर्थनीति है, उनका जेब है, वो जवाब दे जाएगा।
1: बिल्कुल कहे मतलब कि परंपरागत खेती से अब जो छोटे किसान हैं
0: वो
1: वो
0: अलग
1: बच्चा,
0: हट रहे हैं तेजी
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल, और यही में उनकर भलाई भी है, यही में उनके 2 पैसा का आमदनी भी है। जैसे तकनीक अपनावे चाहे हमारे किसान भाई, जे कि एकदम नहीं अपनावता, शुरुआत कौने स्तर से करें?
0: देखा ऐसा ना कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ा, पहले हम मैंने आपको बताया किसान भाइयों को
1: जी
0: कि सबसे प्रमुख है कृषि में तकनीक, कृषि शिक्षा।

0: किसानों को कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए तो प्रोत्साहित करती ही है,
1: जी
0: उनको विभिन्न नई नई तकनीकों से लैस करती है। अब देखा
1: बिल्कुल
0: भैया,
1: जानकारी आती है।
0: जापान के जो किसान हैं, जर्मनी के जो किसान हैं, देखा वहाँ वो सब चटपट मशीन लगा के वो खेत उनकर जोतात भी जात हो, बोवात भी जात हो, और में वो कौन हो पाट भी बनत जात हो एक साथ है।
1: बिल्कुल
0: आप देखत हो कि जितना हमारे यहाँ बड़े बड़े दूर से मैन पावर के लिए हम जूझते रहते हैं, अब वो सीधे किसान की आत्मनिर्भरता के लिए, किसान को सशक्त बनाने के लिए ऐसी नई नई तकनीक और मशीनें आ गई हैं कि अब वो जो 10 दिन का काम होता था वो 1 घंटे
1: एक
0: में हो
1: घंटे
0: रहा
1: में
0: है।
1: बिल्कुल।
0: सब छोटी छोटी मशीनें हैं कि कंधे पर रख करके सब निराई भी गुड़ाई भी और मड़ाई भी हो जाता
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है।
1: किसान भाई,
0: हाँ,
1: अगर तकनीक के पूरी तरह से अपने खेती में आप लोग उपयोग करवा तो
0: और
1: जैसा
0: एक बात और बता
1: जी
0: दें
1: जी
0: कि आपको कृषि पद्धतियों में सुधार और का सबसे बड़ा फायदा फसल की पैदावार बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में किसानों को बहुत ही सक्षम और उत्पादनशील के साथ साथ इस क्षेत्र में टिकाऊ और सशक्त बनाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि आपका पैर जो है उसमें इतना आपको मजा आने लगेगा, जब उसमें मिले आपको लाभ मिलेगा, तो
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: उसमें
1: हाँ
0: नए प्रयोग करेंगे, नवाचार करेंगे। तो आज की कृषि शिक्षा के साथ साथ नवाचार की मांग करती है।
1: बिल्कुल। और खेती किसानी के देखा व्यावसायिक रूप से अगर अपने ही है किसान भाई तो लाभ भी हुई। किसान भाई देखा आप लोगन के कौनों भी कृषि संबंधित यंत्र के प्रयोग करे के हो तो ओकर भी कृषि के यंत्र के जानकारी भी समय समय पर जहाँ पर आपका कृषि केंद्र हो वहाँ पे मिलत रहते तो ओके जरूर करत रहे। और भैया किसान भाई के और समृद्ध बनाओ बदे आप का कह चाहते।
0: देखिए, मैं खास तो देखिए यंत्र की बात तो हम लोग कर चुके हैं।
1: जी
0: यंत्र में जैसे सेंसर है, ड्रोन है,
1: जी
0: यंत्र में अब वो दोनों कसना और जो है फरुहा यंत्र अब पीछे बहुत पीछे छूट
1: बिल्कुल
0: गया
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: उसकी बात हम नहीं कर
1: बिल्कुल
0: रहे
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: भैया बिल्कुल
0: और उससे किसानों को जोड़ करके हम बहुत दिन तक रख भी नहीं सकते।
1: बिल्कुल
0: वो डोर
1: बिल्कुल
0: अब हमसे छूटने वाली है,
1: जी
0: छूट
1: जी
0: रही
1: जी
0: है।
1: जी
0: अब सीधे सीधे कृषि में प्रौद्योगिकी की प्रगति की बात हम कर रहे हैं
1: हाँ
0: है? तो कृषि शिक्षा किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों से बहुत तेजी से परिचित करा रही
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है
1: भैया बिल्कुल
0: जिसमें जो है सटीक खेती, रिमोट आधारित सेंसिंग शुरू हो गई है, रिमोट आधारित, इसको किसान भाई समझें इस बात को, और ड्रोन और आईटी आधारित कृषि के क्षेत्र में अनेक समाधान आ गए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: किसानों को तकनीकी प्रगति के बारे में अगर हम सही समय पर और सटीक जो है सूचना दें और अपनी कृषि प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए वो थोड़ा सा प्रयास करें तो बर्बादी से बहुत हद तक बच सकते
1: बचाव
0: हैं।
1: बचाव
0: जैसे
1: हो सकता
0: किसान
1: है।
0: भैया भाई लोग जितना परिश्रम करते हैं, पैसा लगाते हैं और जो है समय को वो करते हैं, तीनों अक्सर क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है, प्रकृति नहीं कभी साथ देती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इससे वो काफी बर्बादी से, जोखिम से बच सकते हैं, इससे बचा जा सकता है। और कृषि में समग्र दक्षता में सुधार करके हम किसान भाइयों को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं और आगे ले
1: बिल्कुल
0: जा सकते
1: बिल्कुल। अनूप ओझा भैया आप आयन और हमारे किसान भाइयों के साक्षरता के प्रति जागरूक हैं, आपके जागरूक करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
0: हाँ
1: भैया
0: घनश्याम भैया, हम तक कही भैया हो ये कृषक साक्षरता पे अनूप ओझा से आप बहुत बढ़िया बतियाया फरियाई के एक एक बात। अब भैया हो साक्षरता काहे जरूरी बा, आज के ज़माने में खेती में तो बहुत ही जरूरी बा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो
0: तो
1: भाई जो
0: किसान
1: कौनो
0: भाई
1: क्षेत्र
0: का
1: हो
0: हाँ
1: भैया, बिना साक्षर भय बिना जानकारी बिना पढ़ाई लिखाई के भैया जानकारी कैसे लेवा हो। कहो एक जमाना रहे कि गांव में चिट्ठी पत्री आ जाए तो लेके एक लोग दौड़े हो कि के पढ़वाक बा उसे पढ़वाई लिहे।
0: पढ़ावे
1: हाँ
0: मेरे हाँ
1: तो
0: हाँ
1: भैया हो समय जरूर बदलल भाईजू भैया।
0: नहीं नहीं बदलब भी जरूरी बा, समय परिवर्तनशील है परि और करे साथे साथे भैया खेती किसानी में भी बदलाव जरूरी बा। पहले देखा भजन खेती होत रही पूरे से होत रही भैया हो, हाँ राहट से होत रही, तो सिंचाई की सुविधा उतना ना ही रही, न उतना जानकारी रही,
1: ना ना
0: तो
1: बिल्कुल
0: बिया विचार जौन रहा परंपरागत रहा वैसे हो जात रही भाई, तो जौन कुछ पैदा हो जाए भाई, लेकिन यह है कि जौन पैदा होत रहा भैया वो शुद्ध होत रहा,
1: शुद्ध होत
0: प्रदूषित
1: रहे
0: ना होत
1: बिल्कुल।
0: रहा। आज जौन बाटे भैया हो व्यवसाय

0: खेती के जमाना बाद व्यावसायिक खेती में किसान भाइन के अपन भैया घर का खर्चा जैसे बताएं चलावे, वही फीस भी लड़कियन के दे के बाँटे है, दवा दमाई भी भैया, कपड़ा ओढ़ना सब कुछ व्यवस्था करे बाद व्यावसायिक खेती जब अलग तरीके से करी भैया तब दो पैसा आमदनी
1: देखा
0: होवे।
1: बैजू, हम तो कहब कि खेती से अनाज तो पैदा होत हो, अपने खेत अपने आंगन से जौन पूर्ति कर सके रोजी रोजगार में, वो तरह का व्यवसाय वो तरह का धंधा भैया जरूर करें।
0: सही कह भैया,
1: हम
0: खेती
1: कह
0: से जुड़ा हुआ जो धंधा होता है
1: हाँ
0: भाई, खेती से जुड़ा जो खेती में तो होता ही बा, खेती से जुड़ा पशुपालन का भी काम बा,
1: या
0: बाग
1: बिल्कुल,
0: बागवानी का
1: हाँ
0: भी
1: हाँ
0: काम बाटे, वही
1: बिल्कुल
0: में भैया हो और परिष्कृत करें तो भैया डेयरी में जोन बाटे है दूध का उपयोग खोआ पनीर भवा ये सब बनाए के, दही भ मट्ठा भ घी बनाए के और ज़्यादा फायदा ले
1: भैया,
0: सकती।
1: दूध का उत्पाद बना के हो बढ़िया लाभ लेत बाटन लोग।
0: लेता हूँ बहन।
1: अब तो देखा भैया जगह जगह डेयरी खुल गल हो, बढ़िया दाम मिल जात बा,
0: और दाम
1: सा
0: मिल जात बा तुरंत जा
1: तुरंत
0: तुरंत नहीं
1: हाँ पैसा
0: पैसा।
1: मिल जाता।
0: सबसे बड़ी चीज है भैया हो अब का कहते हैं सरकार से अनुदान भी मिलत बाटे है गौशाला खोले बरे जोन
1: बिल्कुल
0: बाटे।
1: बिल्कुल भैया, हर तरह से हो, खाली बस तनी सा अपन जांगर सकिलावे के जरूरत हो, विचार बनाओ के जरूरत हो, बैजू भैया अगर मिला जुला के कहें तो शुरुआत करे के जरूरत हो।
0: बस बस कह
1: हाँ
0: गया भैया, देखे में सुने में आवत ना कि एक गाय पाले रहा धीरे धीरे ओका फायदा देखान तो सौ सौ गाय तक हो गई लोगन में भैया हो, अगर इतना दूध हो जात बाटे तुरंत पैसा आई जात बाटे तो भाई खुशहाली यो भाई करे, फिर उसे जोन उत्पाद बाह भैया गोबर बाई सब बाटे ओकर अलग फायदा बा
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: तो भाई तभी कुछ होए जब हम तो खेती किसानी में लग के हर चीज़ के तरफ नज़र डाली का कैसे होए, अब पता चले कि भैया हो हम देश परदेश चला गए जितना कमातना है उससे ज़्यादा खर्चा
1: खर्चा
0: बाटे तो
1: होता
0: पता ही
1: है
0: नहीं चला, घर अलग से छूट जात बाटे है।
1: ये भैया हो, अगर तनी सा ना समझदारी से काम करा तो अपन खेती किसानी में ही भैया नौकरी फेल हो।
0: सही कहे भैया।
1: भैया हो हम कहीं दूरे जाके भैया दूसरे शहर में जाके घर परिवार से दूर जैसन कहत बाटा भैया जाके संघर्ष करत है, वहाँ भी परेशान है, और उसे निक बा हो हम कहीं घरे का पैदा भल साग सब्जी अनाज दूध दही खा के लाल बनल रहा।
0: भैया शुद्ध रहा तो
1: हाँ
0: भैया
1: अब भैया हो दो पैसा का आमदनी भी होत रही।
0: भैया घनश्याम देखा चले कि भी बेला हुई गई तो पंचन से आज्ञा ले जाए तो पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे पंचायत घर, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये प्रयाग आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का बढ़ा है विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को प्रदान किया जा रहा है समान अवसर। और प्रदेश में कल मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। महिलाएं रखेंगी कजरी तीज का निर्जला व्रत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया।

0: है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान में तैयार अंग प्रत्यारोपण, विस्तारित क्षमता के इमरजेंसी वार्ड और अन्य कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने संस्थान में विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष से कम समय में ही ये संस्थान चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा का बेहतरीन केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण यूनिट की शुरुआत एक बड़ी चिकित्सा सुविधा साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विगत 9 वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की एक नई श्रृंखला खड़ी की गई है।
2: आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है और जहां पे कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं, कोई सुविधा में आच्छादित नहीं हो रहा है लेकिन उसे लगता है कि उसे कुछ सहयोग की आवश्यकता है तो सीएम रिलीफ फंड में हम उसको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराते हैं, जहां से उसको सहायता मिल जाती है, वो अपना उपचार कहीं भी जाके करवा सकता है, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ इसने अपनी प्रगति को की है, वह अपने आप में ढेर सारे पेशेंट्स को इसकी सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
0: समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में मजबूत हुई चिकित्सा सेवाओं ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाने का काम किया है। समारोह को चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री रायबरेली के उचाहार में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिव भक्ति भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सनातन और हिंदू धर्म में जाति के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाता है, ये कर्म आधारित व्यवस्था है। इसमें सबका एक ही लक्ष्य धर्म और राष्ट्र की रक्षा करना है। रक्षा मंत्री ने आज आगरा में आयोजित खटिक समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि उनकी पहचान केवल किसी एक पेशे या किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं रही है। खटिक समाज धर्म के लिए समर्पित रहने के साथ उसकी रक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को समान अवसर देने के लिए काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़े।
3: हमारी सरकार अंत्योदय और सर्वोदय की भावना के साथ काम कर रही है। सर्वोदय यानी समाज में सभी लोगों का उत्थान होना चाहिए, यही हम लोगों की कोशिश है और अंत्योदय यानी समाज के अंतिम पीढ़ी पर जो बैठे हैं उनका भी उदय होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। आज उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है और सारे हिंदुस्तान में यह हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास के लिए जाना जा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च सांसद पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद जगदम्बिका पाल का आज बस्ती पहुंचने पर जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों और नीतियों पर जनता का विश्वास कायम है। उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
4: अभी आपने ब्रिक्स का सम्मेलन देखा है, जिस तरह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, लेकिन आज भारत विश्व में एक नई ताकत और एक नई व्यवस्था के रूप में उभर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में

0: दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है।
1: प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर आज गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन राष्ट्र सेवा, जनसेवा और अंत्योदय के संकल्प को समर्पित रहा है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होने वाला ये अभियान सेवा और जन कल्याण के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया है कि कल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रशिक्षण एवं प्रबंध अकादमी में आयोजित होने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला में 33 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, FLC सुपरवाइजर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए EVM और VVPAT मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर कल भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा, जिसकी सभी तैयारी पूरी हो गई है। गणेश उत्सव का संचालन करने वाले भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि गोमती के किनारे कल से 25 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव का पंडाल कोलकाता से आए करीब 60 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।
2: अमेरिका के न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर हमारा मुख्य द्वार का गेट बनाया गया है। 13,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है वातानुकूलित वाटर प्रूफ, और 6,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल बनाया गया है जहां भक्त लोग बैठेंगे, गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। हमारे अपने 60 आदमी लगेंगे जो कि महिलाएं और पुरुष, जो कि सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगे। मोदक कानपुर के प्रसिद्ध हलवाइयों के द्वारा बनाया जाएगा जो कि भक्तों को बांटा जाएगा।
1: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व कल मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा और निर्जला व्रत रखेंगी। इस मौके पर श्रावस्ती जिले के प्रसिद्ध विभूतिनाथ मंदिर में आसपास के जिलों के साथ ही नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्त आज से ही पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल मंदिर की ओर रवाना हो रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का बढ़ा है विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 6वें स्थापना दिवस समारोह में हुए यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा मुख्यधारा से छूटे हुए लोगों को प्रदान किया जा रहा है समान अवसर। और प्रदेश में कल मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी, महिलाएं रखेंगी कजरी तीज का निर्जला व्रत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
4: It's a very important game for us, and I think having a score on the board is always a positive, and that is the reason we decided as a group that we'll bat first.
5: Well, we all remember the 2024 final, Herman. How exciting is this opportunity to write a different ending tonight?
4: Well, I think every final is it's very important, and at the same time you have a lot of pressure, and I think today is the game about, you know, playing good cricket and staying in the moment and giving your best.
5: Any changes to your starting 11?
4: Yes, we do have one change. Today, Pratika is resting and the place of her, Kamalini, is back in the side.
5: Tell us more about the 18-year-old G. Kamalini, such a promising youngster.
4: Yeah, definitely. I think she has a lot of ability and hopefully she'll enjoy herself today.
5: And any target you have in mind?
4: Well, I think we are not keeping anything in mind. I think it's all about...

0: you know, using the batting power play and then see how much we can get in end of the day.
1: Go well.
0: Thank you.
1: In comes the Sri Lankan skipper. Chamari, had you won the toss, what would you have done?
2: If we won the toss, definitely we will bowl first, honestly. Because we're back in our skills. Last few games, we are bowling really good. So if we won the toss, we will decide but bowl first.
1: Chamari, you've led Sri Lanka with such great distinction over the years. What would a successful title defense tonight mean for you personally?
2: Actually, it's a really good thing for me as well as the team. As a country, we need to improve our cricket all the time. So we had good players. We stick with our plans and we try to play our positive cricket in the middle.
1: What is your playing combination looking like for tonight?
2: We are going with one change. Wish me back into the side for Sanjana Kavindi.
1: And what necessitates that change?
2: Because we are going with some kind of experience. I feel we need some experienced players, so we decide to go with Vishmi.
1: And what's a good total to restrict India to in the final?
2: Yeah, the thing is, they have good batters, but we prepare ourselves for the challenge. And first 6 overs is very crucial in this game. So if we can get few wickets early, I think pressure on them.
1: Have a good crack at this one.
2: Thank you. Thank you very much.
1: Well, the news from the center is India, led by Harmanpreet Kaur, have won the toss and decided to bat first.
3: रोज सुबह आपकी आंख खुले और चाय का गर्मा गर्म प्याला आपके सामने हो तो उस चाय की कोई कदर खास होती नहीं, लेकिन किसी एक दिन वो चाय का कप आपके सामने ना हो तो फिर उसकी कमी जरूर खलती है। भारतीय टीम का वुमेन्स एशिया कप में सफर कुछ इसी प्रकार का रहा है। 9 संस्करणों में 7 बार ये टीम चैंपियन बनी है, लेकिन 2024 में जब श्रीलंका के खिलाफ हार मिली तो वो हर एक भारतीय प्रशंसक को बहुत चुभी थी। क्या आज वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी? क्या भारतीय टीम एक बार फिर शिखर के पास पहुंच लड़खड़ाएगी, या फिर आज शाम खत्म होने तक भारतीय टीम बन जाएगी 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन? जानेंगे साथ में। आप सुन रहे हैं फ्री हिट 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ हैं मुदिता।
4: शुक्रिया दर्पण, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। द स्टेज इज सेट फॉर द वुमेन्स एशिया कप फाइनल एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। एक बार फिर से, बल्कि लगातार 3री बार भारत और श्रीलंका हैं आमने सामने एशिया कप के फाइनल में। एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन ऑल द मैचअप्स, की प्लेयर्स, टैक्टिकल शिफ्ट्स विद आर एक्सपर्ट्स। और हमारे साथ मौजूद हैं लतिका कुमारी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। बहुत स्वागत लतिका आपका। और साथ ही हैं उत्तरा गणेशन, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेरी वार्म वेलकम टू यू उत्तरा।
3: तो सबसे बड़ी खबर ये है, प्रतिका रावल जिनका ये जो प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में, वो थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रहा है लतिका, उनकी जगह टीनेज प्रोडिजी कहलाने वाली जी कामलिनी को जगह मिली है। कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को?
5: देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी इसी प्रोग्राम में कि जब प्रतिका रावल को आप मौके दे रहे हैं, नो डाउट वो क्रिकेटर बहुत अच्छी हैं, स्किलफुल हैं, लेकिन लगता है T20 में वो शायद इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाई हैं, और उन्होंने पिछले कुछ टाइम से T20 गेम्स खेले भी नहीं हैं। तो ये कहूँगी कि सही डिसीजन है कमलिनी का आज जो उनको मौका मिला है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी हम बात करें, चाहे WPL की हम बात करें, तो कमलिनी के पास वो एक्सपोजर है, वो एक्सपीरियंस है, जो कि आज के मैच में शायद उनको और हेल्प करेगा। और ये चेंज मैं पहले ही देख रही थी, लेकिन आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर खिला रहे हैं मैनेजमेंट और कप्तान, तो मुझे लगता है कि ये बेटर होगा। एक लेफ्ट हैंड बैटर भी आपके पास जुड़ जाएगा वहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं उनको थोड़ा सा अगर आपको प्रेशर में डालना है, तो आपके पास अगर इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन आता है तो वो भी आपके लिए बेटर होगा।
4: जी बिल्कुल उत्तरा, अभी तक जो भारत का सफ़र रहा है इस टूर्नामेंट में, वो कमोबेश थोड़ा आसान कहेंगे, या काफ़ी हद तक वन साइडेड मैचेस हमने खेले हैं। और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को पहले बांग्लादेश और उसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जिस तरह की टक्कर दी है, जिस तरह की चुनौती दी है, और उसके बाद उसी सेमीफाइनल में श्रीलंका ने जिस तरह का खेल दिखाया है, टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला है और उसे जीता है, तो डू यू फील उस मैच को देखते हुए कि दैट टुडेज मैच कुड बी इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द टूर्नामेंट?
6: डेफिनेटली। एंड अगर इससे पहले खेला भी होता है इंडिया ने, तो फाइनल इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। तो फाइनल में जो प्रेशर होता है, फाइनल का जो पूरा एटमोसफेयर होता है, बहुत अलग होता है हमेशा से। तो ये बिल्कुल सही है, और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा उतना मुश्किल नहीं रहा इंडिया का सफ़र। फॉर मी, नॉट हैविंग प्लेड अ कंपेयर

0: tough match is always a double-edged sword, because on one hand, of course, you've played and you've won easily, so you have the momentum, you have the confidence. At the same time, you have actually not been tested, and the one or two times that you were tested, your middle order did not perform the way it should have. Aapka Shefali Verma ko agar hata diya jaye, स्मृति ने सेंचुरी ज़रूर मारी थी, बट वो हांगकांग के साथ मारी है आपने. शेफाली को अगर हटा दिया जाए तो आपको उस तरह के स्टार्ट्स नहीं मिले हैं जो आपको चाहिए. एंड T20 में अ गुड स्टार्ट इज़ हाफ द बैटल वन, एंड द मिडिल ऑर्डर हैज़ एक्चुअली नॉट बीन टेस्टेड एज मच एज दे शुड हैव बीन. और वहाँ पर मुझे लगता है कि जो श्रीलंका है उनका, आई एम नॉट सेइंग कि उनको एडवांटेज है, but they've had more than one match winners in the four matches that they have played, which is why, despite the fact that Chamari Atapattu has not scored many runs, they still have managed to find someone or the other getting those runs in the middle. Lagatar unki middle order struggle kar rahi hai, lekin lagatar wo kahin na kahin se ek match winner dhoond ke la rahe hain. And as a team, that gives you a confidence that we are not dependent on any one player. So every time something goes wrong, they find a new hero. And that, for me, in a team event, is always a little bit of edge to the team.
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी. अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं.
2: जी, मैं ग्राम पोस्ट बोचेहा.
1: जी, अपना नाम बताएं.
2: बिट्टू कुमार सिंह.
1: जी बिट्टू जी, अपना सवाल पूछे.
2: जी, मेरा सवाल लतिका जी से खास करके, क्योंकि वो क्रिकेटर रह चुकी हैं.
1: जी, जी आप पूछिए. लतिका जी सुन रही हैं आपको.
2: जी, सवाल यह है कि ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा का सेटल क्यों चेंज किया जाता है बार बार, और दूसरी बात मिडिल ऑर्डर एकदम ही नहीं चल पा रही है इंडिया का.
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए. और यही हमारे लिए चिंता का एक विषय बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से, कि मिडिल ऑर्डर हमारा इस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है. और हम बात पहले करते थे जमीमा को लेकर नंबर 3 के लिए, फिर उसके बाद ऋचा घोष को हम देख रहे थे. वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि एक तरीके से मैच फिनिशर के तरह उनको हमने यूज़ किया. दीप्ति शर्मा जब भी टीम लड़खड़ाती है तो उनको भेजा जाता है. तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जो बल्लेबाज हैं, या तो आप उनकी प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं पीछे से ताकि आप उनको किसी भी नंबर पे भेजेंगे तो वो वहाँ जाकर आपको परफॉर्म करके देंगे. और T20 गेम एक ऐसा है जहाँ पर अगर आपके ओपनर्स अच्छे चलते हैं, उसके बाद ओवर्स पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी एक मैच में बची हुई है, वहाँ कौन इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा, तो इस हिसाब से भी आपके जो बैटिंग ऑर्डर है वो समटाइम्स चेंज हो जाते हैं. तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहाँ पर कौन से मैच के फेज़ में कौन सा बल्लेबाज जो है जाके अच्छा परफॉर्म करेगा. तो मुझे लगता है कि ये मैच कंडीशन है, मैच सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कब कौन कहाँ कैसे जा रहा है.
4: मैच सिचुएशंस और टीम की सोच क्या है ये मायने रखता है. लेकिन उस सोच पर वापस आते हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे कामेलिनी को जगह मिली है, प्रतिका को आपने ड्रॉप किया है, उतना हम देख रहे हैं श्रीलंका ने बिल्कुल इसका उलट किया है. उन्होंने संजना काविंदी जो कि युवा प्रतिभा है उनको हटाया है, और वो कह रहे हैं कि वी वॉन्ट टू बैक एक्सपीरियंस. हसीनी परेरा ने बहुत लंबे समय से T20 क्रिकेट में कुछ खास किया नहीं. पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई, एकमात्र मुकाबला मिला जिसमें शून्य उन्होंने बनाया, लेकिन आज उनको वापस लाया गया है. विश्मी गुणरत्ने को वापस लाया गया है. दे आर बैकिंग एक्सपीरियंस. हाउ डू यू लुक एट दैट?
1: दर्पण, इस सवाल पे हम आते हैं. फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो पहले हम उनका सवाल भी ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले. जी, अपना
5: नमस्कार मैडम.
1: नमस्कार.
5: हैदराबाद से बात कर रहा हूं मैं.
1: जी, अपना सवाल पूछे
5: मैडम. एक्सपर्ट से मैं पूछना है, बैटिंग लेने के जगह फील्डिंग में तो मेरे को चांसेस अच्छा जी विन होने का चांसेस ज्यादा रहता. और क्या बोलता अपना टीम बहुत चांसेस बहुत छोड़ दे रही है, मिसेज हो गया, फील्डिंग बहुत खराब ही है, उसको जो सुधरना बहुत अच्छा है मैडम.
1: जी बिल्कुल, उत्तरा आप इसका जवाब देना चाहेंगे.
0: देखिए अगेन, जो हरमनप्रीत ने कहा, कहीं ना कहीं उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि एक तो फाइनल है तो आप नहीं चाहते कि आपकी बैटिंग किसी भी तरह के प्रेशर में खेले. तो जब आप पहले बैट करते हैं तो टारगेट का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट

0: आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं उस तरह से चल पाई है, तो एडिंग एक्स्ट्रा प्रेशर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे. फ्री होके खेलेंगे, टारगेट सेट करके खेलेंगे, और अगर आपको अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पे भरोसा है कि आप जितना भी टारगेट दें उसको डिफेंड कर पाएंगे, सो फाइनल के हिसाब से अपनी टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और फ्रीली खेलने देने के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बैटिंग करने का फैसला बेटर था थोड़ा सा इनका. और जो दूसरा उन्होंने कहा फील्डिंग का, उस पर तो खैर कम, जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, बिकॉज T20 जैसे फॉर्मेट में अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो अगर आपके सामने थोड़ी सी भी मजबूत टीम होगी तो वो आपको के आप दे विल मेक यू पे द प्राइस फॉर इट. अभी तक इंडिया को वो नहीं झेलना पड़ा है क्योंकि उस तरह की टीम नहीं मिली है इनको सामने खेलती हुई, बट आई होप के पिछले मैच और इसके बीच में जो इनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है उसमें इस चीज़ पे ज़रूर बात की हो टीम मैनेजमेंट ने कि आप फील्डिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं.
1: चलिए, टॉस पर हमने सुना कि चामरी अच्छापचू ने कहा द फर्स्ट सिक्स ओवर्स आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, श्रीलंका के लिहाज से भी, भारत के लिहाज से भी. भारत के लिए स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ओपन करेगी. और वापस स्मृति मानधना पर आते हैं लतिका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, महिलाओं के क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने इनसे ज़्यादा रन बनाए नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं फैन बेस में एक वो चर्चा रहती है कि बड़े मुकाबलों में शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही. जैसा अभी उत्तरा ने भी कहा, जो सेंचुरी आई वो हांगकांग के खिलाफ आई, पिछले दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ और सेमीफाइनल बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ रन नहीं बने. आप कैसे देखते हैं इसको?
2: हाँ, देखिए, कोई भी प्लेयर होता है और ख़ासकर स्मृति जैसा प्लेयर जिसने काफ़ी लंबा सफ़र अभी तक वुमेंस क्रिकेट में अपना निभाया भी है, और हमने देखा है कि साल दर साल वो इम्प्रूव करते हुए दिखाई दिए हैं. जो नंबर ऑफ़ रन्स हैं उनके बल्ले से ज़्यादा निकल रहे हैं. आप अगर एबिलिटी देखें उनके सिक्सेस लगाने की या बिग शॉट्स लगाने की, वो पहले इतनी नहीं दिखती थी, जो आज के टाइम में उनके बैटिंग में ये फ़र्क दिखाई दे रहा है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है के जिस तरीके से वो रन बनाती हैं वहाँ पर उनकी जो स्किल है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, और अब जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे. एक कोई भी प्लेयर होता है, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, वो पर्टिकुलरली डे पे किस तरीके से, किस माइंडसेट से वो खेलना चाहता है, कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है या किस तरीके से देखता है. T20 खासकर एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, खासकर जो ओपनर्स होते हैं, पावर प्ले का इतना प्रेशर रहता है कि इस पावर प्ले को हम किस तरीके से मैक्सिमाइज जो है रन्स ले सकते हैं. तो वहाँ पर कई बार आपको एग्रेशन के साथ खेलना होता है, जैसा कि शेफाली वर्मा खेलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ भी रखनी पड़ती है कि सामने जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके से गेंदबाजी वहाँ कर रहे हैं, और जो विकेट है वो किस तरीके से खेल रहा है. जो सरफेस है कई बार उसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप खुल के अपने वो शॉट्स नहीं खेल पाते. स्मृति की यही बात करूँगी, ओवरऑल ग्लोब में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है, और जो टाइमिंग के उस्ताद वो बन चुकी हैं. जिस तरीके से वो बल्ले से गेंद को जब टच करती हैं तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में, और बाउंड्री के बाहर भी जाता है. तो लगता है कि आज के मैच में उनसे काफ़ी उम्मीद है कि एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर शेफाली और स्मृति देंगे.
3: जी लतिका, आपने बात करी शेफाली की, तो शेफाली जब तक क्रीज पर हैं वो पेस कम नहीं होने देती हैं. बांग्लादेश के अगेंस्ट जब सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, पिच भी बॉलर्स को मदद कर रही थी, तब 64 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है. लकी भी रही उस दिन, लेकिन कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. एंड शी इज़ अ फियरलेस बैटर. ODI वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी और नाउ शी हैज़ बिकम इररिप्लेसेबल. उनके ग्राफ को आप कैसे देखती हैं?
2: देखिए, मैं बार बार कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो उनके लिए यही कहती हूँ कि पिछले जब वो ड्रॉप हुए थे भारतीय टीम से, उसके बाद लगातार उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे खेला है. वहाँ पर उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत मेहनत की है, और जिसका उनको भरपूर फ़ायदा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप पे उनको कॉल आया, वहाँ पर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए उनका परफॉर्मेंस आई. तो ये एक कमबैक जो उनका रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो अहमियत जानती हैं कि जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं और उसके बाद जब आप टीम में आते हैं तो वो डिफरेंस जानती हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है. इस शेफाली वर्मा में हमें वो चेंज दिखाई दिया है कि एग्रेशन के साथ साथ आपको लंबी पारी कैसे खेलनी.
1: जी, और सिमिलैरिटीज अगर देखें, इफ वी ट्राई एंड ड्रॉ पैरेलल्स, उतरा द सेम पैरेलल टू जी कामलिनी, again a teenage prodigy, and again she has been drafted into the side in the big finale, has played only one

0: game for India before this. How do you see it panning out for her today? And do you see her batting at number 3 in place of Pratika, or do you see a change in the batting order?
1: सी जैसा लतिका ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो स्पेशली T20 फॉर्मेट में इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन इज एट दैट मोमेंट. अगर स्मृति और शेफाली ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया बोथ इन टर्म्स ऑफ द रन रेट एंड द रन स्कोर्ड, तो हो सकता है कि आप जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव आपकी लाइनअप है उस हिसाब से आएँ कि हरमन आ रही हैं, फिर धीरे धीरे अब बाकी आ रहे हैं. और अगर वो जल्दी बाई चांस विकेट गिर गए और आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा रन बनाने की ज़रूरत है, एक थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आप हो सकता है कि ऋचा घोष को भी ऊपर भेज दें. दीप्ति शर्मा को हमने देखा ही है, 3 से लेकर 10 तक वो किसी भी नंबर पर आती हैं और हर पोजिशन पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं. तो ऑर्डर का तो आप नहीं बता सकते कि किस तरह से जाएगी चीजें, बट हाँ, उसको अगर टीम मैनेजमेंट ने एक पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठा के फाइनल में ड्राफ्ट इन किया है, देन शी दिस इज हर चांस टू प्रूव दैट शी इज समवन स्पेशल एंड टू प्रूव दैट द टीम मैनेजमेंट इज राइट इन ट्रस्टिंग हर ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ प्रतिका रावल. टीम मैनेजमेंट में एक रिस्क लिया है, ये बिल्कुल सही है, बट उन्होंने रिस्क ज़रूर लिया है, बट दिस इज़ अ रिस्क विच आई थिंक दे हैड टू टेक, क्योंकि आपको इसके बाद फिर मौका मिलेगा नहीं. ये लास्ट मैच है, इसमें अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे. एंड प्रतिका रावल का जिस तरह से पिछले कुछ समय में फॉर्म रहा है, आप अगर उनको खिलाते तो हो सकता है वो चल जाती, लेकिन आप अगर किसी और को चांस देना चाहते हैं तो इसके बाद कब देंगे, क्योंकि इसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट कब खेलेगी टीम. एशियन गेम्स में ज़रूर जाएगी, लेकिन वहाँ पे टीम में क्या चेंजेस होंगे, किसको एक्चुअली खेलने का मौका मिलेगा 11 में. एग्जैक्टली. और वहाँ पे टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में उतरेगी ग्राउंड पे, आपको टोटली 2 मैच मिलेंगे 3 मैच मिलेंगे खेलने के लिए, तो इसके बाद आपको नहीं मिलता वो मौका. जहाँ तक कमलिनी की बात है, गिविंग हर अ चांस आई थिंक इज समथिंग विच द मैनेजमेंट वुड हैव थॉट अबाउट, बिकॉज दे नो दैट शी हैज़ द एबिलिटी टू मेक अ चेंज टू दिस टीम.
0: एंड टॉकिंग अबाउट मेकिंग चेंजेस, इट्स आर कॉलर्स हु मेक अ डिफरेंस टू दिस शो. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके, मुद्दे था, आइए उनसे बात करते हैं.
2: जी, अपना नाम बताएं और आप कहां से शो में शामिल हो रहे हैं.
3: मेरा नाम वाई वेंकट रेड्डी, गांव लकोरम, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से बोल रहा हूं.
2: नमस्कार रेड्डी जी, कैसे हैं आप और अपना सवाल हमारे साथ आप शेयर करिए.
3: मैं अच्छा हूं. मेरा सवाल ये है, कंप्लीटली फ्लॉप होने वाले भारती फूलमाली को खिलाया, यूजफुल खेलने वाले प्रतिका रावल को बिठाया, ये कैसा चेंज है, ये मेरा सवाल है.
0: चलिए, धार धार प्रश्न आया है. लतिका, सीधा आपकी तरफ बात करेंगे. भारती फूलमली क्या सही में फ्लॉप हुई है या फिर उनको मौके उस तरह से मिले नहीं है? पिछले मैच में जब बल्लेबाजी करने आई, एक गेंद बची थी, उसमें भी वो रन आउट हो गई, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए खेल रही थी, ये कहना उचित होगा, या फिर आपको लगता है कि वो मौके भुना नहीं पाई है?
4: हाँ, देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है भारती फूलमाली के लिए कि उनको वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, वो समय नहीं मिल पा रहा है टीम में जाके. आप किस तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं, वहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. देखिए, 2 या 3 बार तो वो रन आउट हुई हैं, जिसकी वजह से उनको मिला ही नहीं दूसरे को बचाने के लिए, जो कि पहले से ही बल्लेबाज खेल रहा है. तो ये सिचुएशन उनके साथ कुछ इस तरीके से घटी है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं खेल रही हैं. जितना मौका मिला उन्होंने खूब कोशिश भी की है, और उनको हमने देखा है WPL में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स उनके बल्ले से हमेशा आई है, जब उनको नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा खेलने को मिली है. तो मुझे लगता है कि इस चेंज में ऐसी कोई ख़ास ख़राबी नहीं है, क्योंकि ये चेंज मैं काफ़ी पहले देख रही थी. आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड मैच के बाद मैं ये चेंज देख रही थी. कोई नहीं, फाइनल में आया है, इट्स ओके. लेकिन कमलिनी भी कोई कम प्लेयर नहीं है. पिछले डोमेस्टिक सीजन में हमारे ही साथ दिल्ली के साथ मैच था और उन्होंने 150 स्कोर किया था, और अकेले अपने बूते पे उन्होंने मैच जिताया था, और वहाँ बड़े बड़े हिट्स लगाए थे. तो काबिलियत उनमें भी है, और वो भी उसी तरीके की शॉट्स लगा सकती हैं. और T20 एक ऐसा गेम है, अगर वो नंबर 3 पे आती हैं तो काफ़ी कारगर साबित होंगी. यस, प्रेशर ज़रूर होगा, एक फाइनल में आपको सीधा मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद

0: आपको अगर अपना सारा निकाल के देना है कि आप प्रेशर नहीं लेते हैं और इस तरह के प्रेशर में आप निखर के आते हैं एज अ प्लेयर, तो वो चीज़ आज बहुत बड़ा मौका है कमलिनी के लिए अगर वो बल्लेबाजी के लिए जल्दी आती हैं तो।
1: ऑन दैट नोट, बड़े संक्षेप में, क्या आप भारती फूलमली को बड़े फाइनल में जल्दी भेजने की वो रिस्क उठाएंगी?
0: नहीं, आज तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका बैटिंग ऑर्डर है मुझे लगता है वो छठे सातवें के बाद ही वहाँ पर सूट करती हैं, क्योंकि ऋचा घोष, दीप्ति, अभी कमलिनी है, फिर हरमन है, तो इनके बाद ही अगर वो आती हैं तो मुझे लगता है ठीक है,
2: क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है। और लतिका, आपने भी कहा कि आप पहले दूसरे मैच में ही ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी भारत ने प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं किए, इस टूर्नामेंट में पहली बार कोई बदलाव किया है। वहीं श्रीलंका हैव चेंज देयर प्लेइंग 11 इन एवरी सिंगल गेम। व्हाई डिड इंडिया शाय अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड चेंजिंग द टेम्पलेट?
0: देखिए, मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर ये चेंजेस आप एक अपने साथ कुछ प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और यंग प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और काफ़ी समय से अपने साथ उनको ट्रैवल करा रहे हैं, तो ये इस तरह के टूर्नामेंट, एशिया कप हो गया या एशियन गेम्स हो, ये इस तरह के टूर्नामेंट्स ही हैं जो उनको एक्सपीरियंस देगा टीम के साथ कि वो किस तरीके से अपना खेल है जो दिखा सकते हैं, क्या काबिलियत है उनमें वो दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट्स, जब बड़ी आप किसी टूर्नामेंट तैयारी कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आपके साथ जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले।
1: चलिए, भारतीय बल्लेबाजी की हमने बात की, थोड़ी सी बात श्रीलंका की गेंदबाजी की भी करते हैं। उत्तरा, एक पेसर है उनके पास मिताली अयोध्या जो स्लिंगी एक्शन के साथ गेंदबाजी करती हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, चामुदी प्रबोदा हैं, सुगंधी कुमारी है, और उसके अलावा चामरी अट्टापट्टू, जिनका आपने कहा बल्ला खामोश रहा है, गेंद से वो कमाल करती हैं, ये 7 भी लिया पीछे उन्होंने। इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदार दाज कौन होने वाला है?
3: देखिए, आपने नाम बहुत सारे लिए हैं, पर जब बड़ा मैच आता है तो बड़े खिलाड़ियों पे स्पॉटलाइट रहता है, और जो पिछला भी फाइनल 24 में खेले थे वो एक तरह से श्रीलंका की जीत का बहुत बड़ा श्रेय जो था वो चमरी अट्टापट्टू को ही गया था, और वो जितनी बड़ी प्लेयर हैं उनके लिए इतना लंबा पीरियड उस तरह से रन बनाए बिना निकलना शायद उनके लिए भी ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होगी। वो एक जेन्युइन लेजेंड वाला जो कैटेगरी आता है उसमें आती हैं वो, विमेंस क्रिकेट के मॉडर्न लेजेंड्स के हिसाब से, और मुझे लगता है जब बड़ा मैच हो और बड़ा प्लेयर उस तरह से अभी तक ना कर पाया हो तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ होती है अपने आप को प्रूव करने की और अपनी टीम को जिताने की, वो शायद किसी यंगस्टर से हमेशा ज़्यादा होती है, बिकॉज शी नोज़ दैट द टीम डिपेंड्स ऑन हर फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कैप्टेंसी।
2: जी बिल्कुल। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि लो स्कोरिंग टूर्नामेंट रहा है, केवल 2 स्कोर 150 के पार गए, और दोनों बार ये कमाल भारतीय टीम ने करके दिखाया है। तीसरी बार सेमीफाइनल में भी 149 तक तो वो पहुंच ही गए थे, दूसरी कोई भी टीम यहाँ तक नहीं पहुँची है। डज दैट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन श्रीलंका?
0: मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जितना अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और कह सकते हैं कि हर एक प्लेयर परिपक्व है वहाँ पर अपने आप को शो करने के लिए, तो श्रीलंका ज़रूर ये सोच रही होगी कि आज किस तरीके से स्मृति मंदाना, फिर शेफाली वर्मा, फिर कमलिनी जो ऐड हुई हैं, फिर हरमन है, फिर दीप्ति है, तो एक लंबी लिस्ट जो है उसके सामने कैसे आप टिकने वाले।
2: जी फटाफट से उत्तरा और लतिका, क्या स्कोर प्रेडिक्ट करेंगे आप भारतीय टीम के?
3: देखिए, क्योंकि टीम पहले बैटिंग कर रही है इंडियन टीम, तो समवेयर अराउंड 140 मुझे लगता है शुड बी अ वेरी गुड स्कोर।
2: लतिका?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए ये टूर्नामेंट पूरा लो स्कोरिंग रहा है, तो आई थिंक 150-140 के आसपास बन जाएगा, तो बहुत ही
2: ठीक है। तो बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं अब, और इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अब आपके साथ जुड़ेगी हमारी कमेंट्री टीम। लतिका, उत्तरा, बहुत शुक्रिया आपका, हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स शो में। नमस्कार।
4: फर्स्ट बॉल 20।
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
6: नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मैं संजय बैनर्जी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत और श्रीलंका इस बड़े मुकाबले में एक दूसरे के सामने हैं। एशिया कप का T20 का ये फाइनल मुकाबला है जो दुबई में अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है, और जहां तक इस मुकाबले का सवाल है, आप जानते हैं दोनों टीमें अपराजित

0: और दोनों ने बिना किसी मैच को गवाए फाइनल तक जगह बनाई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया आप प्रदर्शन कह सकते हैं श्रीलंका का। पाकिस्तान ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में कुछ हद तक परेशान ज़रूर किया था, लेकिन इसके बावजूद अंततः श्रीलंका ने बाजी मारी और फाइनल में जगह बनाई। जहां तक दुबई का सवाल, हमारे प्रोग्राम में आप सुन चुके हैं कि यहां का विकेट थोड़ा सा धीमा है, रन्स कम बन रहे हैं और इस लिहाज से 140-45 के आसपास का स्कोर एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता है इस मैदान के ऊपर। टॉस भारत ने जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब देखना है कि भारत श्रीलंका के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश करने वाला है। और अब वक्त है हमारे पास स्वागत करने का अपने मित्र मुनीश जॉली का। वेलकम मुनीश।
1: थैंक यू सो मच संजय दा, एंड आई होप ऑल द लिसनर्स अराउंड द कंट्री एंड आल्सो पीपल हु आर ट्यून्ड इन विद इन आर कीपिंग वेल। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग गेम, इट्स अ सुपर संडे, बोथ मेन एंड वुमेन टीम आर प्लेइंग, बट बिगर गेम हियर एट दुबई इज बिटवीन द इंडियन वुमेन एंड द श्रीलंकन वुमेन, ऑफ कोर्स वाइंग फॉर द ऑनर्स फॉर द एशिया कप। इंडिया मेकिंग वन चेंज दादा, surprisingly the words that I heard from Harmanpreet was that Pratika Rawal has been rested, and that word rested in a final doesn't come in so easily, not able to digest that easily. Kamalini though comes in, but I think that's a strategic change that they've made. Your views on it?
0: Munish, ye pehla parivartan kiya hai Bharat ne, jitne matches khele hain Dubai ke andar ab tak unchanged team ke sath utre hain, pehla parivartan kiya aur wo bhi final mein kiya। अब इसकी वजह क्या थी, क्या प्रतिका रावल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत संतोषजनक नहीं था, उन्होंने 56 रन बनाए थे 4 मैचेस में, तो ऐसे में उन्हें परिवर्तन के तौर पर बाहर रखना और कमलिनी को लाना एक बड़ा जोखिम भरा फैसला हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं ये क्रिकेट है और यहाँ पर जब आप रिस्क लेते हैं तो कई बार आप बेहतर भी करते हैं। अंपायर्स अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने में बस अब चंद लम्हे बाकी हैं। भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है और जाहिर है 8वीं बार भी उसकी निगाहें खिताब पर होंगी।
1: एब्सोल्युटली, एंड बोथ द ओपनर्स कमिंग आउट इन द मिडल, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, द लेफ्ट एंड द राइट हैंड कॉम्बिनेशन। बट इट्स अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर दुबई। द टेम्परेचर्स ऑफ कोर्स, इट्स अ क्लियर वेदर, नो चांसेस ऑफ रेन, एंड टू वुमेन हु वॉक ऑन इन द मिडल विद अ ट्रेमेंडस स्ट्राइक रेट व्हिच यू वर मेंशनिंग ऑफ एयर आल्सो दादा, 126 फॉर स्मृति मंदाना, and of course 176 matches with over 4600 runs, 8 more runs to reach to 4700 runs in her T20 career, but Shefali Verma is equally good.
0: Bilkul kam umr mein hi Shefali ne jis tarah se apne aap ko pukhta kiya hai bharatiya team ke andar uski tareef honi chahiye। और शुरू में शेफाली सिर्फ बल्ले से अपना जौहर दिखाती थी, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से लगातार वो गेंद के साथ भी बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं। मिथाली अयोध्या गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी श्रीलंका के लिए, ये उनका 11वां मैच है, कुल मिलाकर 10 विकेट ले चुकी है। अगर तेज़ गेंदबाजी का जिक्र किया जाए तो श्रीलंका के पास एक लौता तेज गेंदबाज मिथाली के तौर पर है।
1: एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट स्लिंग arm action just like Malinga. The other way you surprised, and it's a difficult action though.
0: बिल्कुल, बहुत मुश्किल एक्शन होता है, लेकिन जब आप उस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो कई बार वो जो बैटर होता है उसे परेशान भी करता है, क्योंकि आप उसे पढ़ नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की गेंदों को। लेकिन सामने जो दो बैटर्स हैं भारत के, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर्स में उनका शुमार है। पहली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बहुत इत्मीनान के साथ प्लेस किया, खाता खोला 4 के साथ, तो भारत ने खाता खोल लिया है इस मुकाबले के अंदर। स्मृति मंदाना के बल्ले से निकला ये पहला चौका और बहुत इत्मीनान के साथ ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को प्लेस किया 4 के लिए।
1: And what a timing! She resembles Sourav Ganguly so much, and I've said that in a number of occasions, even while the live commentary. Of course, Smriti Mandhana, Shefali Verma, G. Kamalini is going to come at number 3. Harmanpreet Kaur, Richa Ghosh, Bharati Fulmali, Deepti Sharma, Prema Rawat, Kranti Gaur, Sri Charni, and Nandini Sharma are the women in 11.
0: Mithali ki game off stump ke bahar, aur jaisa ke aap jante hain, thoda sa slinging action hai, aur gend ki disha अक्सर स्टंप के ऊपर नहीं रहती। मिताली की अगर आप गेंदें लगातार देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखने में ज़्यादा यकीन रखती हैं। और फाइनल है, फाइनल में भारत खेल रहा है, तो दर्शकों की संख्या कैसे कम हो सकती है?

0: पिए, खचाखच तो नहीं, लेकिन हां कई जगहों पर ठीक ठाक भरा हुआ यह स्टेडियम दुबई में। श्रीलंका और भारत फाइनल खेलते हुए, भारत अब तक हर फाइनल में भारत ने जगह बनाई है इस टूर्नामेंट के। मिताली की अगली गेंद शेफाली के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद, वेरिएशन के तौर पर उन्होंने हल्का गेंद की गति को कम किया, चकमा देना चाहती थी शेफाली को।
1: Absolutely, and the ball keeping low also, Dada. That's very interesting. Just to read out the 11 of Sri Lanka: Himesha Dulani, Chamariya Thapathu, the captain, Vishmi Gunaratne, Hasini Pereira, Har Stitha, Samara Vikrama, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushini Nirthyangana, Sugandhika Kumari.
0: पैर पर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी, और शेफाली ने हल्के से केवल गेंद को थपथपा दिया। शुरुआती लम्हे हैं, कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेलना चाहते। एक परिवर्तन भारत ने किया, एक परिवर्तन श्रीलंका ने किया। श्रीलंका का जो परिवर्तन है वो संजना काविंदी की जगह विश्मी गुणरत्ने को टीम के अंदर लाया गया है। चल नहीं पाई संजना का।

0: तौर पर उन्होंने हल्का गेंद की गति को कम किया, चकमा देना चाहती थी शेफाली को।
1: Absolutely, and the ball keeping low also, Dada. That's very interesting. Just to read out the 11 of Sri Lanka: Himesha Dulani, Chamariya Thapathu, the captain, Vishmi Gunaratne, Hasini Pereira, Har Stitha, Samara Vikrama, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushini Nirthyangana, Sugandhika Kumari.
0: पैर पर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी, और शेफाली ने हल्के से केवल गेंद को थपथपा दिया। शुरुआती लम्हे हैं, कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेलना चाहते। एक परिवर्तन भारत ने किया, एक परिवर्तन श्रीलंका ने किया। श्रीलंका का जो परिवर्तन है वो संजना काविंदी की जगह विश्मी गुणरत्ने को टीम के अंदर लाया गया है। चल नहीं पाई संजना काविंदी, कुल मिलाकर 29 रन बनाए थे उन्होंने 4 मैचेस के अंदर। इस ओवर की 5वीं गेंद, और इस बार स्टंप पर। आमतौर पर आप उनकी गेंदों को स्टंप पर नहीं देखेंगे, ये पहली गेंद थी जो स्टंप पर आई थी, और इसे रक्षात्मक तरीके से बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया और सीधे खेला। कप्तान चामरी अटापट्टू, इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला नहीं बोला, और ये परेशानी का सबब है श्रीलंका के लिए। चामरी अटापट्टू, जिनकी बल्लेबाजी खौफ पैदा करती है विपक्षी टीम के मस्तिष्क में, वो चल नहीं पाई। आखिरी गेंद, ये भी स्टंप पर, और इस बार रक्षात्मक तरीके से, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती शेफाली शुरुआती ओवर में, और इस तरह से 5 रन पहले ओवर में खर्च किए हैं।
1: Well then, the first over, and surprisingly 4 dot balls for Shefali Verma, and she's just warming up. I find that's good, because we've seen on a number of occasions Shefali just going after the bowler in the very first or the second ball she faces. But good to see that maybe Amol Mojumdar has worked a bit, spoken to Shefali Verma. Just to complete, Chamudi Pramoda and Mithali Ayodhya are the other two players who fill up the final 11 for Sri Lanka. But Dada, the 17-year-old Chamudi Pramoda, the left-arm spinner, very impressive. And a lot of women cricketers in India said that she's got a baby face. I've heard that a long time back when Sachin Tendulkar made his debut for the Indian team, that he's a baby face cricketer.
0: Bilkul, bilkul, aapne ekdam theek kaha hai. Aur unko dekh kar kaisa lagta hai ki koi bachcha, स्कूल का कोई बच्चा यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, और कमाल की गेंदबाजी करती हैं। कविशा दिलहारी अब आई हैं नए ओवर के लिए। ये दूसरा ओवर होगा श्रीलंका का। भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जाहिर है भारत के सामने एक चुनौती है, कम से कम 145-150 के आसपास का रन रखना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर इंतजार किया, बैकफुट पर गई और कवर की दिशा में बढ़िया खेला, गेंद को ड्राइव लगाया 4 रनों के लिए। तो दूसरा चौका भारतीय पारी में स्मृति के बल्ले से निकलता हुआ।
1: Oh boy, that's experience, isn't it? Smriti Mandhana just watching the ball very carefully, goes onto the back foot, and that typical back foot punch, she times it from the middle of the bat.
0: बढ़िया स्ट्रोक, और गैप्स भी उन्होंने पहले से तलाश लिए थे कहां पर गेम को खेलना है। भारत का तिरंगा दर्शक दीर्घा में लगातार लहराता हुआ इस उम्मीद में कि क्या भारत 8वीं बार खिताब जीतने वाला है। और इस बार फ्लाइट करने की कोशिश ही, ड्राइव किया था हाफ बॉली पर लेकर के, और गेम को फील कर लिया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने बहुत आतिशी शुरुआत नहीं की। आमतौर पर जिस तरह की शुरुआत के लिए दोनों बैटर जानी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा, अगर आप इस टूर्नामेंट के तमाम बैटर्स को देखें तो ये नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। इनका स्ट्राइक रेट, शेफाली वर्मा का 171, स्मृति मांधना का 169, लेकिन आज बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवर में, और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, एक और चौका। पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, बैक पर स्क्वायर लेग की दिशा में बढ़िया चौका खेला है शेफाली ने। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 14 रन बिना किसी नुकसान के।
1: And what a shot that was! It was a flighted delivery coming around the wicket, and she went for that that sweep slog over the deep square leg boundary for a four. It was just 2 bounces before the ball reached to the boundary and gets the second boundary of the over for India.
0: खर्चीला ओवर है, अब तक 9 रन दे चुकी कविशा। ओ, ये तो फुल टॉस डाल गई, हवा में थी, पावर प्ले का एडवांटेज मिल सकता था, और इसीलिए उन्होंने उछाल करके खेला। 2 खिलाड़ी उसके पीछे थे, लेकिन किसी की भी पहुंच में वो गेंद नहीं थी। रन यहां पर मिले हैं, और हमारे जो स्कोरर हैं रणजीत सिंह रावत और स्टैटिस्टिशियन अजय गोयल, अब धीरे धीरे वार्म

0: थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रही थी और सिर्फ शेफाली को सिर्फ अपना बल्ला चलाना था। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चार।
1: What a shot then. It was a short delivery and I think that was just a warm-up delivery for the Sri Lankan captain. Short enough for Shefali, who's already set and hits that ball to perfection. Though there was a fielder, but it was hit on the right side and a very powerful shot.
2: सबसे ज्यादा विकेट चामरी के नाम है श्रीलंका के लिए।
0: एक और स्ट्रोक और इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। गैप्स जितनी शानदार तरीके से उन्होंने निकाले, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर के गेम फील हुई। कवर पर पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में से यह स्ट्रोक खेला था, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शेफाली अब पहुंच गई हैं 24 पर। 15 गेंदों में 24 रन, स्मृति मानधना 11 गेंदों में 17 रन बना चुकी हैं। चामरी अट्टापट्टू इस बार विकेट तो जरूर उन्हें मिले, लेकिन बल्ले से रन नहीं बने और ये श्रीलंका के लिए परेशानी है। और ये एक और स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए, ये पहला छक्का शेफाली के बल्ले से। चामरी अट्टापट्टू जैसे ही आई, अचानक आक्रामक हो गई शेफाली। कुल मिलाकर 12 रन 3 गेंदों में अट्टापट्टू के, कहीं कोई परेशानी नहीं। फ्लाइट कराने की कोशिश, हाफ बॉली पर लिया और अच्छी बैकलिफ्ट के साथ गेम को उठा दिया, एकदम लॉफ्टेड ड्राइव 6 रनों के लिए। और अब सेलिब्रेशन का टाइम इंडियन दर्शकों के लिए दुबई के अंदर।
1: जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट 50 रन मार्क एंड व्हाट अ स्टार्ट इंडिया हैज। स्मृति एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड जस्ट प्लेइंग दैट रोल ऑफ अ मैच्योर्ड बैटर। शेफाली ऑन स्ट्राइक बैटिंग ऑन 30।
0: कमाल की बल्लेबाजी, इस बार बैकफुट पर गई और चूंकि गेंद में बहुत ज्यादा गति नहीं थी, स्ट्रोक खेलने का मौका मिला, यहां रन भी मिले साथ ही साथ। तो भारतीय दोनों बैटर्स बिना किसी परेशानी के अब तक चलती हुई, और जो वर्तमान रनों का औसत है वो 10.29 है। पावर प्ले चल रहा है बिना किसी नुकसान के, पांचवा ओवर निकल रहा है और ऐसा लगता है कि एक फील्डर के पैर पर थोड़ी सी चोट है, लेकिन चामरी अट्टापट्टू मुनीश बल्ले से कुछ भी नहीं कर पाई इस पूरे टूर्नामेंट में। 63 रन हैं उनके नाम 4 मैचेस में, और श्रीलंका की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो पूरी तरह से चामरी अट्टापट्टू पर निर्भर है, और अगर वो ही नहीं चलती हैं तो फिर टीम परेशानी में पड़ती है।
1: Well, she did lead the chase and get close to her half century, but after that, yes, she's scripting, trying to script another victory, but then we see an injury on the field and that's a twist of an ankle, and that's not a good news for the Sri Lankan team, because I tell you what, there isn't any role that the other batters or the fielders have played till now, because Sri Lanka into the fifth over fielding, and then they don't want to see a player getting injured while fielding. We can understand that if there's a bowler who's coming in and bowling and there's a hamstring pull, or while the batter is batting between the running between the wickets, there is an injury. But then right at the start of the game, in the very first power play, where India have raced on to a blazing start with 48 without loss, the rhythm of the game has been held up because there is an injury right there in the middle. We'll quickly identify the player because she's been crowded around by the other players. Smriti Mandhana, Shefali right there in the middle and standing quite apart, talking to each other. Smriti doing the much of the talking, and that's needed. And that's not a good sight that we see just now because the stretcher has been brought in.
2: बिल्कुल, जब इस तरह की चोट होती है, अगर आपका पैर ट्विस्ट कर जाए तो वो आपको परेशान करता है, इसमें कोई शक नहीं। और अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रदर्शन करती आई है भारतीय टीम, शेफाली की बल्ले से आज 17 गेंदों पर अब तक 31 रन बन चुके हैं, एक छक्का लगा चुकी हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं। बढ़िया पारी शेफाली की, और अगर आप सलामी जोड़ी का जिक्र करें तो ये सबसे बढ़िया प्रदर्शन है फाइनल के अंदर T20 क्रिकेट में, एशिया कप फाइनल में। भारत की इन दोनों बैटर्स का और कुछ लम्हों के लिए खेल में व्यवधान।
1: We still have to figure out what's happening because the umpires are definitely trying to get things sorted out here, because it's not helping as far as the rhythm of the game is concerned. And of course,

0: at the center. There's a lot of crowd, and it seems that Shefali and Mandana have also spoken to the umpire in case there is an injury which is really dangerous, and if the player is injured, you need to get the player substituted.
1: बिल्कुल विश्मी गुणरत्ने को आज टीम के अंदर शामिल किया गया. मौका मिला उन्हें फाइनल के अंदर, लेकिन चोट की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है और बाहर गई हैं वो. स्ट्रेचर पर उन्हें बाहर ले जाया गया है. इस बार गेम का इंतजार किया चामरिया टपट्टू ने और हल्के से केवल दिशादी उसे मिड विकेट पर. स्मृति मंधाना और शेफाली दोनों बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं. एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर है. उन्हें पता है कि उन्होंने भारत के लिए गजब का स्टार्ट दिया है, एक सॉलिड स्टार्ट दिया है. 150 रन 140 प्लस निश्चित तौर पर श्रीलंका को परेशान कर सकते हैं. चामरिया टपट्टू की ये गेंद और इस बार फिर स्ट्रेट खेला एकदम सामने. अब देखना है ये 6 है या 4 है. जाकर के गेंद रोप के नजदीक लगी है, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली, खासतौर पर चामरी की गेंद पर. उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है. ऊंचा शॉट खेला, दूसरा शॉट था इस ओवर में और गेंद सीधे जाकर के रोप से क्या पहले गिरी या रोप पर गिरी, ये देखना होगा, अंपायर का फैसला करना होगा. मुनीश, आपकी नजरें क्या कह रही
0: है? टू मी इट लुक्स लाइक अ 6 एंड नाउ इट्स बीन गिवन बाय द अंपायर एज वेल. एंड विद दैट 6 इंडिया क्रॉस द 50 रन मार्क एंड व्हाट अ स्टार्ट बाय इंडिया इन द वेरी फर्स्ट 5 ओवर्स. 23 मिनट्स ऑफ बैटिंग इंडिया हैव क्रॉस्ड द 50 रन मार्क एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे हैवंट लॉस्ट अ सिंगल विकेट. सो 55 after the end of 5 overs.
1: Sugandhika ka naye over, naye over ki shuruaat, ye dusra over hai Sugandhika ka. Achhi gendbaz hain jahan tak Sugandhika ka sawal hai, anubhav hai unke paas. 100 ke aas paas matches khele hain, 35 varsh ki umr hai. 2015 mein Pakistan ke khilaf debut kiya tha, takriban 11 saal ka safar tay kar chuki hain aur बढ़िया बल्लेबाजी की है. आज खासतौर पर चामरिया टपट्टू के आत्मविश्वास को हिला करके रख दिया शेफाली वर्मा ने. दायरे पर गेंद को फील करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी और यह मौका मिल गया दोनों बैटर्स को दौड़ करके एक रन ले लेने का. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. करंट रन रेट जो है वो अब लगातार ऊपर जाता हुआ 10.7 पर पहुंच गया है, यानी कि 11 रन प्रति ओवर और भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया है. इससे बढ़िया स्टार्ट और क्या हो सकता है भारत के लिए. स्मृति तैयार और इस बार हल्के से केवल दूर किया अपने शरीर से गेंद को लेकिन कोई रन नहीं. स्मृति थोड़ा सा संयमित होकर के खेल रही हैं और शेफाली अपनी जो स्वाभाविक शैली है उसके साथ खेल रही हैं. स्मृति कमजोर गेंद पर हिट कर रही हैं और शेफाली जिस तरह से खेलती हैं तकरीबन उसी तरह से खेल रही हैं.
0: Absolutely, and the next delivery that we see, Smriti Mandhana just does that. She comes onto the front foot and gently plays the ball to the cover fielder. She isn't going after the bowlers, but I think that's a plan where Shefali will be striking to the bowlers, and she's done that in style, playing 4 dot balls to start her innings. Shefali Varman batting on 38, Smriti Mandhana on strike at 19.
1: Sugandhika, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेल गई. अश्विनी परेरा ने गेंद को फील्ड किया और यह भी एक डॉट बॉल. सबसे तेज अर्धशतक 30 बॉलों में इस एशिया कप में यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है और वो भी फाइनल में. आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार बैकफुट पर एक और डॉट बॉल. 6 ओवर यानी कि पावर प्ले की समाप्ति. भारत का स्कोर 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी कि एक स्वप्निल शुरुआत की है भारत ने एशिया कप के इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ.
0: वेल देन अगेन ब्रिंगिंग दैट स्टैट वेयर शेफाली वर्मा इज बैटिंग ऑन अ हाईएस्ट स्कोर इन एन एशिया कप फाइनल. ऑफ कोर्स शी इज ब्लास्टेड द बोलर्स अराउंड इन द प्रीवियस गेम एंड शी वाज द लीडिंग स्कोरर फॉर श्योर. स्मृति मंधाना फॉलोइंग हर. And Harmanpreet Kaur will be very happy with her decision. So will be Amol Mojumdar. Because India at the moment are 57 without loss after 6 overs. And of course, we have another 14 overs.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नए घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।

0: हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेफ के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और

0: वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
4: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डम्बू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
3: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक

0: 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
1: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champions Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
3: ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया

0: in the first T20 international of the 3 month series in Delhi a short while ago. In para badminton, Tokyo Paralympic gold medalist Pramod Bhagat secured gold medal in the men's singles SL3 category and teamed up with Sukant Kadam to win the silver in the men's doubles SL3 SU5 at the Japan International today. The six-time world champion Bhagat produced a dominant performance in the singles final, defeating fellow Indian Umesh Kumar 21-16, 21-8 to clinch the top honour. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagement with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's team clinched Junior Asia Cup title at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. For details of this stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक इको निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली एलामिया के सभी फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की। इसके साथ साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैन-उल-अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत इख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। हॉकी में भारत की मर्दों और ख्वातीन की टीमों ने चीन के शहर मोकी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं। और क्रिकेट में ख्वातीन के T20 एशिया कप में दुबई में भारत और दिफाई चैंपियन श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच जारी है। उधर नई दिल्ली में 3 मैचों की मर्दों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को उजागर करने के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई कि ब्रिक्स के तनवों की बुनियाद पर इसकी शनाख्त, तआवुन और तहरीक बरकरार रहेगी और इसकी तरक्की से इंसानियत के मकसद को तआवुन हासिल होता रहे। दो रोज़ा सरबराह मीटिंग के आज आखिरी दिन अपने अख्तामी कलमात में वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स महज कोई मुल्कों का एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये मामलात के हल का एक इको निज़ाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में जो मुज़ाकरात हुए उनसे इस मकसद को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: सरबराह मीटिंग में मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिया से एक मुश्तरका तसव्वुर और मुस्तकबिल के तआवुन के लिए एक वाज़ह सिमत फराहम होगी। उन्होंने इस ज़रूरत पर भी जोर दिया कि तमाम फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अंदर अमल दरामद किया जाए जिससे तमाम तर लोगों को फ़ायदा हासिल हो।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा था कि ब्रिक्स ग्रुप में मजबूती में इजाफा करने

0: से कबल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने तीनों ग्रुप में जीत कर फाइनल में पहुंची है। मर्दों की क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 157 रन का निशाना रखा है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। इससे कबल भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जगह तजुर्बाकार संजू सैमसन को तरजीह दी है, जबकि चोट के बायस जसप्रीत बुमराह ने टीम में वापसी की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक ही को निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली एलामिया के सभी फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग अख्तिताम को पहुंची। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दो तरफा मीटिंगें की। इसके साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत अख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। और हॉकी में भारत की मर्दों और खवातीन की टीमों ने चीन के शहर मोकी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 17.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए अब सुनिए भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच के आगे का आंखों देखा हाल।
2: लास्ट ओवर इन T20 एशिया कप फाइनल्स इंडिया हैव स्कोर्ड मोर देन 10 रन्स बट देन कमलिनी हु हैज बीन पिक्ड अप इन द फाइनल 11 टुडे शी रिप्लेस प्रतिका रावल इज ऑन स्ट्राइक नाउ एंड शी विल बी फेसिंग हर फर्स्ट डिलीवरी। लेफ्ट हैंडेड बैटर कमलिनी फेसेस सुगंधिका and hits the ball towards the deep mid-wicket area, doesn't find the gap. It's been cut off very well, fielded there by the Sri Lankan fielder. And that was, Gunaratne for that matter. Anyways, another delivery bowled by Sri Lanka, and they'll be happy that they haven't conceded a big shot, a 4 or a 6 in that delivery. So, Kamalini getting a couple of runs, 169 for 5. One more delivery, left arm around the wicket. She comes in, hits straight to the long on fielder. Single is what India will get. But hang on, there's another call that comes in from Bharti. And she almost completed that run. Kamalini Bharti, a good call in the middle. And India, if they're not getting big shots, just converting ones into twos is the best thing that they can hope for. It was a flighted delivery, hit straight to the long on fielder. It was Bharti who was calling and she came in. She's a good runner between the wicket also. And thankfully, India get 2 more runs. So 171 for 5. 4 more deliveries to come. Sugandhika comes in. Left arm around the wicket. Flat delivery. Wanted to hoist her towards the deep mid-wicket area. Doesn't get a good connection. And another call that was turned down by Kamalini this time. A call that came all the way from Bharti. She will be on strike. So India get a single instead of two. 3 deliveries gone in this 20th over. They managed to get 5 in the first 3 deliveries. The highest score in the last over in Asia Cup Finals for India while batting first is 10 runs. And that was scored in 2016. So those are the minute stats that you look forward to. Kamalini at the non-strikers end. Unfortunately, she's faced just 3 deliveries brought into the final 11. Bharti's on strike. Sugandhika comes in, this time over the wicket to her. And she wanted to hoist Sugandhika over the mid-wicket area. Doesn't get a timing now. The ball goes high up in the air towards the long on fielder. A fast throw that comes in from the Sri Lankan captain. And that will restrict the Indians to a single. So, 6 runs in the 4 deliveries bowled in the 20th over. India 173 for 5. Kamalini back on strike. Can she get a big shot? She

0: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए हैं और श्रीलंका को टारगेट दिया है 184 रनों का। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स वंस अगेन एंड प्री हिट 20। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया।
1: जी स्टार रही स्मृति और शेफाली की वो जोड़ी जिसने 129 की एक लंबी साझेदारी रची टॉप ऑफ द ऑर्डर पर। इस ओपनिंग स्टैंड के बलबूते पर वो नींव रखी गई 183 के स्कोर की और क्या ये स्कोर काफी होगा मिड इनिंग्स पे 2024 के फाइनल में जब भारत ने 165 बनाए थे हम सबको लगा था काफी होगा लेकिन फिर श्रीलंका ने उस स्कोर को भी चेज किया था। आज क्या होगा जानने के लिए आकलन विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर लतिका कुमारी। लतिका बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू सो मच।
1: और साथ के साथ हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन जिन्होंने कई दशकों से भारतीय महिला क्रिकेट की जो एवोल्यूशन है उस पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है। उत्तरा बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: तो सीधा प्रश्न कोई घुमाव नहीं कोई गुगली नहीं सीधा सटीक प्रश्न लतिका आपसे 183 व्हाट डू यू मेक ऑफ इट।
2: देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी आज हुई है मुझे लगता है कि श्रीलंकाई टीम के सामने एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया है क्योंकि अभी तक अगर हम श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत उनकी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है लेकिन मिडल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं संभाला है बट अभी तक इतना बड़ा चेज उनकी तरफ पे भी नहीं आया। 130-135 रन का ही उनको चेज करने का मौका मिला है बट 183 एक ऐसा स्कोर है जहां पर अगर आज भी ऊपर से बल्लेबाज नहीं चले चमारी अटापटू नहीं

0: चली या उनके साथ ओपनिंग नहीं हुई अच्छी, जो हम कहते हैं कि पावर प्ले का यूज करना चाहिए, जो कि अभी तक श्रीलंकाई टीम के सामने से उसका यूज इतना नहीं हो पाया, तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा 183। बट क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब तक ये कंप्लीट आखिरी बॉल नहीं डलती, तब तक हम यही उम्मीद रखेंगे कि भारतीय जो टीम है उसका दबदबा बना रहे, जैसे कि बल्लेबाजी में बनाए।
1: उत्तरा, वी हैव बीन टॉकिंग दैट दिस इंडियन टीम इज स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द कॉम्पिटिशन। तो वो जो अपने खुद के मानक हमने तय कर रखे हैं, उस हिसाब से अगर देखें, 130 पर शून्य थे 13 ओवर के बाद, और उसके बाद आखिरी के 5-7 ओवरों में श्रीलंका ने कमबैक किया। एक समय पर लग रहा था 200 से ऊपर ही आंकड़ा जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आप 183 को कैसे देखते हैं?
2: देखिए, बिल्कुल वैसे ही गया है जैसे अभी तक भारतीय टीम का चला है, कि बहुत कमाल का स्टार्ट और बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई मिडिल ऑर्डर, और फिर नीचे आके किसी प्लेयर ने 2-3 बड़े हिट्स लगाए ताकि थोड़ा सा स्कोर आपको बेटर होता दिख गया एंड की तरफ। उसी ट्रैक पे एक तरह से चला है, 125 रन के आसपास का ओपनिंग पार्टनरशिप गई है। तो बहुत लग रहा था उस टाइम पे कि जिस पेस पे स्कोरिंग हो रही थी, ना सिर्फ ये कि जो रन बन रहे थे बल्कि जिस रेट पे रन बन रहे थे, तो उससे लग रहा था कि काफ़ी अच्छा जा सकता है स्कोर। और क्योंकि भारत ने 150 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में 2 बारी, तो एक उम्मीद थी कि उसके आसपास तक जाएंगे, पर रन ज़रूर उसके ऊपर गए। बल्कि 183 शायद बहुत अच्छा स्कोर है, एक विनिंग टोटल हो सकता है। पर वही है कि जिस तरह का स्टार्ट था, उसके बाद जो उम्मीद थी जहां तक जाएंगे वहां तक नहीं गए। तो इस मैच के हिसाब से मुझे लगता है कि 183 जो है वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग टोटल रहेगा श्रीलंका के लिए। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा भारत को देखना पड़ेगा कि सिर्फ ऊपर के 2 प्लेयर्स के भरोसे वो कब तक खेलने वाले हैं।
3: बिल्कुल, और ऊपर के 2 प्लेयर्स की फिर से हम बात करते हैं लतिका। ये टूर्नामेंट शेफाली वर्मा का टूर्नामेंट है। आज फिर से हाईएस्ट स्कोर 68 रन्स, 129 रनों की पार्टनरशिप रही उनकी और स्मृति के बीच। और फिर से हमने देखा है कि ये 2 ओपनर्स के जाते ही पारी लड़खड़ाने लग गई थी।
0: देखिए, इस शो से पहले ये बातचीत हुई थी हम लोगों के बीच में कि स्मृति मंदाना फाइनल्स में अभी तक वो स्कोर नहीं कर पाई हैं। तो देखिए, उनका जो मैंने पहले भी कहा है कि एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और स्किल कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती जा रही है, अब बिग शॉट्स उनके बल्ले से हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आज की इनिंग में भी हमें वो दिखाई दिया, और शेफाली वर्मा की तरफ से जो बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में हुई है, तो उसमें एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एक ठहराव दिखाई दिया है उनके बल्लेबाजी में। पहले जो एग्रेशन उनके बल्लेबाजी में दिखता था, वो एग्रेशन है, लेकिन अब गेंद को देख के, उसको भांप के, किस तरीके से आप एक लंबी इनिंग को यहाँ पर कर सकते हैं अपनी, वो एक जो बदलाव है शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी में देखने को मिला, कि आप शॉट सिर्फ ताकत से नहीं, नज़ाकत से भी खेल सकते हैं।
1: जी, स्मृति और शेफाली की तो चर्चा होगी, लेकिन एक और प्लेयर है लतिका जिनके बारे में मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रभावित हैं। अंत में केवल 5 गेंदें मिली, लेकिन उन 5 गेंदों में 15 रन मारे। जी कामेलिनी की शायद इस छोटी सी पारी की उतनी ज़्यादा चर्चा होगी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ा सा तवज्जो दें।
0: देखिए, इस पारी से उन्होंने अपनी दावेदारी साबित की है कि अगर आप मुझे मौका ऊपर देते तो शायद ये थोड़े से और जो है रन इकट्ठा कर सकती थी अपनी टीम के लिए। और मैं पहले भी कह रही थी कि ये काफ़ी अच्छी हिटिंग, क्लीन हिटिंग करती हैं, और एक लेफ्टी बल्लेबाज आपकी टीम में एक शामिल हुए हैं, तो नंबर 3 पर ही अगर उस टाइम पर आती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 12-13 ओवर हुए थे और 130 पे हमारी टीम थी जब हरमन आई थी, अगर उस वक्त इनको 5 से 6 ओवर या 4 ओवर मिलते तो शायद ये स्कोर और 10-15 रन या 20 रन और ऊपर होता।
3: जी बिल्कुल, ऊपर हो सकता था। बात करें हम उत्तरा श्रीलंका की बॉलिंग की, तो आज फिर से हमने देखा चामुदी प्रबोदा को, और हम सब बात कर रहे थे 17 साल की हैं केवल, पहले भी अपनी पारियों में प्रभावित कर चुकी हैं, और आज फिर से उन्होंने शेफाली वर्मा का विकेट लेके वो ब्रेक थ्रू दिलाया श्रीलंका को।
2: बिल्कुल, और वो श्रीलंका की बॉलिंग जिस तरह की रही है, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड एज अ टीम ज़रूर रहेंगे, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग के मुकाबले उनकी बॉलिंग और फील्डिंग ने ज़्यादा इम्प्रेस किया है।

0: चामुंडी के अपनी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उन्होंने वही किया जो उनका रोल था, जिस चीज़ के लिए उनके कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया था. पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एज अ टीम थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी बॉलिंग को लेके, क्योंकि थोड़ी सी वेवर्ड थी, थोड़ी सी कंट्रोल्ड नहीं थी. आपको दिख रहा था कि वो सिर्फ रन पढ़ने की बात नहीं होती है, वो बॉलर का बॉडी लैंग्वेज भी एक होता है कि आपका अपनी गेंद पे कितना कंट्रोल है उस टाइम पे, और वो कंट्रोल थोड़ा सा मिसिंग देखा खिलाड़ियों में, खास करके जब हमारे ओपनिंग पेयर बैटिंग कर रहे थे शेफाली और स्मृति का. प्लस उनकी फील्डिंग और फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा वियर्ड ज़रूर लगा, क्योंकि जनरली चमरी अतापत्तू जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ फील्ड प्लेसमेंट्स, और नो वो उस तरह की लेजी क्रिकेटर नहीं मानी जाती कि एक जगह खड़े हो गए तो वो वहीं खड़े रहेंगे. वो शी इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट एंड सीइंग वेयर थिंग्स कैन गेट बेटर. बाय दैट यार्डस्टिक आज उनकी फील्डिंग, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, उन सब चीज़ों में मुझे लगता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर उनको रहेगा.
1: जी, चमरी अतापत्तू की हम बात कर रहे हैं. आपको याद दिला दें 2024 में जब श्रीलंका एशिया का चैंपियन बना था तो उस टूर्नामेंट में इनकी 3 अर्धशतक थे, वो अपने आप में एक कीर्तिमान था. और आज उस कीर्तिमान की बराबरी शेफाली वर्मा ने कर ली. इन्होंने अपना 3rd हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट का बनाया. चामरी तो इंपॉर्टेंट होने वाली है लतिका, और इसलिए भी शायद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने देखा विश्वी गुरुना रत्ने, उनको इंजरी हुई, स्ट्रेचर पर उनको बाहर ले जाया गया, तो शायद वो बल्लेबाजी करने के लिए अवेलेबल ना हो. वो वन बैटर शॉट होना, इतना बड़ा टारगेट होना, फाइनल का प्रेशर होना, अगर इस वक्त आप अपने आप को चामरी की जगह देखें तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस इनिंग्स को?
2: देखिए, ये बात ज़रूर है कि एक आपके प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं जो कि आपने चेंज भी किया था, और उनको स्पेशली इस मैच में उतारा भी था, फाइनल का मैच, और वहाँ उनकी इम्पोर्टेंस भी दिखती है. अगर आप टीम में कोई चेंज कर रहे हो और वो वही चेंज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाते हैं, तो चामरी के लिए ये बहुत बड़ा अभी टास्क होने वाला है, क्योंकि वो एक बेहतर शुरुआत ज़रूर करना चाहेंगी यहाँ पर अपने बल्लेबाजी से. पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश रहा है, सिर्फ एक बार ही 40 का आंकड़ा पार किया है उन्होंने. तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बैटिंग लाइनअप यहाँ पर श्रीलंका की कप्तान हैं जो रखना चाहेंगी, कोच हैं वो रखना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने अभी तक अलग अलग प्लेयर्स ने यहाँ पर करके दिखाया है, मैच निकाला है. लेकिन टॉप ऑर्डर 2 से 3, 3 से 4 नंबर तक पावर प्ले या 8 ओवर तक वापस पवेलियन गए हैं. तो आज ये और भी बड़ा टास्क होगा कि आपका एक प्लेयर जो मेन प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाते हैं.
1: एंड टॉकिंग अबाउट इंडियाज पर्सपेक्टिव, उतरा भारतीय बॉलिंग में आप किसको देखते हैं? कौन तुरुप का इक्का साबित होने वाला है? क्या श्रीचरणी पर दोबारा दारमोदार होगा, या फिर आप पेसर्स की भूमिका को देखते हैं? क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा का एक अहम रोल देखते हैं.
0: देखिए, दीप्ति शर्मा हमारी टॉप विकेट टेकर हैं, तो और सीनियर हैं ऑब्वियसली श्रीचरणी के मुकाबले, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़रूर ज़्यादा होगी और प्रेशर श्रीचरणी पे ज़रूर होगा, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं. नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ दोनों से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी. लेकिन जितना टोटल सेट किया है तो बॉलर्स को थोड़ा सा लीवे ज़रूर एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता कि एक एक रन के लिए आपको फाइट करना हो. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड्रीज खा सकते हैं या बहुत इजी रन्स दे सकते हैं सामने, पर जब आपकी बैटिंग आपको इतना बड़ा टारगेट एक देती है डिफेंड करने के लिए, तो थोड़ा सा आपके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रेशर हल्का सा कम होता है. मुझे लगता है श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा दोनों के ऊपर प्रेशर तो नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी ज़रूर रहेगी कि वो अर्ली ब्रेक थ्रूज दिला पाएँ, ताकि टॉप ऑर्डर जैसा लतिका ने कहा कि वो नहीं चल पाया उस तरह से उनका श्रीलंका का, तो अगर आप ऊपर से जल्दी विकेट ले लेते हैं तो जिस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर ने अभी तक चीज़ें संभाली हैं, वो 120 से 135-145 तक का टारगेट जो है उसके लिए शायद काफ़ी रहा हो, लेकिन 184 के लिए शायद ऊपर के 3-4 जल्दी निकल गए तो वो मिडिल ऑर्डर ना संभाल पाए उस चीज़ को.
3: जी बिल्कुल, तो 184 का टारगेट सेट करके बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, और अब बारी है भारतीय बोलर्स की. इट्स इंडियन बोलर्स अगेंस्ट श्रीलंकन बैटर्स नाउ. और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाज़त, हमारी कमेंट्री टीम आपसे जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मैच के बाद.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। भारत क्या 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर सकेगा? 184 रन बनाने हैं श्रीलंका को। जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती है श्रीलंका के सामने। इस चुनौती से निपटना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चामरी अट्टापट्टू, जो कि टीम की कप्तान हैं, जिनकी बल्लेबाजी पर श्रीलंका लगातार आश्रित रही है, बहुत दारुमदार है उनके ऊपर श्रीलंका की बल्लेबाजी का, वो पिछले कुछ मैचेस में बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं। एक भी बड़ा स्कोर उनके बल्ले से नहीं निकला है इस एशिया कप में, और कुल मिलाकर 64 रन बनाए हैं उन्होंने इससे पहले 4 मैचेस में। तो चामरी अट्टापट्टू का चलना बहुत ज़रूरी है अगर श्रीलंका को इस मुकाबले में अपनी चुनौती को मजबूती के साथ पेश करना है। 170 मैचों में 4100 रन, स्ट्राइक रेट 114 के आसपास, और जहां तक शतकों का सवाल है, 4 शतक उनके बल्ले से लग चुके हैं। और उनका साथ देंगी इमेशा दुलानी, 24 मैचों में 484 रन। श्रीलंका की एक और परेशानी है कि उनका जो शुरुआती बल्लेबाजी का क्रम है वो पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। क्रांति गौड़ पारी की शुरुआत कर रही है गेंदबाजी में, हालांकि क्रांति गौड़ को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। 4.8 की औसत से उन्होंने रन खर्च किए और इकलौता विकेट इस पूरे टूर्नामेंट में मिला है। भारत की तेज गेंदबाजी नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ पर निर्भर करेगी। क्या स्पिनर्स पर दारोमदार रखेंगे या तेज गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे? बढ़िया शॉट, गेंद को एकदम निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इमेशा के बल्ले से निकला हुआ खूबसूरत स्ट्रोक, अपने आप को पोजीशन किया और सिर्फ एक दिशा दे दी। तकरीबन लेग स्टंप पर गेंद थी क्रांति गौड़ की, और उसका भरपूर फायदा उठाया, पहले से कमिट हुई और हल्के से केवल गेंद को दिशा दी, मोड़ दिया अपने कलाइयों के सहारे 4 रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में। तो शुरुआत की श्रीलंका ने अपने खाते की, बढ़िया एक फ्लिक शॉट, लेकिन पहले से कमिटेड थी स्ट्रोक के लिए क्रांति के। इस ओवर में अगली गेंद इमेशा को, और इमोशा की पैड पर जाकर के गेंद लगी जोरदार अपील, लेकिन जाहिर है ऐसा बिल्कुल साफ देखने में लग गया था कि गेंद की उछाल भी ज्यादा थी और गेंद लेग स्टंप से संभवतः बाहर भी निकल रही थी। 184 का लक्ष्य, जब आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो आप खुद ब खुद उस लक्ष्य के सामने परेशानी महसूस करते हैं। पैट पर लगी थी, लेकिन उससे पहले बल्ले का भी स्पर्श हुआ था, इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इमेशा दुलानी नहीं चली इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, 64 रन उनके। चामरी अट्टापट्टू के 63 रन है, और जाहिर है ये सलामी जोड़ी पर बहुत दारोमदार होगा। अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर, रक्षात्मक तरीके से इमेशा ने सिर्फ अपने बल्ले से लगने दिया। श्रीलंका ने शुरुआत की एक चौके के साथ, पहला ओवर चल रहा है। अगर भारत को कुछ शुरुआती सफलताएं मिल गईं तो ये मुकाबला भारत के खाते में आसानी के साथ जा सकता है, लेकिन श्रीलंका की टीम फाइटर है। आपको याद होगा सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट देखते देखते निकल गए थे, और इस बार साफ विकेट गिर गए। क्रांति गौड़ को मिल गया पहला विकेट। इमेशा ने जिस तरह का स्ट्रोक पहली गेंद पर खेला था वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, विकेट्स पूरी तरह से छोड़ दिए उन्होंने और हट करके गेंद को लेग स्टंप के बाहर निकालना चाहती थी, फ्लिक करना चाहती थी, पूरी तरह से चूक गई और गेंद उनके संभवतः बल्ले से लगती हुई उनकी गिल्लियां बिखर गईं और पहला विकेट भारत को मिल गया। तो
2: फिल्म थी दिल क्या करे, ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

0: चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा।
1: रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो।
0: फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी कारगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां मैं। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गईं। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिपर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

छाया गीत में आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष आवाज में, दूसरा महिला आवाज में। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। अंधेरा, घना अंधेरा, आंसू, सर्द आंसू, तन्हाई, बेपनाह तन्हाई, एक सजा है तन्हाई, एक जुल्म, एक मुश्किल।

अफसोस की नगमे, उदास नगमे, क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार हमें लगता है पूरी तरह हम नहीं कह पा रहे अपनी बात।

दुनिया की दो अलग अलग छोर, इन अलग अलग हिस्सों में पले लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

अच्छा या गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: दूल्हा दुल्हन इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: चंदन सबदन
2: चंचल चितवन
0: सरस्वती चंद्र इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: कभी कभी मेरे दिल
2: ख्याल आता है
0: कभी कभी साहिर लुधियानवी खयाम।

Oh.

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले।

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

आई रात।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रस्तुत है विशेष रूपक साहित्य कल और आज। दोस्तों हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या हिंदी में भाषण देने का दिन नहीं है, ये दिन हमें एक छोटा सा सवाल पूछने का अवसर देता है। क्या हम अपनी भाषा से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं? भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और अगली पीढ़ी तक पहुँचाई जाती है। 14 सितम्बर हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। हिंदी की कहानी सिर्फ 1949 से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि उन्हें तलाशते तलाशते हम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुंच जाते हैं। समय बदला, बोलियां बदली, शब्द बदले और भाषा भी अपना रूप संवारती गई। ब्रज ने इसे माधुर्य दिया, अवधि ने उसे लोक की आत्मा दी।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत ही लो।
0: खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को स्वरूप दिया। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और भारत की अन्य भाषाओं से आए शब्दों ने उसके शब्द भंडार को और विस्तार दिया। यही तो हिंदी की खूबसूरती है, वो अपने भीतर बहुत सारी भाषाओं को समेट कर चलती है, इसलिए हिंदी भाषा से बहुत जल्द प्यार हो जाता है।

0: दोस्तों, हिंदी आज हर वर्ग हर दौर के लिए कितना, कैसे और क्यों आवश्यक है। हिंदी किस तरह समृद्ध है, आइए जानें एक ऐसे साहित्यकार से जो लेखन की दुनिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पढ़कर युवा लेखकों की कलम समृद्ध होती है। आप हैं प्रियमवत जी।
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता।

0: की दुनिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पढ़कर युवा लेखकों की कलम समृद्ध होती है। आप हैं प्रियमवत जी।
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता। पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो। भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते, बेशक कथ्य को बदल सकते हैं। कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीज़ों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं। यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी। प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा। इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं। ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा। बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं। साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं।
0: हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं। सन 1993 में क्वींस कॉलेज वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली। देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ यहीं से। शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई। इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला। कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन। एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है। हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए, कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था। मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई। गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। आइए यहाँ पर

0: के पतवा सर के डोले मनवा के ही यार में उठत हिलो गुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ।
1: इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुंचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुंची, वो हैं बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बालकवि वैरागी

0: ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लाल परी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई। थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शिखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
0: जी।
1: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टरपीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का आदर्शत्व बहुत समझ में आती है। इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की, आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेकर बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैला आंचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह, भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो तीन वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेनजी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए।
0: जी जी।
1: और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा, तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुलती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की,
0: अच्छी
1: हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
0: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
1: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी। उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें

0: रंजित मल्लिक, अर्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसर भाई केरकर, रसूलन भाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है और 100 पेज का उसमें नोट्स है। भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है, ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सिंग के ऊपर आधारित है कि किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीतज्ञ में, जो बच्चा सीख रहा है, जो गाने की तैयारी कर रहा है, भले वो प्लेबैक सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए कि हमें रसूलन भाई की ये ठुमरी सुननी चाहिए, या हमें बड़े गुलाम अली खां का ये दादरा सुनना चाहिए, या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे पढ़ें, उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसलिए कि फला ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बनाती है।
1: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

0: नीरज का ही लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन की क्षण भंगुरता पर सोचने के लिए विवश किया।
1: स्वप्न झरे फूल से।

गीतकार नीरज ने सिद्ध कर दिया कि साहित्य और सिनेमा दो अलग अलग संसार नहीं हैं। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां किताबों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन्हीं में से एक थे। 1920 और 30 के दशक में हिंदी कविता के मंच पर बच्चन जी की आवाज ने एक अलग ही आकर्षण पैदा किया। उनकी काव्य पंक्तियों में दर्शन था, जीवन का उत्सव भी था और मनुष्य की पीड़ा भी।

उनकी कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता सिर्फ मधुशाला तक नहीं ठहरी, उनकी कविता अग्निपथ ने संघर्ष और जीवन के प्रति अदम्य विश्वास जगाया। तू न थके गा कभी, तू न रुके गा कभी, तू न मुड़े गा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर संयोग है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यही कविता हिंदी सिनेमा तक पहुंची और फिल्म अग्निपथ के साथ एक नई पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है, कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में। आंग

0: इस कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर लें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में नरेश मेहता को, 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में कृष्णा सोबती को, 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्फा तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से को बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का अस्सी, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो एक क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गम भय दरियाओ, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये पांच उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो पांच ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और छह आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी। मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक परतें हैं उसको खोलने का हुनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खासतौर से वो उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की उसको कितनी महीनता से कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए काला बछड़ा। इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मैंने सीखा है मेरे से जो सीनियर थे मंजूर एहतसाम, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है? हाँ, मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है, वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस परीक्षा शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों, किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आई जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
1: एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता से प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़ें। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको कि बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाड़कर हो, नामदेव ठसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो, या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था, बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा, तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना चाहिए, जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उल्टे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, यही मुझे लगता है।
0: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है, ये हैं उर्मिला शिरीष।
2: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर, कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए जो

0: अच्छा, सीधे सीधे हमारे श्रोताओं को और हमारे पाठकों को हमारी रचना का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, हम कहानी में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो रोचकता के साथ उनके अंतरतम में पहुंच सके। दूसरी बात ये कि साहित्यकार, मीडिया और नई पीढ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों आज बराबर से साहित्य जगत में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं और इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी या कविता जब हम लिखते हैं तो यदि वो श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हमें अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो आधुनिक नए माध्यम आए हैं उनको भी अपनाना जरूरी है। तो दोनों परंपरा और आधुनिकता नए माध्यमों के बीच इस तरह का तालमेल बैठा कर हम चल सकते हैं कि उसकी भाषा और शैली अक्षुण रहे और हमें ये लगे कि हम स्तंभ में जो हमारी कहानी की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आधुनिक माध्यमों के रूप में भी हम कहानी को सुन रहे हैं। जैसे मैंने अनुभव किया है कि प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी उतने ही अच्छे ढंग से नए माध्यमों के द्वारा सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आधुनिकता का और परंपरा का दोनों का समन्वय मैं मानती हूँ कि होना चाहिए।
1: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी, नक्श लालपुरी शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि प्रदीप का नाम भला हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और बाद के दिनों में उन्होंने ललित गीत लिखे।

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद करें, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम ने उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक हुए, लेखक हुए, पूरी किताब की यात्रा से जब गुजरेंगे हमारे युवा और युवा पीढ़ी के लोग, बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी किताब आई दाता पीर, और पटना की पूरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई सुलभ का ये उपन्यास है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो भाषा की मिलावट और घुलावट है, आमतौर पर हम भाषा में मिलावट शब्द को बड़े ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक ढंग से देखते हैं, कितनी अलग अलग खित्ते की भाषा बड़ी ही खूबसूरती के साथ आती है। और ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि गलत और सही की बहस से अलग, कैसे अलग अलग जनपद की भाषा, उसकी बुनावट एक मुकम्मल, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे ऊपर असर करती है। तो ये किताब मैं चाहूंगा दाता पीर लोग पढ़ें, और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, पुष्यमित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मार्मिक कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उजास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं, और उसके कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो स्याह पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता क्रिकेटा की पढ़ी है, और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की, हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं, और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदय जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार रहे हैं, और

0: हृदय जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, सैकड़ों जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कीमती लगती है, उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है और होनी ही चाहिए।
1: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दाता पीर का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं की किताब जूठी गली, उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश वानखेड़े की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं?
0: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन, रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आपको मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें। मैं चाहूंगा कि रील्स, वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं। लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें।
1: जी
0: उससे गुजरे,
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली है, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीष और विनीत कुमार। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन सहयोग मनीषा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।